मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTS DRM और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ होती है प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक

0: चार लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। खेती की बातें इस कार्यक्रम में कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, बाजार में जो रसायन मिलते हैं इनमें कुछ अत्यधिक जहरीले, कुछ अधिक जहरीले, कुछ औसत जहरीले और कुछ बहुत कम जहरीले होते हैं। जो रसायन सबसे अधिक जहरीले होते हैं वह हैं मिथाइल पैराथियन, मोनोक्रोटोफास, फास्फेमिडान,

0: ग्रेन्यूल और जिंक फास्फाइड। इन रसायनों के पैकेट पर चमकीले लाल रंग का आयत बना रहता है तथा हड्डी का क्रॉस और उस पर खोपड़ी बनी रहती है। इन रसायनों से जो कम जहरीले होते हैं वह हैं 2,4-D, क्यूनालफास, डाइजिनान, क्लोरपाइरिफास, इंडोसल्फान एवं गामा BAC। इनके पैकेट पर बने आयत चमकीले पीले रंग के तथा आयत के नीचे लाल अक्षरों में जहर लिखा रहता है। कुछ औसत किस्म के जहरीले रसायन होते हैं जैसे डाइमेथोएट, कार्बराइल, ब्यूटाक्लोर, थेरम एवं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इनके पैकेट के आयत के आधे भाग पर चमकीला नीला तथा नीचे खतरा शब्द लिखा रहता है। जो रसायन बहुत कम जहरीले होते हैं वह हैं मैंकोजेब, कैप्टान, जिनेब। इनके पैकेट पर बने आयत के आधे भाग पर चमकीला हरा तथा नीचे सावधान शब्द लिखा रहता है। ये सभी रसायन, चाहे वह जितने भी कम या ज़्यादा जहरीले हों, इनके प्रयोग से पहले इनकी जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है और इनके प्रयोग में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। दवाओं के प्रयोग में सबसे पहले सावधानी दवाओं के चुनाव में रखनी चाहिए। कौन सी दवा किस कीट या बीमारी के नियंत्रण में प्रयोग होती है और कितनी मात्रा में प्रयोग होती है, यह जानना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक दवा प्रत्येक बीमारी को नियंत्रित नहीं कर सकती तथा प्रत्येक खरपतवार नाशी प्रत्येक खरपतवार को नष्ट नहीं कर सकता। बीमारियों, कीड़ों, खरपतवारों तथा अनाज भंडारण के लिए अलग अलग दवाएं प्रयोग होती हैं तथा इनकी मात्रा अलग अलग होती है। दवा का नाम जान लेने के बाद दवा खरीदने की बात आती है। बाजार से दवा खरीदते समय 2-3 बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। दवा खरीदते समय डिब्बे पर अंकित तिथि को पढ़ लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि दवा की मियाद बीत तो नहीं गई है। बीते मियाद वाली दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दवा का पैकेट अच्छी तरह सील होना चाहिए, क्योंकि खुली दवा में मिलावट की संभावना हो सकती है। दवा अच्छी कंपनी की ही होनी चाहिए, भले ही उसका मूल्य कुछ अधिक क्यों ना हो। घोल बनाते समय कभी भी एक से अधिक प्रकार की दवाओं को एक साथ मिलाकर प्रयोग न करें, इससे फसल को नुकसान पहुंच सकता है। कई तरह की दवाओं को एक साथ तभी मिलाना चाहिए जबकि इस प्रकार की संस्तुति हो। दवा छिड़काव करने के पहले यह भी जानना आवश्यक है कि फसल में कीट संख्या आर्थिक स्तर पर होनी चाहिए। यदि कीट इतनी संख्या में नहीं है कि वह खेत में आर्थिक क्षति पहुंचा सकें, तो दवा का छिड़काव तर्कसंगत नहीं होगा। छिड़काव करते समय किसी भी प्रकार का नशा जैसे बीड़ी, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए तथा बच्चों और जानवरों को खेत के पास नहीं जाने देना चाहिए। छिड़काव के समय यदि मशीन की नोजल फंस जाए तो भूलकर भी उसे मुंह से नहीं फूंकना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। छिड़काव या बुरकाव के समय यदि अस्वस्थता महसूस हो तो चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह कहना है कि छिड़काव में दवा की सही मात्रा का होना बहुत ज़रूरी है। इससे कम मात्रा प्रयोग करने पर कीड़ों में विष के प्रति सहनशीलता पैदा हो जाती है और ऐसा बार बार करने से कीट नियंत्रण एक दुष्कर कार्य बन जाता है। अतः जहाँ तक संभव हो दवाओं को बदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए, इससे विष प्रतिरोधकता की संभावना कम हो जाती है। वैसे बाजार में अब जैविक पदार्थ और नीम वाली दवाएं भी आ गई हैं जिनके प्रयोग से रसायनों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग करना चाहिए।
1: कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। इसी के साथ खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, जहां भाव है वहीं भक्ति है, जहां भक्ति है वहीं साधना है।

भक्ति में आज की आराधना यही संपन्न होती है। आज आपने सुना हरिहरन हरिओम शरण सुमन कल्याणपुर।

0: आज की आराधना यहीं संपन्न होती है। आज आपने सुना हरिहरन, हरिओम शरण, सुमन कल्याणपुर, केवल कुमार और बलवंत राय भट्ट के गाए भजन। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। विचार बिंदु में आज का विषय है भक्ति।
1: श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग है। एक पेड़ के नीचे एक युवती बैठी थी, उसके समीप ही दो पुरुष सो रहे थे। पूछने पर युवती ने बताया, मेरा नाम भक्त है, ये दोनों ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, परंतु पूरे देश में भ्रमण करते करते ज्ञान और वैराग्य मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं। आज के मानव को ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता भी कहाँ है। आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं, वहाँ भक्ति को पुष्टि मिलती है। भक्त नरसिंह ने भक्ति का लक्षण बताते हुए कहा है, सकल लोक में सबको वंदे, वही सच्चा वैष्णव है जो वंदन करता है। जो वंदन कराना चाहता है वो वैष्णव नहीं है। मन के भीतर जब तक अहम भाव है तब तक भक्ति की वृद्धि नहीं होगी। श्रवण, कीर्तन, चिंतन, वंदन, अर्चन आदि नवधा भक्ति से ही कल्याण संभव है। ज्ञान और वैराग्य का आदर न करने से भक्ति रुदन करती है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य क्षीण होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। वैराग्य होता तो है परंतु टिकाऊ नहीं होता। जैसे श्मशान भूमि में जाकर लोगों को वैराग्य होता है परंतु वहां से लौटने के साथ ही सब भूल जाता है। बिना भक्ति के आनंद नहीं। आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हैं पर उस परम पिता को साधन और सांसारिक सुखों को साध मानकर करते हैं, अतः भक्ति सार्थक नहीं होती। संत एकनाथ महाराज विट्ठलनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाते थे। उनकी पत्नी बड़ी साध्वी थी। उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, आपने मुझे पत्नी का संग नहीं सत्संग दिया है। यदि मुझे सत्संग न मिला होता तो आपके भक्ति में कैसे कर पाता। उसी समय संत तुकाराम वहां आए। तुकाराम की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। उन्होंने कहा, भगवान, यदि मुझे अच्छी सुंदर पत्नी मिली होती तो मैं सारा दिन उसी की सेवा में लगा रहता, तुम्हें भूल ही जाता। अतः कर्कशा पत्नी मिलने पर मेरा तो भला ही हुआ है। जीवन मृत्यु के त्रास से मानव को मुक्ति भक्ति द्वारा ही मिल सकती है। उपयोग के लिए अनेक पदार्थ सुलभ होने पर भी मन उनके प्रति आकर्षित न हो, वही वैराग्य है। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती और जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती। सुदामा की कृष्ण के प्रति भक्ति सच्ची थी। वे दरिद्र थे। पत्नी ने कुछ मांगने उन्हें कृष्ण के पास भेजा। सुदामा उनके पास आए, उनसे मिलकर कृष्ण की आंखें भर आईं। सुदामा ने सोचा, मित्र मिलन से ही उनकी आंखें भीग गईं, तो फिर अपनी दरिद्रता की बात बताने पर उन्हें कितना दुख होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। इसी प्रकार गोपियों की कृष्ण के प्रति भक्ति भी निष्काम थी। उनका प्रेम विशुद्ध था। विशुद्ध प्रेम के बिना भक्ति हो पाना संभव नहीं है।

0: अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु। आज का विषय था भक्ति। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है बच्चों में डायरिया का संक्रमण और इसकी चिकित्सा। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पीएन यादव।
1: मैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीएन यादव बच्चों में डायरिया के संक्रमण और इसके चिकित्सा के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसा कि पिछले भाग में मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें ये जैसे कि ये किस वजह से होता है, डायरिया क्यों होता है बच्चों में, खासकर वायरस के संक्रमण से, बैक्टीरिया के संक्रमण से और परजीवी के संक्रमण से होने की संभावना ज़्यादा होती है। अमूमन वायरस का इन्फेक्शन, वायरस का संक्रमण बच्चे में सबसे ज़्यादा होता है। तो इनके बाद डायरिया, डायरिया होता क्या है वो भी मैंने पिछले भाग में आप लोगों से जानकारी देने की कोशिश की थी कि डायरिया का मतलब कि तीन या तीन से ज़्यादा दस्त बच्चा अगर 24 घंटे में करता है तो इसको डायरिया बोलते हैं। अब इसके लक्षण क्या होंगे? तो पहली बात, लक्षण के आधार पे बच्चे को जैसे उल्टी होगी, पतला दस्त होगा, बुखार आ सकता है, चिड़चिड़ापन आ जाएगा बच्चे को, भूख नहीं लगेगा और ये परेशान रहता है, बच्चा रोता रहता है। तो डायरिया की वजह से बच्चों में अमूमन जो होती है पानी की कमी होती है। पानी कमी होती है तो बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन आएगा। हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि क्यों बच्चा रो रहा है और उसको क्या करना है, ये हम भी नहीं समझ पाते। तो हमको करना क्या है उसके बारे में, कैसे उसका लक्षण पहचानेंगे और हमको करना क्या है घर पे, आज उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करें। जैसे कि बच्चे में डायरिया होने के बाद तीन चीजों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लक्षण, बच्चे को बार बार दस्त होगा या उल्टी होगा तो इसकी वजह से उसके अंदर पानी की कमी होती है। हम लोग पानी की कमी से या जो डिहाइड्रेशन बोलते हैं ये किस लेवल का है उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं बच्चे। जैसे कि बच्चे को दस्त हो रहा है या उल्टी हो रहा है, फीवर आ रहा है, चिचड़ापन है, लेकिन बच्चा दस्त के साथ साथ पेशाब भी कर रहा है, पेशाब जो कर रहा है उसका कलर बहुत ज़्यादा पीला नहीं है, हल्का पीला है और बच्चा एकदम खेल कूद रहा है, सुस्त नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के अंदर हल्का फुल्का पानी की कमी है जो हम घर पे भी इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरी समस्या, अगर दस्त ज़्यादा होने लगे, पानी कमी और बढ़ती जाएगी तो बच्चे के जो आँख होती है उसकी धंसने शुरू हो जाती है, उसके चमड़े सूखने लगते हैं, खासकर छोटे बच्चे जो 6 महीने से लेके 1 साल के, 1.5 साल के बीच में वाले होते हैं, इनके सर पे एक तालू बोलते हैं लोग, गांव के लोग खासकर माताएं बहनें तारू बोलते हैं कि आगे तालू है, वो धंसने लगता है। ये इसका मतलब कि मध्यम गति, मध्यम लेवल का उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है। और तीसरी कैटेगरी आती है कि जब और समस्या बढ़ती है और दस्त होते जाते हैं, हम पानी कमी नहीं पूरा कर पाते तो बच्चा सुस्त पड़ने लगता है, ये रोएगा भी तो इसके आँख से आंसू नहीं आएंगे और जो इनका तारू होगा बहुत ज़्यादा धंस जाता है, एकदम सुस्त हो जाते हैं, कोई रिस्पांस नहीं करते बच्चे और सांसें तेज लेने लगते हैं, बेहोशी की हालत आने लगती है, ये सीवियर कैटेगरी का डिहाइड्रेशन माना जाता है। अब जो हल्का फुल्का डिहाइड्रेशन या माइल्ड डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ये घर पे हम इस चीज़ को समझेंगे तो उसका क्या इलाज है और उसके बारे में हम अच्छे से समझ लेंगे। तो घर पे हमको ये समझना है कि बच्चे के अंदर हमारे डायरिया हो गया तो इसके अंदर डिहाइड्रेशन है कि नहीं है उसके बारे में हमको समझना चाहिए। अगर बच्चा आपका सुस्त नहीं है, खेल कूद रहा है, दस्त भी कर रहा है, बीच में उल्टी भी हो रही है, लेकिन आराम से खेल रहा है, माँ का दूध पी रहा है या पानी पी रहा है, कोई उसके रूटीन वर्क या जैसे बच्चा सुस्त नहीं दिख रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, इसके अंदर इसका मतलब कि डिहाइड्रेशन बहुत ही कम होगा या न के बराबर होगा। तो ऐसे लेवल में आप लोग सिर्फ बच्चे को ये ध्यान देना है कि पानी कमी ना हो, तो नॉर्मल जो बच्चा खाता पीता है उसको देते रहेंगे और वॉच करते रहेंगे, देखते रहें कि बच्चा मेरा सुस्त न पड़ने पाए, या सुस्त पड़ेगा, दिक्कत लगेगा, नहीं उसको कुछ चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, उसका ज़्यादा पानी मांग रहा है या दिक्कत बढ़ रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। और समस्या बढ़ती है जैसे चर्चा किया था, डिहाइड्रेशन होता है, पानी कमी होती है, उसमें बच्चे चिड़चिड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, सुस्त पड़ने लगते हैं और आंखें धंसने लगती हैं, तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, आप घर पे इलाज नहीं करेंगे। इसी तरह से सीवियर जो डिहाइड्रेशन होता है आप घर पे इलाज नहीं करेंगे, आप तुरंत नज़दीकी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जाएंगे और डॉक्टर से कंसल्ट करें।
0: बच्चों में डायरिया का संक्रमण और इसकी चिकित्सा।

इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर पीएन यादव। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्रीराम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुदबुद्ध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप, शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज के गायक कलाकार थे ए हरिहरन। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण, आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा सुनिएगा रात 10 बजे से, जिसे हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे। उर्दू कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा सुबह 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनिएगा पंडित भीमसेन जोशी का गायन। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों की महफिल सजेगी रात 9:30 पर, कार्यक्रम अंजुमन में। रात 8 बजे सुगम संगीत के कलाकार होंगी चित्रा सिंह। पत्र के लिए धन्यवाद, सुनिएगा शाम 7:31 पर। आपके पत्रों के साथ स्टूडियो में होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनिएगा डॉक्टर मनीष पांडे से बातचीत। बातचीत का विषय होगा कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती। इसके अलावा राहुल कुमार मौर्या का गायन लोकगीत भी होगा। इन्हीं का गायन लोकगीत सुबह 9:50 पर भी आप सुन सकते हैं। युवा दोस्तों की युवाणी सजेगी शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, युवाणी कैंपस, यूथ डायरी, विश्व घटना चक्र, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। पर्यावरण संरक्षण हमारा नैतिक दायित्व, इस विषय पर सुनिएगा शालिनी त्रिपाठी की वार्ता बाल गोपाल कार्यक्रम में शाम 5 बजे। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग होगा दिन 1:30 पर। समस्या निदान केंद्र, विनोद कुमार गौतम की लिखी ये झलकी सुनिएगा आज इतवार है कार्यक्रम में दिन 1:15 पर। प्रस्तुति होगी मधुर श्रीवास्तव की। एक ही फिल्म से सुनिएगा दिन 2:30 पर, आज की फिल्म होगी गदर। प्रस्तुति होगी नैना वाल्मीकि की। हेलो फोन इन फरमाइश, आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम लेकर आएंगे अरुण पांडे दिन 12 बजे, तो रहिएगा हमारे संग। आरोग्यम स्वास्थ्य संबंधी ये फोन इन कार्यक्रम सुनिएगा दिन 11:30 पर। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर उमेश चक्रवर्ती और विषय होगा ऑस्टियोपोरोसिस। बाल संग सुनिएगा दिन 11 बजे से, जिसमें अन्य कार्यक्रमों के अलावा सुनिएगा डॉक्टर विनीता द्विवेदी की कहानी अरुण ने कही कहानी। सामुदायिक गान शिक्षा पाठ असमिया सुनिएगा सुबह 10:10 से। मधुरिमा सुनिएगा सुबह 8:45 पर और गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7 बजे से। तो ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। आपकी सेवा में है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया इस वाद्य संगीत के साथ प्रतीक्षा करें।

0: इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। मैं हूँ आप सभी की रेडियो दोस्त प्यारी नैना और बनारस की इस ब्यूटीफुल से मॉर्निंग में करती हूँ आप सभी श्रोताओं का दिल से वेलकम और लेकर हाजिर हूँ आपका अपना फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस।

बनारस वासियों, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया ना दोस्तों? आज तो छुट्टी का दिन है, आज संडे यानी कि फन डे है। तो इस संडे आप क्या फन कर रहे हैं? वैसे छुट्टी के दिन हो ना तो एकदम ही मन नहीं करता कि बेड छोड़कर उठें, लेकिन क्या करें, उठना तो पड़ता ही है। मन करता है बस यूं ही लेटे रहें और अपनी शांत खुशनुमा स्लो मॉर्निंग को इंजॉय करें। संडे के दिन की सबसे खास बात ये लगती है ना दोस्तों कि सुबह सुबह आप अपनी चाय को और न्यूज़ पढ़ने को एंजॉय करते हैं, साथ ही साथ अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि इस संडे को बहुत खास बना देता है। सुबह सुबह हमारी माताएं, हमारी माँ कुछ टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बनाती हैं जिसको खाकर मन और भी खुश हो जाता है। दोस्तों, माँ के हाथों के बने नाश्ते से याद आया कि आज का दिन भी कुछ बहुत खास है। जी हाँ दोस्तों, आज यानी दिन रविवार 10 मई को मदर्स डे है, यानी कि हम सभी की प्यारी माताओं का दिन, जो प्रत्येक वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। दोस्तों, ये कहा जाता है ना कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। और हम जब घर जाते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले माँ को पुकारते हैं, क्योंकि माँ से ही तो घर की रौनक होती है ना। माँ की ममता की छाँव में हर बच्चा रहना चाहता है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वह अपने माँ के लिए वही छोटा सा बच्चा रहता है। और दोस्तों, माँ केवल एक शब्द नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। माँ वह होती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। जब बच्चों की बात कोई नहीं समझ पाता, तो केवल माँ ही अपने बच्चों की भाषा को समझ पाती हैं। और दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं, तो माँ ही हमें हंसना, बोलना, चलना, जीवन जीना सिखाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारी पहली गुरु, पहली दोस्त और जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमारी माँ होती है। और दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा ना जिसके जीवन में उनकी माँ का योगदान या महत्व ना हो। दोस्तों, माँ का हमारे जीवन में योगदान और महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि यह हमें कई कष्टों को सहकर जन्म देती हैं। हर परिस्थितियों में हम बच्चों के साथ खड़ी रहती हैं। जब हम दुखी होते हैं, तब माँ हमें हिम्मत देती हैं। जब हम मन में हार मान जाते हैं या मन से हार जाते हैं, तब माँ हमें फिर से उठना सिखाती हैं। माँ की दुआओं में इतनी ताकत है ना दोस्तों, कि वह बच्चे की हर मुश्किलों को आसान कर सकता है। जब हम कोई गलती करते हैं, तो माँ प्यार से बुलाती हैं। थोड़ा डांटती तो हैं, लेकिन बहुत प्यार से समझाती हैं, और इसके पीछे उनकी गहरी ममता जुड़ी होती है। और फिर हमें खूब प्यार करती हैं, हमारे पसंद के खाने भी बनाती हैं। और माँ के मुँह से सुना मेरा प्यारा राजा बेटा और मेरी प्यारी रानी बेटी सुनकर ही मन और दिन दोनों अच्छा बीतता है। माँ हमें हमारे पिताजी के डांट से भी बचा लेती हैं और अपने आंचल में छुपा लेती हैं। जब हमारे एग्जाम्स चलते हैं ना, तो हमसे

भी ज़्यादा हमारी माताएं टेंशन में रहती हैं, और एग्ज़ाम या किसी शुभ काम में पहले माँ के हाथ के खाए दही चीनी से वो काम अपने आप अच्छा बीतता है। हमारी माताएं हम बच्चों की खुशी के लिए खुद की खुशियां भी त्याग देती हैं और हमारे लिए कुछ भी करने को रेडी रहती हैं। वह कभी नहीं थकती, कभी शिकायत नहीं करती, बस अपने परिवार को खुश देखकर खुश रहती हैं। दुनिया के सारे रिश्ते ना दोस्तों हमें कहीं ना कहीं जन्म के बाद मिलते हैं, लेकिन माँ का ऐसा रिश्ता है ना हमें, जो हमें जन्म से पहले ही मिलता है। इसलिए कहते हैं कि माँ जैसा निस्वार्थ प्यार कहीं नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम कई बार अपनी माँ के साथ समय बिताना कहीं भूल जाते हैं। उनसे प्यार से बात करना, उनका हाल चाल पूछना, उनके साथ कुछ पल बिताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपनी माँ का सम्मान कीजिए, उनसे प्यार से बात करिए, उनका ख्याल रखिए। ऐसा नहीं है कि आज उनका स्पेशल दिन है इसलिए, आज उनका खास दिन है इसलिए, नहीं, बल्कि माँ के होने से हर दिन खास हो जाता है, क्योंकि माँ हमारे जीवन की बहुत अनमोल दौलत होती है। माँ वह फूल है ना दोस्तों, जिससे हमारा पूरा घर महकता है, और माँ हर दर्द की दवा होती है। माँ की ममता से बढ़कर कुछ भी नहीं। और सच कहे ना दोस्तों, तो माँ का दिल इस दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह है, और हमारी माताओं से ज़्यादा सुंदर और प्यारा इस दुनिया में कोई भी नहीं और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आज के इस खास दिन की यानी कि मदर्स डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का यह दिन आप भी अपनी माँ के साथ बिताएं और यादगार बनाएं और उनको स्पेशल फील कराएं। आज आप घर जाइए और अपनी माँ को गले लगाइए और बस इतना कहिए कि माँ, आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं। हम बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा और बस देखिए, चुटकियों में आपकी दिक्कतें खत्म होने लगेंगी। माँ की प्यार भरी मुस्कान देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा, और आज आप उनके पसंद के काम करिए, खुश रहिए और अपने माता पिता दोनों को खुश रखिए। दोस्तों, कार्यक्रम में मदर्स डे स्पेशल एक ब्यूटीफुल ट्रैक सुनवाने का समय तो हो गया है, लेकिन ट्रैक सुनवाने से पहले आइए जान लेते हैं आज यानी 10 मई का इतिहास। दोस्तों, आज ही के दिन सन 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी दिन आरंभ हुआ था। आज ही के दिन सन 1986 में भारतीय शतरंज खिलाड़ी पेंटाला हरिकृष्ण का भी जन्म हुआ था। भारतीय संविधान के विशेषज्ञ एवं पद्म भूषण से सम्मानित सुभाष कश्यप का जन्म भी आज ही के दिन सन 1929 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के जनक के तौर पर जाने जाने वाले B.S. केसवन का भी जन्म सन 1909 में हुआ था, जो भारत के पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे। बंगला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता पंकज मलिक का भी जन्म सन 1905 में आज ही के दिन हुआ था। दोस्तों, ये था आज यानी 10 मई का इतिहास। और दोस्तों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर और जानते हैं देश दुनिया और अपने बनारस का हालचाल।

दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें भारत के सभ्यतागत आत्मा के शाश्वत आवाज बताया। मोदी ने टैगोर को असाधारण लेखक, कवि और दार्शनिक बताते हुए उनके विचारों को मानवता के लिए मार्गदर्शन कहा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे, जहां वह बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे। बाद में हैदराबाद की यात्रा

तय करेंगे, जहां वे लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वह गुजरात पहुंचेंगे। साथ ही कश्मीर तक वंदे भारत ट्रेन पहुंचने के बाद रेल मंत्रालय ने अमृतसर से जम्मू के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने पर काम शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार हैदराबाद स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में हुए इस परीक्षण में स्क्रैमजेट इंजन 1,200 सेकेंड यानी कि करीब 20 मिनट तक लगातार सफलतापूर्वक चलता रहा। भारत की ऐसी मिसाइल तकनीक की दिशा में बढ़ती सफलता हासिल की है। भविष्य में यह भारत के काफी काम आ सकते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने शनिवार को हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम के तहत स्क्रैमजेट कैबस्टर का लंबी अवधि वाला सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार हैदराबाद स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में हुए इस परीक्षण में स्क्रैमजेट इंजन 1,200 सेकेंड यानी करीब 20 मिनट तक लगातार सफलतापूर्वक चला था। अपने शहर बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस सख्त है। शनिवार को अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरि मीणा ने मंदिर के गेट नंबर 4 से मैदागिन तक पैदल गश्त कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। दोस्तों, ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हालचाल। दोस्तों, चूंकि आज मदर्स डे है तो इस दिन पर आपको एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक सुनवाते हैं और ये ट्रैक कहीं ना कहीं आपके दिल को जरूर छुएगा। तो सुनिए ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी पर।

माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी दुनिया का प्यार है। उसके आंचल की छाँव में हर मौसम गुलजार है। जब भी ठोकर लगती है, माँ सबसे पहले याद आती है। अपने सारे दुख छुपाकर वह बस मुस्कुराती है। अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। और इसी गीत के साथ गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारी मेल आईडी है pkldaiarvaranasi@gmail.com। आपके प्रतिक्रिया का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा। और तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, और अपने माँ के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट करें। बाय बाय। दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त नैना को। बाय।

0: मॉर्निंग बनारस।
1: आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: श्रोता, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। चंद पलों में आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकू नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं।

0: प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हुआ है विकास। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से है जारी। कई जिलों में जागरूकता रैली और संगोष्ठी के किए जा रहे आयोजन। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निस्तारण। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा कल हुई शुरू। आज आयोजित होगी परीक्षा का दूसरा चरण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
2: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक की प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
1: प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण की स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में कल जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वहां एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आमजन को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर और गोरखपुर जिले में कल मीडिया के लोगों को स्व जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। बिजनौर की जिला जनसंख्या अधिकारी वान्या सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
3: स्वगणना कार्यक्रम है, ये 20 दिवसीय और 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आप सभी के माध्यम से हमने एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना स्वगणना कराएं और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मोटिवेट करें।
1: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी और उनके उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने लिखा है कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृत काल में प्रवेश करेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X handle AIR News_

0: जीकेपी पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और तहसीलों में कल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। मथुरा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
1: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है इसका कि सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा कल से शुरू हुई। पहले दिन परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहा। आज परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं मनोविज्ञान सहित 5 विषयों और द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी एवं कला सहित 4 विषयों की परीक्षा आयोजित होगी। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही है। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाए। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कल महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के साहस और राष्ट्र रक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर हमें राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में 1 बच्चा और 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें 3 लोग दब गए और मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में 2 अन्य व्यक्ति घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। ITF जूनियर सर्किट की तीसरी वरीय भारत की कार्तिका पद्म कुमार ने कल ITF जूनियर J30 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋषभ सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हुआ है विकास। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से है जारी। कई जिलों में जागरूकता रैली और संगोष्ठी के किए जा रहे आयोजन। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक वाद, विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निस्तारण। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के

प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा कल हुई शुरू, आज आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को समझना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज। न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH DRM और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी का गाया रा गुर्जरी तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत की है नाना मुलेनी और हारमोनियम पर हैं पुरुषोत्तम वाला वालकर।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग गुर्जरी तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत की थी नाना मूले ने और हारमोनियम पर थे पुरुषोत्तम वाला वालकर। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियाद ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीडीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीडीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस, VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से

0: जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
2: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
6: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
7: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष

0: शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाड और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाड में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाड और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं, लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headline.

नामी के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरा करेंगे। वो हैदराबाद में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के कयाम के 45 साल पूरे होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। टीवीके के सरबराह सी जोसफ विजय को आज सुबह तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का वजीर आला मुकर्रर किया है। मरकज ने जाब्तों की इशात के साथ मेहनत से मुतालिक 4 जाब्तों को नाफिज कर दिया है। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर के तवील दौरानिए के तजुर्बे के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी में बड़ी कामयाबी हासिल की है और 9 भारतीय मुक्केबाज

0: तैयारी में बड़ी कामयाबी हासिल की है और 9 भारतीय मुक्केबाज ताशकंद ने 15 साल और 17 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बेंगलुरु में तकरीबन 11 बजे दिन में द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के कयाम के 45वें साल के तकरीबात में शिरकत करेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नए तामीर शुदा ध्यान मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के अकीदतमंदों से खिताब करेंगे और अहाते में नए तामीर करदा ध्यान मंदिर या मेडिटेशन हॉल का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी दिमागी सेहतमंदी, देही तरक्यात, फितरत के तहफ़ और समाजी बुनियादी ढांचे से मुतालिक मजकूरा फाउंडेशन के साल भर तक जारी रहने वाले प्रोजेक्टों का भी आगाज करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर जाने से कबल वज़ीर-ए-आज़म HAL हवाई अड्डे पर BJP के रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब करेंगे। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद रवाना होंगे, जहां वो दोपहर तकरीबन 3 बजे लगभग 9,400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। तमिलनाडु वेत्री कशगम TVK के बानी सी जोसफ विजय आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनकी हलफ बर्दारी की तकरीबात आज सुबह 10 बजे नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुनाकिद होगी। रियासत के गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर जनाब विजय को ओहदे का हलफ दिलाएंगे। पार्टी जराये के मुताबिक उनके साथ 9 वजीर भी हलफ लेंगे। चेन्नई में इस तकरीब के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि उनकी हलफ बर्दारी की तकरीबात में कसीर तादाद में लोगों के आने की तवक्को है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: चेन्नई सुपर किंग्स का शहर आज 51 साल जोसफ विजय के लिए बिगुल बजाएगा, जो इस तकरीब की मरकजी शख्सियत होंगे। आज रियासत की राजधानी हल्की बारिश और बूंदाबांदी के साथ नए वजीर आला का खैर मकदम कर रहा है। 34% से ज्यादा मैंडेट हासिल करने वाले नीज कई कामयाब फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाले विजय अब वजीर आला बनने जा रहे हैं। उनके वालिद SA चंद्रशेखर फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पू से अपनी फिल्मी करियर का आगाज किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी जिनमें सियासी मुकालमे भी शामिल थे। 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली TVK ने कांग्रेस, VC के बाएं बाजू की पार्टियों और IUML की हिमायत से अक्सरियत हासिल की है। हुकूमत की तश्कील के लिए उन्हें 5 दिन तक मुसलसल बातचीत और मीटिंगें करनी पड़ी। अपनी मकबूलियत और करिश्माती शख्सियत के बायस विजय ने पहली ही कोशिश में तारीख रकम करते हुए वजीर आला का ओहदा हासिल कर लिया। उंगा विजय नान वारेन उनका इंतखाबी नारा था, जिसके जरिए उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब इस नई हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा आवाम लेंगे, जिन्होंने उन्हें मैंडेट दिया है। तमिलनाडु से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने N रंगास्वामी को पुदुचेरी के वजीर आला के तौर पर मुकर्रर किया है। इस तकर्री के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को मरकज के जेरे इंतजाम इलाके में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदु किया है। 13 मई को जनाब रंगास्वामी वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। गुज़श्ता 9 अप्रैल को मरकज के जेरे इंतजाम इलाके में हुए इंतखाब में AINRC की क़यादत वाले NDA की आसान जीत हासिल करने के बाद जनाब रंगास्वामी 5वीं मुद्दते कार के लिए वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 मई को किया गया था। आसाम BJP कानून साज पार्टी आज गुवाहाटी में अपने रहनुमा का इंतखाब करने के लिए मीटिंग करेगी। BJP के 9 मुंतखब अरकान असेंबली आज सुबह 9 बजे अटल बिहारी वाजपेयी भवन में मीटिंग करेंगे। इस दौरान आसाम में NDA सरकार की मुसलसल तीसरी मुद्दत कार के लिए हलफ बर्दारी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: BJP कानून साज पार्टी की मीटिंग BJP के मरकजी मुशाहिदीन जगन प्रकाश नड्डा और उनके साथी मुशाहिद नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में मुनक़िद होगी। मीटिंग के बाद NDA कानून साज पार्टी की मीटिंग भी इसी मकाम पर होगी। इसके बाद एनडीए

0: कानून साज पार्टी हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगी। इस दौरान 12 मई को मुनक़िद होने वाली हरबबरदारी तकरीब के लिए खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में तेजी से तैयारियां जारी हैं। कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिला इंतजामिया ने इस दिन के लिए शहर में ट्रैफिक के जाब्ते भी जारी कर दिए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करने की तवक्को है। इसके अलावा बीजेपी के इकतदार वाली मुख्तलिफ रियासतों के कई वज़राए आला और मरकजी वज़रा को भी इस अहम तकरीब में मदऊ किया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: कांग्रेस पार्टी की आला क़यादत ने कल नई दिल्ली में केरला में हुकूमत की तश्कील पर तबादला ख्याल के लिए एक मीटिंग की। ये मीटिंग कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहायशगाह पर बुलाई गई थी, जिसमें सीनियर रहनुमा राहुल गांधी, पार्टी की रियासती इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी, जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और केरला के सीनियर रहनुमा रमेश चैनीथाला और वीडी सतीसन ने शिरकत की। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी केरला के नए वजीर आला के बारे में हतमी फैसला करेंगे और बहुत जल्द नाम का ऐलान किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने तमाम मरकजी वजारतों, महकमों, खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज CPSEs में काम करने वाले आउटसोर्स्ड और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के तहफ्फुज़ को नुमाया तौर पर मजबूत करने के लिए इकदामात किए हैं। लेबर कोड्स की तामील को सरकारी खरीदारी और बोली लगाने की अहलियत से बराह रास्त मुंसलिक कर दिया गया है, ताकि उजरतों की अदायगी में ताखीर और कानूनी वाजिबात की अदम अदायगी जैसे मसाइल को रोका जा सके। इन हिदायत में इस बात का इरादा किया गया है कि पेशे से मुतालिक तहफ्फुज़ हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के सेक्शन 55(3) के तहत ये प्रिंसिपल आजिर की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ठेकेदार बर वक्त उजरत अदा करे। इन हिदायत में कोड ऑन वेजेस 2019 के सेक्शन 17(1) का भी हवाला दिया गया है, जो उजरतों की अदायगी के लिए वक्त की हद मुकर्रर करता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: नया फ्रेमवर्क 4 लेबर कोड्स के तहत मजदूरों के तहफ्फुज़ के तसव्वुर को अमली शक्ल देता है और साथ ही उजरत की बर वक्त अदायगी और सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात जमा कराने में नाकाम रहने वाली फर्मों के लिए सख्त सजाएं बशमूल ब्लैक लिस्टिंग और काम से रोकने जैसी दफात मुतारफ करवाता है। जुमे को जारी करदा नई हिदायत के तहत तमाम वजारतों, महकमों, आईनी और खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर इदारों को हिदायत दी गई है कि वो सख्ती से इस बात को यकीनी बनाएं कि ठेकेदार मुकर्रा वक्त के अंदर उजरतें तकसीम करें। हिदायत के मुताबिक रोजाना की उजरत शिफ्ट के अख्तिताम तक हफ्तावार उजरत, हफ्तावार छुट्टी से पहले 15 रोजा उजरत, 15 दिन खत्म होने के 2 दिन के अंदर और माहाना उजरत अगले महीने की 7 तारीख तक अदा की जानी चाहिए। हुकूमत ने मजीद हिदायत दी है कि उजरतों की अदायगी सिर्फ बैंक ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाए और ठेकेदारों के लिए ये लाजमी है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहन अम्मार।
1: दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO ने हैदराबाद में अपने एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कम्बस्टर का तवील दौरानी का एक जामी टेस्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। वजारत दिफा ने बताया कि इस तजुर्बे के दौरान 1200 सेकंड से जायद का रन टाइम हासिल किया गया, जो रवां साल जनवरी में किए गए 700 सेकंड के पिछले टेस्ट से कहीं ज्यादा है। ये कामयाब तजुर्बा भारत को जदीद एरो स्पेस सलाहियतों और मुसलसल उभरती हुई जंगी टेक्नोलॉजीज में सफे अव्वल में खड़ा कर देता है। वजारत ने मजीद बताया कि ये कम्बस्टर DRDO की लेबोरेटरी DRDL ने सनती शराकत दारों के तआवुन से तैयार किया है। इस कम्बस्टर में मकामी तौर पर तैयार करदा माई हाइड्रोकार्बन ईंधन, जदीद थर्मल बैरियर कोटिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जदीद टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं। मुकद्दस सोमनाथ मंदिर रूहानियत और पायदार सियाहत के आलमी मरकज के तौर पर अपने जदीद सफर के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन होने के नाते उनकी क्यादत में मंदिर अपने सुनहरे दौर में दाखिल हो गया है। अपनी मजहबी अहमियत से हटकर सोमनाथ माहौलियाती तहफ्फुज में एक अलमबरदार के तौर पर उभर रहा है, जिसका मकसद कार्बन के सिफर अखराज वाला भारत का पहला मंदिर बनना है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: मिशन लाइफ पहल के तहत मंदिर

0: फूलों के फजले को खाद में और प्लास्टिक के फजले को पेवर ब्लॉक्स में तब्दील करके पायदारी में मेयारात कायम कर रहा है। इसके अलावा जदीद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बारिश के पानी को जखीरा करने के निजाम और मियावाकी जंगलात के साथ मंदिर का ट्रस्ट तेजी से कार्बन के सिफर अखराज की तरफ बढ़ रहा है। इस डिजिटल पहल से अब दुनिया भर के अकीदतमंद न सिर्फ घर बैठे पूजा बुक कर सकते हैं बल्कि मंदिर का प्रसाद भी हासिल कर सकते हैं। ये कदीम रिवायात को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मिलाने की एक बेहतरीन मिसाल है। आज वंदे भारत और बैन अक्वामी हवाई अड्डों समेत आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी से लैस इस मुकद्दस मंदिर में हर साल 97 लाख से ज्यादा अकीदतमंद पूजा अर्चना करने आते हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के तआवुन से गुज़श्ता रोज नई दिल्ली में माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन मेट काउंसिलर्स कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। ये तकरीब प्रोजेक्ट मेट की तौसी की अलामत है जो कि एम्स नई दिल्ली की जानिब से तैयार करदा नौमरों के फलाह बहबूद का एक प्रोग्राम है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कल ट्रिनिडेड एंड टोबेगो में वाक नेल्सन आइलैंड का दौरा किया जहां उनके हमरा वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर भी मौजूद थी। नेल्सन आइलैंड वो मकाम है जहां ठेके पर भारतीय मजदूर पहली बार ट्रिनिडेड एंड टोबैगो पहुंचे थे। अमरीका ने H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत मुलाजिम की खिदमात हासिल करने के लिए अदा की जाने वाली कम अज कम उजरत में पहले से तयशुदा हद से 30% इजाफा करने की तजवीज पेश की है। मुक्केबाजी में ताशकंद में जारी 15 साल और 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत की 15 साल से कम उम्र की लड़कियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 9 मुक्केबाज अलग अलग जुमरों में फाइनल में पहुंच गई हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने मगरबी बंगाल में हुकूमत की तश्कील की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, शुभेंदु अधिकारी ने वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया, मगरबी बंगाल में पहली बार BJP की हुकूमत। इसी अखबार की एक सुर्खी है, तमिलनाडु में काफी उथल पुथल के बाद विजय की हुकूमत साजी का रास्ता साफ। वजीर आजम का तेलंगाना दौरा, हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए के मंसूबों का आगाज करेंगे। इस खबर को अखबार प्रताप ने नुमाया तौर पर शाया किया है। सभी अखबारात ने लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यन के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वाइस एडमिरल स्वामीनाथन के बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर होने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। मुतअद्दिद दिफाई आदाब को निशाना बनाने वाले जदीद अग्नि मिजाइल के कामयाब तजर्बे से मुतल्लिक खबर को भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप समेत दीगर अखबारों ने बड़ी खबर बनाया है। अखबारात की अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं, लबनान में इजरायली फौज के हमले जारी, मजीद 31 अफराद हलाक, मुख्तलिफ गाँव को खाली करने का हुक्म।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो हैदराबाद में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। TVK के सरबराह सी जूसफ विजय को आज सुबह तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का वजीर आला मुकर्रर किया है। मरकज ने जाब्तों की इशात के साथ मेहनत से मुतालिक 4 जाब्तों को नाफिज कर दिया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे कार्यक्रम मधुरिमा।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक।

0: पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
2: 0542227658
3: 0542227658।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: आज मधुरमा के सफर में आपका हम सफर श्यामा प्रसाद यादव, तो स्वीकार कीजिए, नमस्कार। जिंदगी आती है तो आए बलाएं लेकर, हम भी घर से निकले हैं माँ की दुआएं लेकर।

जी हाँ, माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति का नाम है जो हमें हर मुश्किलों में संभालती है। माँ का वो आंचल एक ठंडी सी छांव।

एहसास है जो बिना कुछ कहे हमारी हर दुख दर्द हर तकलीफ को समझ जाती है। मुसीबत में जब हर कोई साथ छोड़ देता है तब माँ ही साथ खड़ी रहती है। माँ तो माँ होती है।

0: माँ की महिमा, माँ का बखान शब्दों में बयां नहीं दी जा सकती। बातें हम करेंगे इस अंतराल के बाद।
1: दादू, आपका तारा मतलब
2: बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा।
3: पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका।
1: हाँ बैल, मुझे मार मतलब
2: मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे।
4: और ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना।
1: इसका मतलब
4: इन्हीं से पूछो।
5: समझा पापा।
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: माँ की दुआ जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत होती है और उसकी दुआ हर मुश्किल में हमारे साथ रहती है। वो काला टीका लगाकर हर नजर से हमें बचाती है।

सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो एक भावना है जो हर पल हमारे साथ चलती है और हर बला से हमें बचाती है। शायर मुनव्वर राना का वो शेर, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। वो वात्सल्य का झरना है।

0: आज मधुरिमा का सफर बस यहीं तक। आज की सफर में आपका हम सफर था श्यामा प्रसाद यादव। इस कार्यक्रम को हमने सजाया इन फिल्मों के गीतों से, राजा और रंक, छोटा भाई, माँ, लाडला, पांच कैदी और तलाश।
1: मेरी निंदिया के लिए
0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
2: मधुरिमा, द साउंड ऑफ मेलोडी। मधुरिमा,
0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
4: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश के जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
5: देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। इस बार जनगणना दो चरणों में पूरे डिजिटल तरीके से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना की शुरुआत 22 मई से होगी और उससे 15 दिन पहले 7 मई से स्वगणना की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा क्या है, जनगणना को सटीक और तय समय में पूरा करने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, जनगणना में लगे कर्मियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता

0: एकता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है मैम।
1: धन्यवाद ओम जी।
0: उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण को लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? 30 दिनों के भीतर इतने बड़े राज्य में मकानों की गणना पूरी करने के लिए क्या खास रणनीति बनाई गई है?
1: उत्तर प्रदेश एक व्यापक प्रदेश है और हमारे यहाँ जिस प्रकार की जनसंख्या की चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हमारे यहाँ 1400 चार्ज अधिकारी बनाए गए हैं जो देश में सबसे अधिक चार्ज हैं। इन सभी में तहसीलें, नगरीय निकाय, छोटे बड़े नगरीय निकाय, छोटी बड़ी तहसीलें, सारे राजस्व ग्राम सभी सम्मिलित हैं। और इन 1400 चार्जेस में हमारे 5.5 लाख प्रगणक और सुपरवाइजर्स अर्थात पर्यवेक्षक लगेंगे। हमारे पास एक निश्चित समय है जिसमें मकान सूचीकरण जो हमारा प्रथम चरण है जनगणना का उसका कार्य संपन्न किया जाना है और इसी के लिए आवश्यक है कि हम हर घर तक पहुंचे, कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए, कोई भी क्षेत्र छूटने ना पाए। और 5.5 लाख लोग इस कार्य को 22 मई से 20 जून के मध्य घर घर जाकर करेंगे। और उससे पहले हमें यह भी आशा है बहुत सारे नगरीय क्षेत्रों में जहां पर कई बार कोई घर पर नहीं मिलता है या लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम अपना डेटा खुद देखना चाहते हैं, तो इस बार स्वय गणना की भी सुविधा है पूरे देश में। 7 मई से हमारे यहाँ स्वय गणना की सुविधा लागू है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर से बैठकर जो हमारा जनगणना का तय प्रश्नावली होती है पूरे देश के लिए जिसमें 34 प्रश्न रहते हैं, वो घर से कोई भी बैठकर भर सकता है और उसको एक यूनिक कोड उसके मोबाइल फोन के नंबर के हिसाब से उसको एक यूनिक कोड मिलेगा। वो यूनिक कोड जब आपका प्रगणक आपके घर आएगा 22 मई के बाद आपको उसके साथ शेयर करना है। आपके पास समस्त विकल्प उपलब्ध हैं उस समय भी। आप ये भी कह सकते हैं अपने प्रगणक को कि आपने जो डेटा भरा है उसको संशोधित कर दें। आप उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, आप उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। आप अपने प्रगणक को ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्वय गणना की प्रक्रिया है उसको एक तरफ करते हुए पूरा नया प्रश्नावली को भर दे।
0: बुलंदशहर, बहराइच और प्रयागराज जैसे जनपदों में प्री टेस्ट हुआ, उस दौरान क्या महत्वपूर्ण बिंदु निखर कर सामने आए?
1: हम लोगों ने 3 जनपदों में जिसमें से 2 जनपद हमारे बुलंदशहर और बहराइच हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्री टेस्ट हुआ। इनफैक्ट बहराइच में जो हमारा क्षेत्र था मिहींपुरवा, वो जंगल से सटा हुआ क्षेत्र था तो उसकी अलग लेवल की चुनौतियां रहती हैं। और प्रयागराज में जो हमारा क्षेत्र था वो नगर निगम क्षेत्र था और हमने चौक का एरिया लिया था बिकॉज जो हमारे ओल्ड सिटी सेंटर्स होते हैं वो अक्सर बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है। तीनों जगह हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लर्निंग्स थी। सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग तो ये थी कि कहीं ना कहीं नगर निकाय या ग्रामीण या तहसील स्तर पे जनगणना को ये सोच पाना कि कोई लोकल अधिकारी उसको कंप्लीट करा पाएगा, ऐसा संभव नहीं होता। जनगणना एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे विभागों का सहयोग चाहिए होता है, जनमानस का सहयोग चाहिए होता है, हमारे जो लोकल लीडर्स होते हैं उनका सहयोग चाहिए होता है। सभी के सहयोग के माध्यम से हम लोग ये जनगणना का प्रोसेस कंप्लीट करा पाते हैं। दूसरा, हमने ये भी देखा हमारी बहुत सारी महिलाएं हमारी प्रगणक थी और उन्होंने बहुत सबने अपनी अपनी लर्निंग्स शेयर की, उनको ऐप से काम करना बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों ने बहुत सारी लर्निंग्स देखी। कहीं ना कहीं आपका प्रगणक भी जब क्षेत्र में जा रहा होता है तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हो सकता है जो क्षेत्र मुझे आवंटित किया गया है वहां की जनता कोऑपरेट ना करे। तो हमारा ये भी अनुरोध रहता है सभी से, ये हमारी अपील भी रहती है जनता से कि जब जनगणना कार्मिक आपके यहाँ आएगा उसके पास उसका आईडी भी होगा, वो आपका कोई ना कोई लोकल कार्मिक होता है, कोई टीचर होता है या कोई स्थानीय निकाय का कोई कर्मचारी होता है, प्लीज उसके साथ थोड़ा सा समय निकालकर, ये देश के महत्व का कार्य है, इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा बट आप ये प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया। तो प्रीटेस्ट की हमारी लर्निंग्स बहुत अच्छी थी। कुछ एप्स में जो छोटी छोटी डिफिकल्टीज हमारे प्रगणक और सुपरवाइजर्स को आ रही थी उनको इम्प्रूव किया गया। आज की तारीख में जो ऐप है वो बहुत ही सुगम और सरल ऐप है।
0: ये शहरों में जो झुग्गी बस्तियां होती हैं, अनियमित कॉलोनियां होती हैं और अस्थायी निवासी हैं, उनकी गणना को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?
1: मैं आपके प्रश्न को 2 भाग में बांटना चाहूंगी। एक तो है झुग्गी झोपड़ी और बस्तियां जो अनियमित रहती हैं, ये शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से ये समस्या है। तो इसके लिए एक अलग गाइडलाइन है भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा। स्लम ब्लॉक, जब हम अपना गणना ब्लॉक बनाते हैं तो ऐसी स्लम्स जो कि अनियमित क्षेत्र हैं उनको अलग बनाना है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें विकास की ज्यादा आवश्यकता है। तो स्लम ब्लॉक्स की गाइडलाइंस थोड़ा सा अलग होते हैं हमारे नॉर्मल गणना ब्लॉक से। हम ऐसा नहीं करते हैं कि बहुत अच्छी बिल्डिंग के साथ एक स्लम है तो दोनों को एक साथ मिला दिया और फिर ऐसा लगेगा कि आपके इंडिकेटर बहुत बढ़िया है। तो स्लम ब्लॉक को हमेशा अलग से रखा जाता है, स्लम ब्लॉक की अलग से काउंटिंग की जाती है। मैं बताना चाहूंगी कि 2011 में जैसे प्रदेश में 10,000 स्लम ब्लॉक अलग से चिन्हांकित किए गए थे और फिर उनको धीरे धीरे विकसित करते हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। आपके प्रश्न का दूसरा भाग ये था कि ऐसी बहुत सारी ट्रांजिटरी पॉपुलेशन रहती है, या ये कह लीजिए कि बेघर जो हमारे लोग होते हैं। अभी हम घरों की गणना कर रहे हैं तो बेघर फर्स्ट फेज में नहीं काउंट किए जाते हैं, बट सेकेंड फेज में हम लोग प्रत्येक व्यक्ति की गणना करते हैं।

0: तो ऐसे बेघर लोग आखिरी दिन, जो सेंसस का आखिरी दिन होता है 28 फरवरी को, शाम के 5 बजे के बाद जो जहां पाया जाता है, रोड पर, स्टेशन के बाहर, पार्क में, फुटपाथ पे, ऐसे बेघर लोग जो जहां निवास कर रहे होते हैं, शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उनकी भी गणना की जाती है। और यह भी आकलन किया जाता है कि ऐसे कितने लोग पाए गए जो कि बिना किसी घर के, बिना किसी आवास के खुले में सो रहे थे। तो दोनों ही व्यवस्थाएं ऑलरेडी जनगणना का पार्ट है जिसमें सभी को कवर किया जाता है।
1: ये जो डेटा संकलन हो रहा है, तो नागरिकों की डेटा की गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है?
0: पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि सेंसस एक्ट में ही गोपनीयता का प्रोविजन है, वो निहित है। एक बार जब प्रश्नावली भर दिया जाता है तो वो गोपनीय हो जाता है, और वो इतना गोपनीय समझा जाता है कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी उस डेटा को शेयर नहीं करते हैं। सेंसस हमेशा एक स्टेटिस्टिक जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेंसस आपको ये बता सकता है कि एक राजस्व ग्राम है उसमें ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है या शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बट सेंसस आपको कभी ये नहीं बताता है कि वो कौन से परिवार हैं और उनका नाम क्या है। तो सेंसस इज अ स्टेटिस्टिक एक्सरसाइज, वो आपको स्टेटिस्टिक्स जनरेट करके दे देता है। जो डेटा आप अपने एन्यूमरेटर को बताते हैं वो हमेशा गोपनीय रहता है। जब हम अपने चार्ज ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करते हैं, अर्थात तहसीलदार और हमारे नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी जिनको ये कार्य फील्ड पर कराना है, उनको बार बार ये बताया जाता है कि किसी भी दशा में किसी के भी पूछने पर, आप प्रगणक से भी नहीं पूछोगे और आपको भी यदि किसी स्रोत से कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो आप किसी को ये नहीं बताते हैं कि डेटा क्या है या उस व्यक्ति ने क्या रिस्पॉन्स दिया। यही प्रगणक की भी मुख्य भूमिका है, ये हमारे चार्ज ऑफिसर की भी मुख्य भूमिका है। और ऐसा करना तो एक्ट का वायलेशन भी है, इस पे कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है, परंतु ऐसा कभी हुआ नहीं है भारत की हिस्ट्री में। और वो जो हमारी प्रश्नावली भरी जाती है वो एकदम कॉन्फिडेंशियल होती है, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है।
1: गलत और फर्जी जानकारी को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं? और मान लीजिए किसी से कुछ गलत जानकारी दे दी गई, तो उसको सुधारने का क्या ऑप्शन होता है?
0: सेंसस में हम गलत और सही के अर्थ पर नहीं जाते हैं, बिकॉज हम ये मानते हैं कि जो परिवार हमें बता रहा है वो सही बता रहा है, तो हम उसको कभी प्रूव करने को नहीं कहते हैं। गलत हो सकता है कि परिवार झूठ बोले आपसे, तो एन्यूमरेटर को थोड़ा ट्रेन किया जाता है कि सामने शौचालय बना हुआ, परिवार कह रहा है हमारे पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो एन्यूमरेटर पूछेगा कि ये किस स्कीम में मिला, किस कार्य में आता है, क्या आप इसको यूज नहीं करते हैं। तो एन्यूमरेटर की ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि वो जहां तक हो सके, संभव हो सके, उत्तरदाता को ये समझाए कि आपको एकदम सही आंसर देना है और आप जो कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। और सेंसस वन टाइम प्रोसीजर है, एक बार आपने अपना रिस्पॉन्स फ्रीज करा दिया, आपने जो भी उत्तर दिया उसको एक बार प्रश्नावली में भर लिया गया, तो वो प्रश्नावली फिर कॉन्फिडेंशियल हो गई। तो ऐसा कोई विकल्प
1: जी,
0: नहीं है कि आप बाद में जाकर अपने किसी आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप जो कह रहे हैं हमारे लिए वही सच। तो हम सही और गलत के मानक पे नहीं जाते हैं।
1: जी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधता वाले राज्य में जनगणना की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या देखते हैं आप?
0: उत्तर प्रदेश बहुत व्यापक हमारा प्रदेश है, बहुत अधिक हमारी जनसंख्या भी है, वो हमारा सबसे बड़ा एसेट भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती जो पूरा देश को लगता है और उत्तर प्रदेश में हमारे सामने है, वो है कवरेज, कि इतने अधिक क्षेत्रफल में प्रत्येक घर तक पहुंच पाना, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति ना छूटे। इसके लिए जिला प्रशासन के सामने हमारे चार्ज ऑफिसर जो तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी, और हमारे सामने भी निदेशालय के रूप में, सबसे बड़ी जो पहली चुनौती है वो है कवरेज। फिर दूसरी चुनौती आती है कि आपको 5.5 लाख कार्मिक चाहिए, और ये एक दिन की ड्यूटी नहीं है या 2 दिन की ड्यूटी नहीं है इलेक्शन की तरह, ये एक 30 दिन की प्रक्रिया है और आपकी ट्रेनिंग भी 3 दिन की होती है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो जो कार्मिक हो कम से कम वो मनोयोग के साथ पूरा लगा रहे इस ड्यूटी में और उसको अच्छे से कंप्लीट करे, तो ऐसा डेटाबेस बना पाना भी हमारे लिए, खासकर जो हमारा दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है वहां आबादी बहुत अधिक है परंतु उतने कार्मिक नहीं है, तो हमें कार्मिकों के लिए आसपास से भी आवश्यकता पड़ती है कि हम लोग अन्य जनपदों से भी उनकी सर्विसेज प्राप्त करें। तीसरी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश का जो शहरी क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है, और शहरी क्षेत्र की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों से एकदम अलग होती है। शहरी क्षेत्र की समस्याएं, जैसे मैं एक बताना चाहूंगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग, और वो पूरा दिन घर पे नहीं रहते हैं, और एन्यूमरेटर आया, वो बार बार आया अपने 1 माह के अवधि के दौरान, और आप उसको घर पर नहीं मिले, और फिर बाद में शिकायत भी होती है कि हमारे यहाँ एन्यूमरेटर नहीं आया क्योंकि हमारे यहाँ प्रगणक आया नहीं और उसने हमारा डेटा संग्रहण नहीं किया। ये हमारी मुख्य कुछ चुनौतियां। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं स्वयं गणना का भी प्राविधान किया गया है कि आप घर से कम डेटा भर दें और एक एन्यूमरेटर का आपके पास लोकल एरिया में जो भी उसका फोन नंबर प्राप्त कर लें या जो भी आप उससे एक समय पर मिलकर उसको कम से कम अपनी प्रश्नावली कंप्लीट करा दें। तो ये कुछ चुनौतियां हैं हमारे सामने। सबसे बड़ी चुनौती है कवरेज, नॉट जस्ट ज्योग्राफिकल बट हर व्यक्ति तक पहुंचना, हर स्थान तक पहुंचना। बट मुझे पूरी आशा है इस बार जिस प्रकार की गहन तैयारी हम लोग के जिलाधिकारियों ने की है उसके बाद ये चुनौती नहीं रहनी चाहिए, और हमारे पास बहुत सारे डिजिटल साधन है, जैसा मैंने आपको बताया कि हम सभी गणना ब्लॉकों का गठन डिजिटल माध्यम

0: से कर रहे हैं, अर्थात हम गूगल मैप जैसे एक्चुअल मैप के ऊपर उसका गठन कर रहे हैं, तो उससे हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोई भी प्रगणक को वो क्षेत्र आवंटित नहीं है और जहां पर शायद हमारी जनसंख्या छूट सकती है। तो सभी चीजों के क्रॉस चेक्स एंड बैलेंसेज हैं और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।
1: जी, क्या जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है और इसके कानूनी पहलू क्या हैं?
0: बिल्कुल, जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है। एक अपील भी जारी की गई है प्रदेश सरकार द्वारा कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जब प्रगणक आपके घर आता है, उसको ये वैधानिक अधिकार है कि वो आपके घर आए और वो आपसे प्रश्न पूछे, और आपका ये वैधानिक दायित्व है कि आप उसको सही उत्तर दें। ये सभी कुछ हमारा जो सेंसस एक्ट 1948 है उसमें निर्धारित है कि वो आपसे प्रश्न पूछने के लिए आपके घर आएगा, आप उसको मना नहीं करेंगे और आप उसको उत्तर देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम जनगणना में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जनगणना ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना है और यह भी अपेक्षित है कि प्रत्येक व्यक्ति को सही उत्तर देने हैं।
1: जी, अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो कोई कानून भी है जिसमें कुछ ये कहता है कि नहीं, इनको पार्टिसिपेट करना ही है?
0: सेंसस एक्ट 1948 में ये निर्धारित है कि प्रगणक आपके घर आएगा और आप उसको उत्तर देंगे। यदि आप नहीं देते हैं तो आप एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके।
1: आम जनता को जनगणना में भाग लेने के लिए किस तरह से जागरूक किया जा रहा है?
0: वर्तमान में तो हम लोग अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग उससे जुड़े, क्योंकि घर घर तक ये बात पहुंचानी है। हमारे पोस्टर, बैनर, टीवी कैंपेन ये सब तो चल ही रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में भी बार बार हमारा एडवर्टाइजमेंट आता रहेगा कि आपकी ये तिथियां हैं। बहुत सारे हो सकता है जनप्रतिनिधि भी अपील करें, बट घर घर तक कहीं ना कहीं ये बात पहुंचने की आवश्यकता है। तो हमने जैसे बताया, प्रयागराज में उन्होंने कूड़ा गाड़ी के माध्यम से अनाउंस करवाया। हमारा ये भी प्लान है कि शहरों में RWA के माध्यम से, क्योंकि RWA सभी जगह जहाँ पे जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से जो पढ़ी लिखी जनता है उन तक ये बात पहुंचाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने ये कार्य मुख्य विकास अधिकारी को दिया है कि वो जिला पंचायती राज अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम के प्रधान के माध्यम से ये अपील जारी कराएं और ये सुनिश्चित कराएं कि प्रत्येक घर तक हमारा प्रगणक पहुंचे और प्रत्येक घर उसको उत्तर दे। तो हमारा दो स्तर का कैंपेन है, एक रूरल कैंपेन जो कि प्रधानों के माध्यम से और ग्रामीण जो हमारे कार्मिक तैनात होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में उनके माध्यम से होगा, और शहरी क्षेत्रों में क्योंकि चुनौती अधिक होती है तो मीडिया कैंपेन तो है ही। उसके साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि स्वगणना अधिक से अधिक लोग करें, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोगों के पास बहुत बार समय नहीं होता कि वो क्वेश्चनर भरने के लिए आधा घंटा दे पाए। तो स्वगणना का विकल्प यूज कर सकते हैं और अपने एन्यूमरेटर को अपना आईडी शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिकांश विकास प्राधिकरणों द्वारा, नगर निगमों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी कॉलोनीज में जब हमारी जनगणना चलेगी तो बार बार अनाउंसमेंट कराई जाएगी, वहां के एन्यूमरेटर का नंबर शेयर किया जाएगा कि यदि कोई घर किसी भी कारण से छूट जाता है पहले 10-15 दिन में तो वो जरूर से अपने प्रगणक से संपर्क स्थापित करके अपनी प्रश्नावली कंप्लीट कर ले।
1: जनगणना के आंकड़े नीतियों को बनाने में अहम भूमिका रखते हैं, ऐसे में आप प्रदेश की जनता से क्या अपील करेंगी?
0: मेरी उत्तर प्रदेश के निवासियों से ये अपील है कि प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है कि वो हर घर तक पहुंचे। अब जनता का भी कहीं ना कहीं दायित्व है कि वो अपने प्रगणक को सही उत्तर दे, उत्तर अवश्य दे, और आप यदि किसी भी कारणवश आप अपने प्रगणक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो प्लीज अपने जनप्रतिनिधि, अपने स्थानीय अधिकारी के माध्यम से अपने प्रगणक तक पहुंचे। और मेरी अपील है आप सभी लोग जनगणना में पार्टिसिपेट करें।
1: निश्चित रूप से जनता पूरे उत्साह के साथ जनगणना में हिस्सा लेगी और प्रगणकों को पूरा सहयोग करेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच ओम जी।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं खुसूसी उर्दू प्रोग्राम बैतबाजी। कार्यक्रम में शिरकत की है मुमताज पीजी कॉलेज लखनऊ के कमरूल साहब, सना खातून, एजाजुर रहमान और मंतशा खातून ने, और मेजबानी शमशुल आरफीन की है।

आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाए। सामईन, आज का उर्दू प्रोग्राम बेहद दिलचस्प और लुत्फ अंदोज होने जा रहा है, क्योंकि आज का उर्दू प्रोग्राम अपने आप में एक खुशबू समेटे हुए है, और उस खुशबू को अगर कोई नाम दूं तो बैतबाजी से बेहतर मेरे जहन में कोई दूसरा नाम नहीं है। तो चलिए आज का उर्दू प्रोग्राम बैतबाजी के सुपुर्द करते हैं और आपको बताते हैं कि आकाशवाणी लखनऊ के उर्दू प्रोग्राम में सबसे पहली बैतबाजी में हमारे साथ शरीक सफर कौन है। तो चलिए हम ही बता देते हैं। दरअसल आज की बैतबाजी में दो टीमें हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं, जिनका ताल्लुक मुमताज पीजी कॉलेज लखनऊ से है। इन दो टीमों में जिन्होंने शिरकत की है, टीम ए में है मोहतरम जनाब मोहम्मद कमरुल साहब,

0: प्रोग्राम बैतबाजी के सुपुर्द करते हैं और आपको बताते हैं कि आकाशवाणी लखनऊ के उर्दू प्रोग्राम में सबसे पहली बैतबाजी में हमारे साथ शरीक सफर कौन है। तो चलिए हम ही बता देते हैं। दरअसल आज की बैतबाजी में दो टीमें हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं, जिनका ताल्लुक मुमताज पीजी कॉलेज लखनऊ से है। इन दो टीमों में जिन्होंने शिरकत की है, टीम ए में है मोहतरम जनाब मोहम्मद कमरुल साहब और मोहतरमा सना खातून साहिबा, और टीम बी में है मोहतरम जनाब एजाजुर रहमान साहब और मोहतरमा मंतशा खातून साहिबा। आप दोनों टीमों का हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है।
1: शुक्रिया।
0: तो चलिए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए मैं टीम ए के लिए अकबर इलाहाबादी का एक शेर पढ़ता हूँ कि गमजा नहीं होता कि इशारा नहीं होता, आंख उनसे जो मिल जाए तो क्या क्या नहीं होता, और हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अलिफ टीम ए के लिए।
1: इधर जो डूब गया तो मैं उधर निकलूंगा,
0: इधर जो डूब गया तो मैं उधर
1: निकलूंगा, खिलूंगा शम्स के मानिंद जिधर निकलूंगा।
0: वाह।
1: मुझे न गांव गली शहर में ढूंढा करें,
0: हाँ।
1: मुझे न गांव गली शहर में ढूंढा करें, अपने दिलों में ढूंढिए मैं उधर निकलूंगा,
0: उधर निकलूंगा भाई। वाह अलिफ।
2: अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा,
0: अरे रे क्या बात है, बहुत खूब।
2: अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या उस पर मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा,
0: तो मैं तुम्हारा। अलिफ टीम ए के लिए।
3: उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमार ये दिल ने आखिर काम तमाम किया,
0: आखिर काम तमाम किया। अलिफ।
3: अंदाज बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, अंदाज बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात,
0: शायद की उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ते
3: तू जफा में मस्त है रोज़ शब, मैं कफन बदोशो गजल बलब।
0: वाह।
3: तू जफा में मस्त है रोज़ो शब, मैं कफन बदोशो गजल बलब, तेरे रोब हुस्न से चुप हैं सब, मैं भी चुप रहूं तो मजा है क्या।
0: वाह मजा है क्या। अलिफ।
2: अगर कजरो है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा,
0: वाह।
2: अगर कजरो है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहां क्यों हो जहां तेरा है या मेरा।
0: वाह बहुत खूब अलिफ।
1: एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ कि एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ, जैसे जिंदा ही तेरे नाम पे हूँ, इश्क का आखिरी मकाम है मौत, इश्क का आखिरी मकाम है मौत, और मैं आखिरी मकाम पे हूँ।
0: बहुत खूब कमरुल साहब ने बहुत ही खूबसूरत शेर पढ़ा जी।
3: नादा हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, नादा हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और,
0: कोई दिन और रे।
3: रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ,
0: आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। अलिफ।
2: अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर,
0: हाँ बहुत खूब।
2: अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन ही क्यों ना हो उनसे मोहब्बत और बढ़ती है।
0: बहुत खूब एजाजुर रहमान साहब, बहुत खूब।
3: ये कयाम कैसा है राह में तेरे ज़ौक़े इश्क को क्या हुआ, ये कयाम कैसा है राह में तेरे ज़ौक़े इश्क को क्या हुआ, अभी चार काटे चुभे नहीं तेरे सब इरादे बदल गए,
0: बदल गए। ये
3: दीवाने कभी पाबंदियों का गम नहीं लेंगे, ये दीवाने कभी पाबंदियों का गम नहीं लेंगे, गिरेबां चाक जब तक कर न लेंगे दम नहीं लेंगे,
0: दम नहीं लेंगे।
1: ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो,
0: ये बात तुम अपने
1: दिमाग से निकाल दो, ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि माजरत करेंगी हवाएं चराग से।
0: क्या बात है।
2: ये मुमकिन है कि हम इनको बहुत चाहें वो कम चाहें,
0: बहुत खूब।
2: ये मुमकिन है कि हम उनको बहुत चाहें वो कम चाहें, ये मुश्किल है कि वो औरों को चाहें उनको हम चाहें,
0: उनको हम चाहें।
1: नूर ही नूर से मुखड़े पे वो नूरी आंख है,
0: वाह।
1: नूर ही नूर से मुखड़े पे वो नूरी आंख।

0: है, उसके इंजील से चेहरे पे जबूरी आंख है, बचा लाया हूँ चेहरे पे अधूरी आंख है, छोड़ आया हूँ किसी आंख में बिनाई को और बचा लाया हूँ चेहरे पे अधूरी आंख है।
1: आँखें।
0: न समातों में तपिश घुले, न नजर को वक्फे अजाब कर। न समातों में तपिश घुले, न नजर को वक्फे अजाब कर। जो सुनाई दे उसे चुप सिखा, जो दिखाई दे उसे ख्वाब कर।
1: कर रे से।
0: रास्ते में खतरे बहुत हैं पर ठहरता कौन है,
1: रास्ते में खतरे बहुत हैं पर
0: रास्ते
1: ठहरता
0: में
1: कौन।
0: खतरे बहुत हैं पर ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है।
1: डरता कौन है।
0: इन
1: यस।
0: लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ मगर, इन लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ मगर, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है।
1: कौन है यह।
0: ये बात निराली दिले खुददार करे है, ये बात निराली दिले खुददार करे है। तड़पे है मगर दर्द से इनकार करे है।
1: करे है।
0: यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है। किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना।
1: इंसान जाना।
0: न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता।
1: अंदाज अच्छा है, बहुत खूब।
0: न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या
1: तो क्या
0: होता।
1: होता।
0: हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या
1: तो
0: होता।
1: क्या होता। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। टीम ए के लिए अलिफ।
0: ए वादा शिकन ख्वाब दिखाना ही नहीं था,
1: हाँ।
0: ए वादा शिकन ख्वाब दिखाना ही नहीं था, क्यों प्यार किया था जब निभाना ही नहीं था। इस तरह मेरे हाथ से दामन न छुड़ाओ, इस तरह मेरे हाथ से दामन न छुड़ाओ, दिल तोड़ के जाना था तो आना ही नहीं था।
1: आना ही नहीं था। अलिफ से।
0: अहले हवस क्या साथ निभाते, सख्त कठिन थी मंजिल मंजिल।
1: मंजिल।
0: अहले हवस क्या साथ निभाते, सख्त कठिन थी मंजिल मंजिल। इश्क तो आखिर इश्क ही ठहरा, राहें ढूंढे मुश्किल मुश्किल। जब भी वो नजदीक हुए हैं दिल का ऐसा हाल हुआ है, जब भी वो नजदीक हुए हैं दिल का ऐसा हाल हुआ है, जैसे नैया डगमग डगमग, जैसे दीपक झिलमिल झिलमिल।
1: झिलमिल झिलमिल। लाम।
0: लोग तो लोग हैं लोगों की तरह देखते हैं, एक हम हैं उसे बच्चों की तरह देखते हैं। लोगों ने तो हमको लकड़हारा समझ रखा है,
1: वाह।
0: लोगों ने तो हमको लकड़हारा समझ रखा है, एक हम हैं कि पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं।
1: बहुत खूब।
0: न कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली।
1: कहां मिली
0: न कहीं जहां में अमां मिली, जो
1: जो
0: अमां
1: अमां
0: मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरा अफ़ बंदा नवाज में।
1: वाह। नून है।
0: न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहां जाते,
1: न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहां जाते।
0: न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहां जाते, अगर ये दुनिया चमन होती तो वीराने कहां जाते। चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला, चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला, अगर होते सभी अपने तो बेगाने कहां जाते।
1: बेगाने कहां जाते ये।
0: ये वसली की रात है खुदारा, नकाब चेहरे से मत हटाओ।
1: वाह।
0: ये वसली की रात है खुदारा, नकाब चेहरे से मत हटाओ। तुम्हारे चेहरे का ये उजाला, सहर से पहले सहर न कर दे।
1: बहुत खूब। सहर ना कर दे ये।
0: ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। तुझे हम वली समझते, जो न बादा ख्वार होता।
1: जो ना बादा खार होता। बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप, क्या बात है। इसके शेर पे अच्छा लग रहा ना।
0: अब अपना किस्साए गम क्या कहूँ यूं समझ लीजिए, अब अपना किस्साए गम क्या कहूँ यूं समझ लीजिए, मुझे धोखा दिया है दोस्तों ने आप ही जैसे। मेरी आंखों में कुछ इस तरह उसने डाल दी आंखें, मेरी आंखों में कुछ इस तरह उसने डाल दी आंखें, कि रख दे सामने कोई किताबे जिंदगी जैसे।
1: कि रद्दे सामने कोई किताबे जिंदगी जैसे ये।
0: यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो।
1: वाह।
0: यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा
1: पढ़ा
0: करो।
1: करो। वाह।
0: वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या।
2: वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या, तो उसी को प्यार करे है क्यों, ए कलीम तुझको।

0: है क्या?
1: क्या?
2: अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, मैं हूं तेरा तो नसीब अपना बना ले मुझको। मैं जो कांटा हूं तो चल मुझसे बचा कर दामन, मैं जो कांटा हूं तो चल मुझसे बचा कर दामन, मैं जो फूल हूं तो फिर जूड़े में सजा ले मुझको।
1: सजा लो मुझको। वाह।
3: वो कोई गुस्ताख पागल मन चला था मैं न था, वो कोई गुस्ताख पागल मन चला था मैं न
1: मैं ना
3: था,
1: था,
3: आपको छेड़ा था जिसने दूसरा था मैं न था।
1: मैं ना था।
3: मैंने दानिश्ता हटाई कब तेरे रुख से निकाब, मैंने दानिश्ता हटाई कब तेरे रुख से निकाब, वो तो मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा था मैं न था।
1: वाह
3: हाथ टूटे मैंने जो छेड़ी हो जुल्फे आपकी,
1: जी।
3: हाथ टूटे मैंने जो छेड़ी हो जुल्फे आपकी, आपके सर की कसम दस्ते सबा था मैं न था।
1: मैं ना था। वाह, बहुत खूब।
0: उम्मीदें हूर ने सब कुछ सिखा रखा है वाइस को, ये हजरत देखने में सीधे सादे भोले भाले हैं।
1: सामिन, आखिर के दो दो शेर और इस राउंड में, उसके बाद हम दूसरा राउंड शुरू करते हैं। जी, पढ़े।
3: निगह की बरछियां जो सह सके सीना उसी का है,
1: हाँ।
3: निगह की बरछियां जो सह सके सीना उसी का है, हमारा आपका जीना नहीं जीना उसी का है।
1: ये
2: यूं मुझसे वो ताल्लुक छुपाता भी नहीं, पर हाल जिगर खुल के बताता भी नहीं, बातों में उसे कोई हरा ही नहीं सकता, बातों में उसे कोई हरा ही नहीं सकता, और बातों के सिवा उसे कुछ आता भी नहीं।
1: आता भी नहीं। सामिन, हमारी बैतबाजी का पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है और हमारी दोनों टीमों ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। अब हम अगला राउंड करते हैं और ये लफ्जी राउंड होगा, जिसमें हम दोनों टीमों को दो दो वर्ड देंगे, दो दो हर्फ देंगे, आपको उस पर शेर कहना है। तो आप लोग तैयार है ना? चलिए, हम टीम ए के लिए पहला लफ्ज है दश्त।
0: दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने,
1: वाह।
0: दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।
1: बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहुत ही खूब, शायद अल्लामा इकबाल का ये शेर है। जी, टीम बी के लिए पहला लफ्ज है चमन।
3: उड़ाली कमरियों ने तोतियों ने अंधलीबों ने,
1: हाँ
3: उड़ाली कमरियों ने तोतियों ने अंधलीबों ने,
1: जी,
3: चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फुगा मेरी।
1: वाह, बहुत खूब। एक बार फिर से हम टीम ए की तरफ चलते हैं और इनको जो लफ्ज देते हैं वो है खंजर।
0: दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करा मात करो हो।
1: तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, बहुत खूब। टीम बी के लिए अगला लफ्ज है बरसात।
3: धूप कहें जब धूप नहीं, रात कहें जब रात नहीं, दीवानों की बात समझना सबके बस की बात नहीं,
1: वाह।
3: मैं खाने पर जब भी देखो बादल छाए रहते हैं,
1: मैं
3: मैं
1: खाने पर
3: खाने
1: जब भी
3: पर जब
1: देखो,
3: भी देखो बादल छाए रहते हैं, जिनके घर में आग लगी है उनके घर बरसात नहीं।
1: बरसात नहीं। बहुत खूब एजाजुर रहमान साहब, बहुत ही अच्छा। आप दोनों ने दो दो लफ्ज से अपने अशार कहे और बहुत ही अच्छा पढ़ा आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आप कर रहा है। हम अब तीसरे राउंड की तरफ चलते हैं। जो एक मिसरा हम देंगे किसी मशहूर शायर का, एक मशहूर शेर, आपको वो शेर मुकम्मल करना है। दो दो मिसरे हम आप दोनों को देंगे। पहले टीम ए के लिए मिसरा है, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता।
0: ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार
1: जो
0: होता।
1: नबादा खार होता, बहुत ही खूब। टीम बी के लिए है मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर।
3: मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। टीम ए के लिए है पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है।
0: पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं।
1: बाग तो सारा जाने हैं। टीम बी की तरफ एक बार फिर से बॉल करते हैं और देखते हैं क्या सोच के लाते हैं। मिसरा है आपके लिए दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें।
3: तर दामनी पे शेख हमारी न जाइए,
1: वाह,
3: तर दामनी पे शेख हमारी न जाइए, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें।
1: वाह, क्या खूब है। दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ख्वाजा मीर दर्द का गालिबन ये शेर है। सामिन, ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम

0: अभी आप समाज फरमा रहे थे बैतबाजी, और दोनों ही टीमों ने बहुत ही अच्छे अशार कहे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे प्रोड्यूसर मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब इन दोनों टीमों के बारे में अपने तासुरात पेश करें।
1: सामईन, आसिफ इकबाल का आदाब कबूल फरमाएं। सामईन, आपने आज का उर्दू प्रोग्राम सुना बैतबाजी। आज के इस प्रोग्राम के बारे में हम आपको कुछ बताएं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। असल में हमारी टीम की यह एक चाहत थी कि हम लोगों के एक कैंपस में जाएं, हम यूथ से, नौजवानों से, स्टूडेंट से राबता कायम करें, उनके साथ अपने ताल्लुकात को गहरा करें। इसी सिलसिले में हमने जो पहला प्रोग्राम शुरू किया था वो था कैंपस डायरी। इसमें हम यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट से हम बात करते हैं। और दूसरी ज़रूरत हमको ये महसूस हुई कि उन स्टूडेंट्स को हम अपने आकाशवाणी के स्टूडियो में बुलाएं, इसलिए हमने ये बैतबाजी का प्रोग्राम शुरू किया है। और हमें उम्मीद है कि हमारा ये आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज की दोनों टीमों के जो अफराद हैं उनको हम मुबारकबाद देते हैं, और इनके आने वाली ज़िंदगी के लिए इनको हम मुबारकबाद पेश करेंगे और बहुत सारी दुआएँ देंगे इनको।
2: शुक्रिया।
1: तो सामईन, आज के प्रोग्राम के लिए अगर आपको जो पसंद आए तो इसके लिए आप अपने तासुरात हमको ज़रूर लिखें, हमको ज़रूर बताएं। तो शमसुल जी, हमारा पता जरा इनको बता दें, हमारे सामईन को।
0: सामईन, बहुत ही खूबसूरत ये प्रोग्राम था और हम अपनी दोनों टीमों के बहुत मशहूर हैं। आप दोनों ने हमारे उर्दू प्रोग्राम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सामईन, ये था हमारा आज का खसूसी उर्दू प्रोग्राम बैतबाजी, जिसमें शिरकत करने वाली टीमों का ताल्लुक था मुमताज पीजी कॉलेज लखनऊ से। हमारे साथ शरीके महफिल थे जनाब कमरुल साहब, सना खातून साहिबा, जनाब एजाजुर रहमान साहब और मंतशा खातून साहिबा। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? आप अपने तासुरात हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। सुन लीजिए फिर से, 7991778157। सामईन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दें इजाज़त। आदाब।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:50 होने वाले हैं। आइए सुने लोक संगीत। आज के गायक कलाकार हैं राहुल कुमार मौर्य।
1: बिनती सुनाओ महारानी।
0: सबसे पहले सुनते हैं ये खेमटा।

राहुल कुमार मौर्या की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये खेमटा। आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आज के कलाकार हैं राहुल कुमार मौर्या। आइए अब इनके स्वर में सुनते हैं दादरा, लेकिन इस अंतराल के बाद।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।

आपकी सेवा में है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आज के कलाकार हैं राहुल कुमार मौर्य। आइए इन्हीं की आवाज में आप सुने ये लचारी।

आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आज के कलाकार हैं राहुल कुमार मौर्य। कार्यक्रम के आखिर में इन्हीं की आवाज में आइए सुनते हैं ये गंगा गीत।

राहुल कुमार मौर्या की आवाज़ में आप सुन रहे थे गंगा गीत। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आपको याद दिलाते चलें कि इन्हीं का गाया लोकगीत शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी आप सुन सकते हैं। तो रहिए आकाशवाणी वाराणसी के संग।

हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रेडियो एक प्रभावशाली माध्यम है, रेडियो का प्रयोग करें। रेडियो पर विज्ञापन सर्वोत्तम और सस्ता है, रेडियो पर विज्ञापन देकर अपनी आय बढ़ाएं।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 10:10 होने वाले हैं। आइए सुने सामुदायिक गान शिक्षा पाठ असमिया।
1: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हैं ना असमिया भाषा गीत? अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। एई माती रे, एई माती रे मोरो मोते, माती के सुमीलो, माती के सुमीलो, माती के सुमीलो। हो गया ना यहां तक? आगे लिखो। एई माती ते एई माती ते जीवन, एई माती ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना। ये

0: सामुदायिक गान शिक्षा पाठ असमिया भी आप सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दस बजकर 30 मिनट होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: चेक
2: जाना पड़ेगा।
1: अरे गेम छोड़ के?
2: एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है।
1: अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को।
2: कैसे?
1: आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएम पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे हसरत जयपुरी की रचना, मोहम्मद अजीज की आवाज थी शुरुआत फिल्म का, शुरुआत में ये गीत। कार्यक्रम का अगला गाना ये रहा।

फास्ट लेबलेटर। लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में ये गाना आप सुन रहे थे। अनजान के बोल थे बप्पी लहरी का संगीत। और इस गीत से पहले आप सुन रहे थे आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में मनोज कुमार की रचना। लता मंगेशकर और मनहर उधास की आवाज़ें थी। लुटेरा फिल्म का गाना था। आइए आप सुने ये गीत।

0: लाल दुपट्टा मलमल का। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार थे आनंद मिलिंद। कार्यक्रम का आखिरी गाना ये सुने।
1: साथिया
0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी की रचना।

आया सावन झूमके। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आपकी सेवा में है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आइए सुने कार्यक्रम बाल संघ।

0: कभी बारिश, कभी धूप, कभी छांव, अजीब सा मौसम हो रहा है ना
1: भाई। मौसम जैसा भी है लेकिन बड़ा खुशनुमा सा हो रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी तो उसमें लगता था कि उफ कब गर्मी से राहत मिलेगी, तो अभी ये कभी कभी हल्की सी बारिश या फिर हल्की सी बदली हो जा रही है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है और कहीं बाहर आने जाने में भी अच्छा लग रहा है।
0: और सबसे ज्यादा अच्छा बच्चों को तो तब लगता है जब उनकी छुट्टी हो जाती है।
1: बिल्कुल, छुट्टी भी हो गई है, इसमें जो हमारे दोस्त हैं ये खेलने में, नई नई प्लानिंग करने में बहुत बिजी होंगे।
0: कुछ दोस्तों की अभी छुट्टियां नहीं हुई हैं दीदी, लेकिन जब हम लोग की छुट्टी होती थी ना दोस्तों, तो हम लोगों को किताब कहानी की पढ़ने के लिए मिलती थी।
1: हम लोग उस समय याद है कि हम लोग कॉमिक्स के लिए एकदम टूट पड़ते थे, और मम्मी लोग भी पहले कहती थी कि एग्जाम खत्म करने के बाद कॉमिक्स को हाथ में लगाना है, तो कहानियां पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता था।
0: और देखिए जो कहानी हम लोग पढ़ते थे, तेनाली रामा वाली या फिर पतलू वाली या फिर किसी की जीवनी पढ़ते थे, जैसे कि कहानी पढ़ी तो उससे बहुत सारी चीजें हम लोग सीख लेते थे। अकबर बीरबल के किस्से, ये भी बहुत अच्छी हम लोग को जानकारी देते थे कैसे क्या करना है। और जब भी हम कहानी पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को तो मिलता है।
1: भाई कहानी जो कोई भी लिखता है, जो लेखक होता है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना है या किसी व्यक्ति को बहुत करीब से अगर वो जान रहा है, उसके जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग है जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, तो कहानी लिखने वाला हमेशा हमारे समाज से ही उठी हुई कोई बातों को कहानी के रूप में पिरो के लिखता है। तो ऐसे में कहानी हमें बहुत कुछ सीख दे जाती है, बहुत सारी सच्चाई को बताती है, और कहानी से हमारे ज्ञान में भी समृद्धि आती है।
0: बिल्कुल। और दोस्तों देखिए, जो बाल कहानी होती है ना, बच्चों के लिए जो कहानी लिखी जाती है दीदी, उसमें खास करके नैतिक मूल्य की बात की जाती है कि बच्चे कैसे सीखें, सदाचार सीखें, नैतिक मूल्य सीखें, दूसरों की मदद करना सीखें। ऐसी तमाम कहानियां हैं जिनसे हमें मजा तो आता है, कहानी पढ़ने में आनंद तो आता है, लेकिन साथ ही साथ हमें शिक्षा भी मिल जाती है। और चाहे वो भालू और हाथी वाली कहानी हो, चाहे बंदर वाली कहानी हो, उसमें भी ये सारी चीजें होती हैं, है ना।
1: तो दोस्तों आप भी अगर कहानी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पढ़िए, कहानी पढ़ना भी अच्छा होता है, और उसमें जो भी छुपे हुए संदेश हैं, जो भी सीख है, उसको जरूर आप अपनी लाइफ में आत्मसात कीजिए।
0: और ये भी बात है ना दीदी, देखिए अब तो डिजिटल का जमाना है, और कहानी पत्रिका ही नहीं बल्कि बच्चे जो है ना मोबाइल पे भी कहानी सुन लेते हैं, देख लेते हैं
1: सुन लेते हैं। भाई मोबाइल पे भी सोशल मीडिया में कहानियां बकायदा ऑडियो बुक होती है, सुनते हैं, और एक से होती है।
0: और कुछ नहीं तो दादी अम्मा के पास बैठ जाइए, उनके पास भी कहानियों का खजाना होता है। और बहुत सारी बातें हम लोग तो अपनी दादी नानी से भी सीखे थे, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में अगर किताबें नहीं मिलती थी तो रात में उनके पास लेट जाइए तो उसके बाद बहुत सारी कहानी किस्से सुनने को मिल जाते थे,
1: और बहुत अच्छा भी लगता था कहानी सुनना। कहानी सुनते सुनते कब नींद आ जाती थी पता भी नहीं चलता था।
0: और देखिए दीदी, कहानी के अलावा ना कुछ गीत में भी बहुत सारी बातें होती
1: हैं। होती हैं, तो मैं समझ रही हूँ आपका इशारा किधर है। तो दोस्तों आइए हम लोग सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़ आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम,

0: गीत तो आपको अच्छा लगा होगा और दोस्त भी हमारे झूम रहे थे। तो भाई गीत, कहानी, कविता ये चीज ही ऐसी है कि जिसको सुनने के बाद मन एकदम तरोताजा हो जाता है।
1: और दोस्तों, हम आपसे बात कर रहे थे ना कहानी की, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता द्विवेदी दीदी। उनके पास भी बहुत अच्छी सी कहानी है दीदी, तो चलिए दोस्तों के साथ सुनते हैं ये कहानी।
2: प्यारे बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अरुण ने कही कहानी। ये कहानी है एक 4 साल की बच्ची अरुंधति की। वो बच्ची नर्सरी में पढ़ती है और मम्मी पापा उसे प्यार से अरु कहते हैं। उसका भाई सनत 12 साल का है। दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। हर रात बिस्तर पर लेटे लेटे मम्मी सोने से पहले मम्मी पापा बच्चों को कुछ सुनाते जरूर हैं। एक रात मम्मी अरु के लिए कृष्ण, परी या अनाथ बच्चे की कहानी सुनाती, तो दूसरी रात पापा सनत को विज्ञान, इतिहास, पुराण, महापुरुषों या देश के विकास की बातें बताते। अरु को समझ नहीं आती थी वो बातें जो पापा भैया को बताते थे। छोटी सी उम्र और बातें बड़ी बड़ी, कैसे समझती वो। लेकिन वो

बड़े ध्यान से सुनती थी सारी चीजें, इसलिए अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से ज्यादा शब्द और नाम जानती थी अरु। एक बार अरु सनत के स्कूल में कहानी की प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। प्रार्थना के बाद बताया गया, कहानी सुनाने में जो बच्चे रुचि रखते हैं वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। ये प्रतियोगिता अगले शनिवार को होगी। कक्षा 7 में सनत ने भी अपना नाम लिखवाया। अरु ने सोचा कि रोज ही तो वो मम्मी पापा से कहानी सुनती है और कहानी सुनाना कोई कौन सी बड़ी बात है। अरु ने अपनी टीचर से कहा, मैं भी सुनाऊंगी कहानी। सनत को पापा मम्मी ने खूब अभ्यास कराया, मेज पर खड़ा करके सुनते कहानी, ताकि उसे मंच का डर भी दूर हो जाए। अरु तो नाम लिखवाकर भूल ही गई कि प्रतियोगिता भी है स्कूल में कोई। शनिवार आया, स्कूल के मंच पर बड़ी कक्षाओं के सारे प्रतियोगी छात्र कहानी सुना चुके थे। अंत में अरुंधति अनाउंस हुआ, अरुंधति नर्सरी। वह स्टेज की ओर चली। इतनी छोटी स्टोरी टेलर देखकर तालियां गूंज उठी। टीचर ने माइक नीचे सेट किया। अरु ने कहानी सुनानी शुरू की, आवाज बदल बदल के अभिनय करते हुए। उसने शुरू किया कहानी सुनाना। छोटे से कन्हैया जेल में पैदा हुए थे। छोटे से कन्हैया जेल में पैदा हुए थे। आकाशवाणी हुई, कंस तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। एक 5 साल का बच्चा था, बिना मम्मी पापा का बच्चा। वो टूटे मकान में रहता था। उसे भूख लगी। कन्हैया तो सबके मन की बात जानते ही हैं। कन्हैया उदास हो गए। मैया ने कहा, लाला तू क्यों रो रहा है, क्या तुझे माखन खाना है? कन्हैया ने कहा, नहीं, टूटे घर में वो बच्चा भूखा है। हमारे पास इतनी गाय हैं, एक गाय उसे दे दूं क्या मैया? मैया ने कहा, हाँ, अच्छा काम करने से तो भगवान खुश होते हैं। फिर गाय का दूध पीता था वो बच्चा और उसका पेट भर जाता था। वो बच्चा स्कूल नहीं जाता था। चाणक्य को आकाशवाणी हुई, नालंदा में बहुत स्कूल बनवाए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक स्कूल उस बच्चे के घर के पास बनवाओ। एडिसन बल्ब बनाते थे, आकाशवाणी सुनी उन्होंने। उस बच्चे के घर में भी बल्ब लगवाओ। एडिसन ने बल्ब लगा दिया। सेंटा क्लॉज ने आकाशवाणी सुनी, जाओ उस बच्चे के घर बहुत सारे खिलौने दे के आओ। टीचर, बच्चे, प्रिंसिपल, सफाई स्टाफ हंस हंस के लोटपोट थे। कुछ टीचर की तो इतनी छोटी बच्ची से इतनी सुंदर कहानी सुन आंखें मुंह खुले के खुले रह गए थे। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा प्रांगण गूंज रहा था। और तालियां और हंसी सुन के अरु को लगा वो अच्छी कहानी सुना रही है। उसने आत्मविश्वास से और ज्यादा जोश में बोलना जारी रखा। फल वाले ने आकाशवाणी सुनी, सब लोग उस बच्चे को फल देकर आओ। बैंक में आकाशवाणी हुई, 100-100 रुपए की गड्डी लेकर बैंक वाले भागे। पंडित जी को आकाशवाणी सुनाई दी, सत्यनारायण की कथा करो बच्चे के घर। पूजा हुई, शंख बजा, परियां आकर पंजीरी चरणामृत का प्रसाद बांट रही थी सबको। माइक पर नीली परी बोली, भारत सबसे अच्छा देश है, हमको हमेशा सच बोलना चाहिए। अच्छी तरह पढ़ाई करो, बच्चों को मोबाइल गेम नहीं खेलना है। धरती माता होती है, उसे प्यार करो। फूल लगाओ, पेड़ लगाओ, चिड़ियों को दाना पानी डालना चाहिए। अपने भाई से कभी झगड़ा नहीं करते, भाई को सनत नहीं कहते, दादा कहो। फिर ये बातें सुन भगवान प्रकट हुए। भगवान ने बच्चे के माता पिता को जिंदा कर दिया। बच्चा खुश था, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब सब अपने घर चले गए। सारे संसार में नगाड़े बज रहे थे, देवता फूल बरसा रहे थे, आकाश में अप्सराएं नाच रही थीं। अरु की कहानी सुन पूरे स्कूल ने खड़े होके ओवेशन दिया। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो अरु से मिलने टीचर्स, बच्चों और सभी लोगों ने स्टेज के पर दौड़कर घेरा ही लगा लिया। इनाम भी दिए गए अच्छी कहानी सुनाने वाले बच्चों को। रोज की तरह दोनों भाई बहन को लेने मम्मी बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी। अरु के हाथ में बड़ा कप था, इनाम में मिला बड़ी सी ट्रॉफी। नन्हे हाथों में मज

0: मजबूत पकड़ के साथ। सनत को इनाम में छोटी सी डायरी पेन मिला था। मम्मी समझ नहीं पा रही थी कि कहानी सुनाने की रिहर्सल तो सनत ने की है पर इनाम जीता है अरु ने। मामला कुछ समझ नहीं आया उन्हें। आज रात को मम्मी पापा की जगह सनत ने कहानी सुनाई, अरु की मंच वाली कहानी। सुनकर मम्मी पापा हंसे नहीं, गर्व कर रहे थे अपनी अरु पर। मम्मी की आंखें तो आंसू के मोती लुढ़काने लगी थीं। समझदार अरु अंधेरे में भी यह जान गई कि मम्मी उसकी कहानी स्कूल वालों से भी ज्यादा पसंद कर रही हैं। मम्मी के प्यार के आंसू वो पहुंच रही थी अपनी नन्नी नन्नी हथेलियों से।
1: दोस्तों, अभी हम सुनने सुने डॉक्टर विनीता द्विवेदी से ये कहानी, और जो कहानी में जो सीख थी वो आप सबने भी सुना, और इस सीख को आप भी अपने लाइफ में फॉलो जरूर करेंगे। शबनम दी, देखिए ना, स्टूडियो में हमारे कुछ नन्हे साथी भी आए हुए हैं,
2: तो उनसे मिलते हैं और जानते हैं वो क्या तैयारी करके आए और क्या सुनाने वाले हैं।
3: और अपना नाम बताइए।
4: जी, मेरा नाम नयन है।
3: नयन, और आपका?
5: मेरा नाम समीर है।
3: समीर, आप लोग क्या सुनाएंगे?
4: हम लोग राग चंद्र कोश में 3 तार सोलो सुनाएंगे।
3: चलिए सुनाइए।

0: और देखिए जैसे हम लोगों ने कहा ना कि कहानी, किस्से, गीत, हर चीजें हमें सिखाती हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है दीदी कि हम किसी चीज से कितना कुछ सीखते हैं, है ना
1: भाई। सीखने की तो सारी उम्र होती है और बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जिसको हमें हर समय सीखना चाहिए। तो दोस्तों अभी आपकी भी छुट्टियों का समय चल रहा है, यानी छुट्टियां भी होने जा रही हैं, तो ऐसे में आप अपनी ऐसी चीजों पर ध्यान दीजिए कि जो कि कहीं ना कहीं आपके लिखावट में या फिर आपके पर्सनैलिटी को थोड़ा सा वीक बनाती है।
0: और ये भी है ना दोस्तों कि जब आपके एग्जाम हो गए होंगे, आपने खूब अच्छी तरह से याद किया होगा, लेकिन जब पेपर मिल जाता है ना दीदी, तो जब हम लिखने लगते हैं तो राइटिंग इधर की उधर चली जाती है और बहुत सारी मात्रा की भी गलती हो जाती है, स्पेलिंग की गलती हो जाती है।
1: बिल्कुल। और जब वो कॉपी हमारे जो टीचर है या एग्जामिनर चेक करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि राइटिंग अगर अच्छी है तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाते हैं।
0: और कभी कभी हम सही लिखते हैं दोस्तों, लेकिन टीचर को समझ में भी नहीं आता है कि हम क्या लिखे हैं, तो ऐसे में भी बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं। बहुत साफ अगर नहीं लिखा है कॉपी में, बहुत पास पास लिख दिए, या कुछ दोस्त बहुत छोटा छोटा लिख देते हैं, तो भी बहुत अच्छी राइटिंग नहीं लगती है। तो ये वाला जो समय है ना दीदी, इस समय में अगर हमारे दोस्त जो है ना वो राइटिंग अपनी सुधारने में टाइम लगा दे तो बहुत अच्छा होगा ना।
1: भाई छुट्टियों को समय चल रहा है तो सदुपयोग यही कीजिए कि जो क्वालिटी आपके अंदर, जो खूबी आपके अंदर थोड़ी कम है, या जो चीज आपको लगता है कि इस वजह से आपके नंबर कट रहे हैं, उस पर जरूर ध्यान दीजिए। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपनी लेखनी पे ध्यान दीजिए, और आप अपने जो किताबों को है उसको पढ़िए ताकि आपका लिखावट के साथ साथ आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सही हो जाए।
0: और लिखने के लिए बस बहुत आसान सा तरीका ये है कि कोई भी एक पेज डेली लिखने की आदत डाल लीजिए और खूब अच्छा अच्छा बना बना के लिखिए, तो देखिए फिर आपकी आदत हो जाएगी। और फिर मात्रा या स्पेलिंग, इस पे भी ध्यान दीजिए, और साफ साफ लिखिए, दूर दूर लिखिए, और रोज प्रैक्टिस कीजिए। फिर प्रैक्टिस करते करते आप जब स्कूल जाएंगे, जब टाइम आएगा स्कूल जाने का, तो आपके टीचर भी बड़ी खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, इसकी राइटिंग तो बहुत अच्छी हो गई।
1: इस बार हो सकता है राइटिंग अच्छी होने के बाद आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आए, तो भाई अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन अपनी लिखनी पे जरूर ध्यान दीजिए।
0: और दीदी आप घड़ी पे ध्यान दीजिए।
1: बिल्कुल समय हो चला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अभी हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।

बच्चे सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम बाल संग। फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।

0: जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @AIR वाराणसी। इसमें ए और वी कैपिटल लेटर्स में है। तो हमें सुनिए, फील कीजिए और लिख भेजिए अपने विचार। मीडियम वेव FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अब हम हैं आपके साथ हर पल हर घड़ी।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेव के मीटर DTH, DRM, वेब्स OTT और न्यूज ऑन AIR ऐप पर एक साथ उपलब्ध हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
5: स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम आरोग्य में आज का विषय है ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का खोखलापन। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उन्मेष चक्रवर्ती। आपसे बातचीत की है आकांक्षा सिंह ने।
6: सभी को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य में आपका स्वागत है। श्रोताओं, जब किसी इमारत का ढांचा बुनियाद मजबूत होती है तब वो ढांचा मजबूती से अपनी जगह पे खड़ा रहता है, और हमारा जो शरीर है उसका ढांचा यानी हमारी जो अस्थियां हैं, हमारा जो पूरा अस्थि तंत्र है, अगर वो मजबूत होगा तभी तो हमारा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रह सकेगा। किस तरह अपनी अस्थियों की मजबूती बनाए रखा जा सकता है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही अस्थि रोग से जुड़ी अन्य समस्याओं पर भी चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उन्मेष चक्रवर्ती हैं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
7: आकांक्षा जी नमस्कार।
6: सर, हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और उसमें

0: विशेष तौर पे ऑस्टियोपोरोसिस। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये बीमारी है क्या और क्यों होती है।
1: ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये है कि जो हड्डियां हैं उसकी मजबूती कम हो जाती है या
0: जी
1: उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो इस ये एक सर्टन उम्र के बाद होती है। महिलाओं में इसकी शुरुआत जल्दी हो जाती है, खासकर मेनोपॉज के साथ साथ। पुरुषों में ये थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, 70-75 की उम्र पे। पर ये पूरी तरह प्रिवेंटेबल है और इसका क्योर भी है। सो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है बोन की डेंसिटी कम होना। अगर इसको हम समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मरीज़ की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है कि पहले से मरीज़ कितना एक्टिव रहा है, रूटीन कैसा है, अपने स्वास्थ्य के लिए, हड्डी के हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए वो कितना कसरत व्यायाम करते हैं, खान पान कैसा है, क्या पौष्टिक

0: कितना कसरत व्यायाम करते हैं, खान पान कैसा है, क्या पौष्टिक आहार लेते हैं कि नहीं, कैल्शियम विटामिन डी प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं कि नहीं, अलग से कुछ कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेते हैं कि नहीं। कई बार कुछ अन्य रोग भी होते हैं साथ में जिनकी दवाइयों से या फिर रोग की वजह से भी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, उनका भी सही इलाज हो रहा है कि नहीं। तो अगर इन चीज़ों को समझ लें मरीज के साथ डिस्कशन के बाद, तो उसका कारण आमतौर पर निकल आता है। एक्टिव रहना, स्वास्थ्य पे ध्यान देना, खान पान पे ध्यान देना, वज़न संतुलित रखना, ये सारी चीज़ें हैं जो मरीज़ अपनी तरफ से कर सकता है कि हड्डियाँ मजबूत रहें। और लेडीज़ लोगों में वंस दे आर नियर देयर मेनोपॉज, मेनोपॉज के आसपास 40, 45, 50 के आसपास, एक बार अवश्य किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखवा के या गायनेकोलॉजिस्ट को दिखवा के अपने ऑस्टियोपोरोसिस की स्क्रीनिंग करवाएं और उसके लिए जो आवश्यक दवाइयां हैं वो ज़रूर लें।
1: जी सर, क्या युवाओं में भी इस बीमारी को पाया गया है?
0: युवाओं में आमतौर पे ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है, उसमें युवाओं में इसका एक दूसरा काउंटर पार्ट होता है, उसमें लोग ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, वो होता है। युवाओं में कुछ बीमारियां होती हैं किडनी संबंधित या हार्मोनल, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, पर आमतौर पे ये बहुत अनकॉमन है या किसी पर्टिकुलर बीमारी की वजह से ही पाया जा सकता है।
1: जी सर, हमारे श्रोताओं के भी कुछ प्रश्न हैं, तो ये पहली कॉल हम ले लेते हैं।
2: हेलो,
1: हेलो
2: क्या मैंने आकाशवाणी के आरोग्यम पे कॉल किया है?
1: जी, आपने आकाशवाणी के आरोग्यम कार्यक्रम में फोन लगाया है।
2: मेरा नाम सृष्टि है और मैं यूपी जौनपुर से बात कर रही हूँ।
1: आज हमारे साथ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उर्मेश चक्रवर्ती हैं। बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: मैम, मेरा प्रश्न है कि जैसे बहुत लोगों के पैर में नॉकनीज हो जाती है, तो वो किस वजह से होते हैं और हम इसका प्रिवेंशन कैसे करें?
0: सृष्टि जी, बहुत अच्छा सवाल है। नॉक नीज जो है ये बचपन से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, तो छोटे बच्चे जब 2-3 साल के होते हैं उसी समय घर में पेरेंट्स लोगों को इसके लक्षण दिख जाते हैं कि घुटने टच कर रहे हैं और पंजे बाहर की तरफ है। आमतौर पे इसका कारण होता है डाइट में, खान पान में कैल्शियम विटामिन डी और प्रोटीन की कमी। तो बच्चों में अगर ये चीज़ें दिखती हैं तो डाइट पे खास कर ध्यान देना है। वेजिटेरियन डाइट में जैसे दूध है, छेना है, दही है, दाल है, स्प्राउट्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं। अगर नॉन वेज डाइट है तो एग्स हैं, फिश है, चिकन है, ये सारी चीज़ें कैल्शियम विटामिन डी और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में देती हैं। छोटे बच्चों में 5-6 साल में अगर ये चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं तो डाइट से, बेल्ट से, एक्सरसाइजेस से ये ठीक भी हो सकती हैं। पर हाँ, अगर ज़्यादा हो या बढ़ता चला जाता है या 8-9 साल के बाद पकड़ में आता है तो कई बार इसमें ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ती है।
2: विदाउट ऑपरेशन नहीं ठीक हो सकता, मतलब अगर बड़े एज पे हो रही है तो?
0: कितने एज पे?
2: 15-16 साल की एज पे।
0: नहीं, 15-16 साल में तो ग्रोथ बंद हो जाती है बच्चियों में, लड़कियों में, तो उसके बाद तो अगर बहुत ज्यादा है तो वो करेक्ट नहीं हो सकता है बिना सर्जरी के।
2: थैंक यू।
0: वेलकम।
1: हेलो,
3: हेलो,
1: नमस्ते, कार्यक्रम आरोग्य, कौन बोल रहे हैं?
3: हम राम लखन कनौजिया बोल रहे हैं सोनभद्र जिला से। मैडम जी,
1: जी राम लखन जी, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? हमारे साथ आज डॉक्टर उन्मेश चक्रवर्ती हैं।
3: मैडम जी, हम पूछना चाहते हैं कि मेरे कमर में दर्द रहता है और पेशाब जल्दी जल्दी होता है।
0: राम लखन जी नमस्कार।
3: जी नमस्कार सर, नमस्कार।
0: आपकी उम्र कितनी है?
3: हमारा उम्र है 45-46 लगभग।
0: तो देखिए, ये दोनों लक्षण जो आप बता रहे हैं ये अलग अलग हैं। अगर कमर में दर्द रहता है तो उसके लिए तो अगर हल्का फुल्का दर्द है या कभी कभार हो रहा है तो नियमित व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। तो ये तो आपको कोई फिजियोथेरेपी वाला समझा सिखा देगा, उसको रेगुलर करें, हाँ वही ज़रूरी है। और पेशाब की अगर समस्या है तो आपको एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा।
3: अच्छा,
0: ये दोनों लक्षण आपस में संबंधित आपकी उम्र में नहीं है।
3: अच्छा, ओके,
0: ठीक, नमस्कार।
1: सर, हम ऑस्टियोपोरोसिस की चर्चा कर रहे थे, तो हड्डियों से जुड़ी अन्य कौन सी बीमारियां हैं जो गंभीर रूप ले सकती हैं, उनके बारे में हमें बताएं।
0: तो ऑस्टियोपोरोसिस तो बहुत एक आम समस्या है। इसके साथ आजकल जो लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल में जो बदलाव दिख रहे हैं रहन सहन में, उसमें कमर के दर्द, बैक पेन, घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन, ये सब बहुत कॉमन है। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स इंजरीज भी बहुत कॉमन होती जा रही हैं। तो ये कभी स्पोर्ट्स की वजह से भी होती है या कई बार एक्सीडेंट्स वगैरह में भी, लिगमेंट्स, टिश्यूज, मेनिस्कस, लैब्रम, कार्टिलेज वगैरह में जो इंजरी होती है उससे भी ये इंजरीज हो जाती हैं। तो एक तो लाइफस्टाइल रिलेटेड बैक पेन, नी पेन वाले जो प्रॉब्लम्स है ये,
1: जी।
0: दूसरा स्पोर्ट्स इंजरी।

0: एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन इत्यादि की, तो ये तीन बहुत आम समस्याएं हैं।
1: सर, जब हड्डियों से जुड़ी समस्याओं की हम बात करते हैं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे किसी न किसी तरह की समस्या का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। हड्डियों में दर्द रहना, अक्सर लोग पैरों में दर्द या कमर में दर्द की शिकायत करते हैं। साथ ही साथ फ्रोजन शोल्डर, हाथ न उठ पाना, ये भी आमतौर पर पाया गया है। क्या इन सबसे बचा जा सकता है या ये उम्र के साथ बढ़ती जाने वाली समस्याएं हैं?
0: देखिए, ये सवाल आजकल बहुत कॉमन है। लोग परेशान रहते हैं इन लक्षणों से, या फिर कुछ लोग चिंतित रहते हैं कि उनके साथ तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं जो समझने की बात है कि उम्र तो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा, पर उम्र के साथ आप अपने हेल्थ पे कितना ध्यान रखते हैं, अपने आप कितना एक्टिव रखते हैं, आप कितना स्वस्थ रहना चाहते हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं, इसी से निर्णायक होता है कि आपका स्वास्थ्य समय के साथ कैसा रहता है। साथ ही साथ कुछ इंजरीज हो जाती हैं, जैसे खासकर आपने बताया घुटने की, कमर की या कंधे की, वो इंजरीज अगर गंभीर हो तो ये आगे चल के कष्ट देता है। तो अगर ऐसा कोई चोट आता है, शुरुआत में ही उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। उस समय उसका सही इलाज प्रॉपर ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखवा के, उसकी जांच करवा के इलाज कराना आवश्यक है। कई बार क्या होता है, उम्र कम होती है, चोटों को लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं क्योंकि उस समय उसके लक्षण नहीं होते हैं, पर समय के साथ वो फिर गंभीर हो जाती हैं या फिर लक्षण बढ़ जाते हैं। तो समय पे उसका डायग्नोसिस बनवाना और इलाज करना आवश्यक है, तभी ये उम्र के साथ आपका जो शरीर है वो साथ देगा।
1: जी बिल्कुल।
2: हेलो।
1: नमस्ते, कार्यक्रम आरोग्य, किससे बात हो
2: हाँ,
1: रही है हमारी?
2: हम पवन बोल रहे हैं बनारस से। मेरे पैर में बहुत दर्द रहता है, मेरे दाहिने तरफ पूरा का पूरा दर्द रहता है मैडम। दर्द इसलिए रहता है कि सन 1998 में एक बार हमको करंट लगा था, तो करंट की वजह से मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था और उसका ऑपरेशन भी गया था। उस समय तो ठीक हो गया था, उस समय मेरी उम्र थी 40 से 42 साल की। आज मेरी उम्र है 66-67 साल की उम्र है, और हमारे पंजे में भी दर्द रहता है, पंजा हम चल नहीं पा रहे हैं, हम उठ भी नहीं पा रहे हैं, उठने में हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। मेरे कमर में दर्द है, दोनों हाथ में दर्द है, और पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी में भी दर्द है। हमने आप डॉक्टर को दिखाया मगर हमको आराम नहीं मिल रहा है, बताइए इसके लिए क्या किया जाएगा?
0: देखिए पवन जी, ये जो आप लक्षण बता रहे हैं, हाथों में और पैरों में दर्द, ये तो
2: हाँ
0: मांसपेशियां, नसों की खिंचावट के लक्षण लग रहे हैं।
2: अच्छा,
0: हाँ, और ये कमर के दर्द से भी संबंधित हो सकता है, कई बार स्पाइन से भी
2: हाँ
0: संबंध हो सकता है कि
2: तो
0: उम्र आपकी पैंसठ
2: हम
0: के
2: सर
0: आसपास।
2: दवाई बहुत कर रहे हैं मगर हमको कोई आराम नहीं मिल रहा है, और
0: नहीं
2: हम चलते हैं तो लंगड़ा लंगड़ा के टाइप के चलते हैं
0: नहीं
2: और
0: तो
2: हमको
0: एक बार
2: बहुत
0: आपको
2: दर्द
0: पवन
2: है।
0: जी देखना पड़ेगा। बिना देखे तो ऐसे रेडियो पे सलाह देना, सुझाव देना जो है सही नहीं है, क्योंकि चीज़ें बिना देखे, बिना आपके पुराने जांचों को देखे समझ में नहीं आ रही हैं। तो एक बार किसी
2: फिर
0: अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट या हड्डी के डॉक्टर को आप दिखवाइए, और दिखवा के इसका जो है निदान और उपचार करवाएं। पेन किलर से काम ना चलाएं, ये नुकसान करेगी, आप दिखवाएं किसी अच्छे डॉक्टर को। ठीक है
2: ठीक है
0: पवन जी,
2: सर,
0: नमस्कार,
2: महादेव।
0: महादेव।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, कॉल लगी है आपके कार्यक्रम आरोग्य में, कौन बोल रहे हैं?
3: जी मैडम, मैं चंदूपुरा वाराणसी से राहुल कुमार बोल रहा हूँ। जी मैडम, मेरे माँ के ना घुटने में बहुत दर्द होता है, हड्डियों में।
0: आपकी माता जी की क्या उम्र है?
3: यही 55 साल है।
0: तो देखिए, अगर घुटने में हल्का फुल्का दर्द है, फिर तो व्यायाम, कसरत, कैल्शियम, विटामिन डी, नीचे बैठना जो है ना बैठे, नीचे बैठना अवॉइड करें, इन्हीं चीज़ों से आराम हो जाएगा। पर अगर परेशानी लगातार बनी हुई है तो फिर एक्सरे वगैरह करके देखना पड़ेगा कि उसमें कुछ गठिया के लक्षण तो नहीं है। अगर वैसा होगा तो उसके हिसाब से फिर दवाइयाँ या फिर फिजियोथेरेपी,
3: जी
0: ब्रेसिंग
3: सर,
0: वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी।
3: मैंने हड्डी वाले डॉक्टर से दिखाया था, सब सही था, कसरत करने के लिए बोले थे सर।
0: तो वो कर रहे हैं, उसको करें, उसी से फायदा
3: हाँ
0: मिलता
3: ठीक
0: है, 80 से 90% लोगों को उसी से आराम मिल जाता है।
3: है,
0: ठीक,
3: नमस्ते
0: नमस्कार।
1: सर। आपने जिक्र किया था कि महिलाओं में हड्डियों की डेंसिटी कम होने की शुरुआत जल्दी होती है, मतलब अगर वो मेनोपॉज के नजदीक है या उसके बाद। क्या महिलाओं में अगर थायराइड की समस्या है तो भी हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं उनको?
0: आकांक्षा जी, बहुत अच्छा सवाल है। थायराइड या और भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़ इत्यादि, इनसे, या फिर कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जैसे स्टेरॉयड इनटेक है, इन चीज़ों से भी ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों की बीमारी की शुरुआत मेनोपॉज से पहले हो सकती है। थायराइड में एक समस्या और होती है, जिनको थायराइड होता है उनके वेट गेनिंग टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, ये एक भ्रम है कि जिनको थायराइड है उनमें मोटापा या

0: ओबेसिटी होगा ही, ऐसा नहीं है, पर हाँ वेट गेनिंग टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को थोड़ा सा अपने वज़न को लेके सचेत ज़्यादा रहना है। तो कोई भी अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बोन्स पे असर पड़ता है, किडनी डिजीज़ है, सांस की परेशानी है, स्किन डिजीज़ हैं जिसकी दवाइयाँ चलती हैं, इवन लॉन्ग टर्म में होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बोन के मेटाबॉलिज्म या बोन के स्ट्रक्चर पर असर डालती हैं। तो ये चीज़ समझना आवश्यक है कि आयुर्वेदिक दवाइयों का मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म लिया जाए, अनमॉनिटर्ड अपने मन से हम लोग लिए जा रहे हैं। उसके लिए भी एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखवा के उनके डोजेस को बढ़ाना, घटाना, बंद करना आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो बोन हेल्थ मेंटेन रहता है। महिलाओं को इसको लेकर अपने अर्ली 20s 30s प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद से ही अलर्ट रहना, सचेत रहना ज़रूरी है। आमतौर पर देखा जाता है वो अपने घर के काम, बाहर के काम, जॉब, बच्चों के साथ व्यस्त रहती हैं, अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान नहीं देती हैं। तो ये ना करें, क्योंकि शरीर साथ नहीं देगा तो फिर समस्याएं आगे बढ़ती हैं।
1: सर, अगर हम सिर्फ महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में विशेषकर गर्भावस्था के दौरान कई शारीरिक और हार्मोनल बदलाव शरीर में होते हैं जिसका सीधा असर उनके सेहत पर पड़ता है। तो क्या गर्भावस्था के दौरान हड्डियों का कमज़ोर होना आम बात है? ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो डॉक्टरी सलाह लेना बेहद आवश्यक है।
0: देखिए, गर्भावस्था या प्रेगनेंसी ये एक नेचुरल फिनोमेना है, या इसको हम लोग कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। भगवान ने शरीर को ऐसा बनाया है कि उन 9 महीनों में जो है शरीर सब कुछ कर सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि यंग एज में जब प्रेगनेंसी होती है और आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने बता दिया है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, तो एक्टिव रहना ज़रूरी है। अगर आप एक्टिव रहते हैं, आपकी मांसपेशियाँ, जोड़, हड्डियाँ, बाकी शरीर के सारे अंग, ये सारे मजबूत रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि 8-9 महीना सिर्फ रेस्ट करना जो है वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ ही साथ प्रेगनेंसी में आपके कैल्शियम और विटामिन डी और प्रोटीन, इनकी रिक्वायरमेंट, आवश्यकता बढ़ जाती है। तो आपका जो डाइट है वो डाइट जो है उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी पर्याप्त होना ज़रूरी है, और अलग से कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन की जो सप्लीमेंटेशन है अलग से बाहर से टैबलेट या कैप्सूल या पाउडर फॉर्म में लेना भी आवश्यक है। और इसके साथ साथ कसरत और व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले जब प्रेगनेंसीज और ये गर्भावस्था घरों में मैनेज होता था, ज़्यादातर आबादी गांव की होती थी या शहरों में भी, छोटे शहरों में होती थी, तो हम लोग की माताएं, दादी, नानी लोग जो हैं आखिर के भी कुछ दिनों तक एक्टिव रहती थी, सब कुछ करती थी।
1: जी
0: तो इससे उनकी जो रिकवरी डिलीवरी और प्रेगनेंसी के बाद बहुत नेचुरल वे में होती थी, क्योंकि शरीर वैसे ही बना हुआ है। अभी भी आप नेचर में देखेंगे, जंगलों में, वाइल्ड में एनिमल्स बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, क्योंकि लास्ट तक वो एक्टिव रहते हैं। उसमें एक कारण ये भी है कि उस समय प्रेगनेंसी बहुत कम उम्र में होती थी, तो कम उम्र में शरीर की रिकवरी फास्ट होती है, शरीर की क्षमताएं भी अधिक होती है। बट इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है, और इसके लिए प्रॉपर एम्फेसिस, अब तो बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जो प्रेगनेंसी के समय एक्सरसाइजेज आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स, बैक के मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए होती हैं, जो करना बहुत आवश्यक है। और बहुत एक्सेसिव वेट गेन जो है वो भी प्रेगनेंसी के दौरान ठीक नहीं, थोड़ा बहुत तो होता ही है, बट एक्सेसिव वेट गेन जो है वो भी आगे चल के समस्या का विषय बन जाता है।
1: जी हेलो।
2: जी, मैं चंदौली से बोल रहा हूँ। विवेक।
1: हाँ विवेक जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका।
2: डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। मैडम, ये पैर में घुटने में जो है जैसे कभी अप डाउन करने पे खट खट की आवाज आती है।
0: कब से लक्षण है विवेक जी इस चीज का?
2: जी, ये लगभग करीब 1 साल के आसपास से है। उम्र मेरी 52 साल के आसपास है।
0: तो बैठने का ही काम है, दिन भर कुछ कसरत व्यायाम भी करते हैं।
2: सुबह तो सर जैसे मतलब 2-3 घंटे तो खेती गृहस्थी भी है, तो काम धाम तो किया जाता है खेती
0: जी। नहीं देखिए, काम धाम खेती गृहस्थी जो है मेहनत वाला काम है, पर वो व्यायाम नहीं है।
2: जी
0: तो अलग से घुटने में जो खटखट की आवाजें आ रही हैं, उसके लिए घुटने का व्यायाम करना आवश्यक है। थोड़ा समय निकाले अपने अपने रूटीन में, अपने व्यस्त रूटीन में थोड़ा समय निकाले अपने स्वास्थ्य के लिए, और उसमें जो है आप थोड़ा घुटनों का व्यायाम करें, तो जो ये खटखट की आवाज़ आ रही है सीढ़ी ऊपर नीचे करने में या बैठ के उठने में, उसमें आपको अवश्य लाभ मिले। वजन संतुलित रखें और अपना कसरत व्यायाम घुटनों का नियमित करें, उसी से आराम मिले।
2: 90 पाउंड
0: बहुत ज़्यादा है, कम से कम 10-15 किलो आपका वजन कम होना चाहिए। उस पर भी थोड़ा ध्यान दें, वजन घटाने पर, खान पान पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। नमस्कार।
1: सर, उम्र बढ़ने के साथ साथ कई व्यक्तियों

0: में देखा गया है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं, बोन में डिफॉर्मिटी आने लगती है, खासकर पैरों की हड्डियां जो हैं वो नी के नीचे टेढ़ी हो गई हैं, या हाथों के जो नकल्स हैं वो उल्टे सीधे हो रहे हैं, या पैरों के जो पंजे हैं उनकी उंगलियां आगे पीछे हो रही हैं। ये क्यों है? क्या ये उम्र बढ़ने के साथ होने वाली बीमारी है या इससे बचा जा सकता है?
1: जहाँ तक घुटने का जो टेढ़ापन है आप कह रही हैं, इसकी शुरुआत एक्चुअली बचपन में ही हो जाती है। अगर बचपन से ही घुटने अगर एक सर्टन डिग्री टेढ़े हैं, तो उस घुटने का जो बैलेंस है, जैसे हम लोग कार में व्हील बैलेंसिंग कराते हैं ना, उसी प्रकार से बचपन से उसका जो बैलेंस है वो गड़बड़ है। बैलेंस गड़बड़ होने की वजह से एक साइड से घुटने का जो जॉइंट है उसकी घिसावट बढ़ती चली जाती है, और धीरे धीरे देखा जाता है खासकर लेडीज लोगों में कि घुटने जो है धनुषाकार हो जाते हैं, धनुष की तरह जो है कर्व्ड हो जाती हैं। तो इसकी जो शुरुआत है काफ़ी कम उम्र में हो जाती है। अगर ये पता चल रहा है तो एक एज के बाद इसको सीधा करने के लिए तो आपको सर्जरी की ही आवश्यकता पड़ेगी, और ऐसे कुछ सर्जरीज होते हैं जो यूजुअली 30s, 40s, 50s में किया जा सकता है, जिससे घुटने का जो घिसावट है वो रोका जा सके। हाई ट्यूबल ऑस्टियोटॉमी जैसे सर्जरीज होती हैं, उससे पैरों को सीधा कर दिया जाता है या फिर अलाइनमेंट करेक्ट कर दिया जाता है, तो रीअलाइनमेंट सर्जरीज हम लोग कहते हैं। और अगर ये बहुत बढ़ गया है और इसके साथ ही साथ घुटने घिस भी गए हैं और तकलीफ़ ज़्यादा दे रही है, फिर इसमें रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ तक हाथ पैर उंगलियों के टेढ़ेपन की बात है, तो कुछ लोगों में ये आर्थराइटिस की वजह से होता है, खासकर रूमेटॉयड आर्थराइटिस जो फिंगर्स को इफेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब है उन्होंने कभी अपने रूमेटॉयड का सही इलाज नहीं किया, या फिर रूमेटॉयड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था या बहुत अग्रेसिव था कि दवाई से कंट्रोल नहीं हुआ। इनमें जिनमें लक्षण ज़्यादा होते हैं उनको भी सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों में जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होती है कि घर में दादी को या नानी को या मामा को जोड़ों में टेढ़ापन था, या फादर को या चाचा को है, तो वो जेनेटिकली जो है ट्रांसमिट हो जाता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़रूरी है शुरुआती लक्षण में, और घर में अगर हिस्ट्री है तो उसके लिए प्रॉपर कंसल्ट करके क्या बेटर कर सकते हैं। जूते हैं, शू मॉडिफिकेशन, अगर उंगलियां चढ़ रही हैं तो ब्रॉड बेस शूज़ होने चाहिए, उसका सामने का टेपर्ड ना हो, चौड़ा हो, या फिर फिंगर्स में अगर टेढ़ापन है तो प्रॉपर फिंगर्स की एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग, ये सारी चीज़ें आवश्यक है।
0: सर, कई बार व्यक्तियों में बोन एनलार्जमेंट, मतलब किसी एक विशेष जगह पे हड्डियों का बढ़ना, ये समस्या देखी गई है। ये क्यों होता है और क्या इसका इलाज है?
1: तो ये जो बोन ग्रोथ्स हैं दो प्रकार की होती हैं। कई बार तो ये बोनी ग्रोथ प्रॉपर होती हैं, मतलब कि कोई एक बोन में ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, कैंसर नहीं, की तरह बन जाता है। यूजुअली ये कम उम्र में दिखती हैं, डायग्नोसिस हो जाती है, अगर बहुत बड़ा है तो उसको एक्साइज कर सकते हैं। कई बार ये डिजेनरेटिव प्रोसेस भी होते हैं। क्या होता है कि हड्डियों में कहीं जगह टेंडन्स या लिगामेंट्स जुड़े होते हैं, खासकर जोड़ों के पास में, तो वहाँ पे कंटिन्यूअस इन लिगामेंट्स या टिश्यूज़ के पुल की वजह से वहाँ पे बोन ग्रो हो जाती है। तो ये थोड़ी सी जेनेटिक टेंडेंसी होती है, कुछ लोगों में ये टेंडेंसी होती है। आप देखेंगे हाथ की उंगलियों में या एड़ी के पास या घुटने के पास हल्के हल्के से समय के साथ 40s 50s के बाद जो है थोड़ी सी हड्डी बढ़ी हुई महसूस होती है। तो आमतौर पर अगर कोई इसमें बहुत लक्षण नहीं है तो इनको इग्नोर करना होता है, क्योंकि ये दवाइयों से घटती नहीं है, और अगर लक्षण नहीं है तो उसमें कोई छेड़छाड़, इंजेक्शन या सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
0: सर, अगर व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है और वो दवाइयाँ ले रहा है, चाहे वो हार्ट के लिए हो या बीपी की हो या किसी भी अन्य तरह की, तो क्या उन दवाइयों का असर हमारे शारीरिक ढांचे पे यानी हड्डियों पर पड़ता है और कितना गंभीर हो सकता है ये?
1: देखिए, जो कार्डियक प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की कोई भी समस्या अगर है, तो इनका असर शरीर के हर अंग पे पड़ता है। तो एक तो जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो समझना है कि आमतौर पे इन बीमारियों के बाद लोग अपनी एक्टिविटी लेवल कम कर देते हैं। जहाँ वो चलना फिरना एक्टिविटी लेवल कम कर देते हैं, लॉन्ग टर्म में हड्डियाँ, मसल्स, जॉइंट्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो शुरुआत में अगर कोई कार्डियक प्रॉब्लम या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या स्ट्रोक या ऐसा कुछ हुआ है, तो अवश्य डॉक्टर से समझें और उनसे डिस्कस करके ही रिकवरी के बाद ही धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं। पर अगर आपने उसके बाद शरीर को छोड़ दिया, एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, एक्टिविटी बढ़ाना बंद कर दिया, तो स्वाभाविक है कि हड्डियाँ और शरीर कमज़ोर होती चली जाएंगी, बोन्स वीक होंगी। बोन्स के साथ साथ जैसे हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं, मसल्स वीक होंगी, तो इसके लिए एक टर्म है सार्कोपीनिया। तो अब ये देखा जा रहा है कि हड्डियां जैसे जैसे कमजोर होती हैं, साथ साथ में मसल्स भी वीक होती जाती हैं, और मसल मास जो होता है उसमें मसल की क्वांटिटी कम और उसमें फैट का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, इसको हम लोग सार्कोपीनिया कहते हैं, मतलब मसल्स का

0: और एक बार मसल्स कमजोर हो जाएंगी तो फिर वो जो रूटीन काम है, आपको कुर्सी से ही उठना है या बिस्तर से ही उठना है या टॉयलेट से उठना है, चेयर से उठना है, तो इसमें मसल स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आपको लगातार बैठना है तो कमर पीठ की मांसपेशियां मजबूत होनी है, अगर ये मजबूत नहीं है तो इसमें दर्द होगा। तो एक्सरसाइज, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस जिसमें स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग का एक कॉम्बिनेशन है, जिसके लिए बेस्ट है योगा, तो वो एक अपने शरीर और उम्र के हिसाब से रेगुलर बेसिस में करना ज़रूरी है। वॉकिंग और योगा ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपकी बोन की स्ट्रेंथ, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के लिए सारा काम, और मसल की स्ट्रेंथ और मसल मास, मतलब सार्कोपिनिया के विरुद्ध जो है आपका सारा काम हो जाएगा, और आपकी बोन स्ट्रेंथ और मसल स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी।
1: सर, क्या कैल्शियम की दवाइयाँ लेना पाउडर फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में बिना डॉक्टर के सलाह के हानिकारक हो सकता है? कि कई बार ऐसा देखा गया है कि चलिए हफ्ते में 3 दिन हमने कैल्शियम की दवाई ले रहे हैं और बिना डॉक्टरी सलाह के खुद से ही, कि कितना हानिकारक हो सकता है?
0: देखिए, बहुत आम सवाल है, हर इंसान के दिमाग में आता है। देखिए, ये जो कैल्शियम कितना लेना है, किस फॉर्म में लेना है, ये एक बहुत साइंटिफिक सवाल है, और इसका अगर आप किसी डॉक्टर से आप डिस्कशन करेंगे तो मैथमेटिकल है कि इतनी उम्र है, इतना वेट है, तो आपके रोज़ का कैल्शियम रिक्वायरमेंट इतना है। प्रेगनेंसी है तो बढ़ जाएगा, लैक्टेशन है, आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करानी तो बढ़ जाएगा, आपको अन्य बीमारियां हैं जिसमें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होती है, तो अगेन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है तो एक बार डॉक्टर से अवश्य डिस्कस करें, अन्यथा अगर आपकी उम्र 25 या 30 के ऊपर है तो एक बार साल में एक बार अपना रूटीन ब्लड चेकअप करवाएं। अगर आपको लक्षण बने हुए हैं कि दर्द है हड्डियों में, शरीर में, जोड़ों में, डॉक्टर को दिखवाएं, दिखवा के डोज लें। अदरवाइज कैल्शियम एक कोई मेडिसिन नहीं, एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, और नॉर्मली आप अगर खाते हैं तो शरीर में सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो एक्सेस कैल्शियम है वो शरीर से निकल जाता है। कुदरत ने, नेचर ने जो शरीर को बनाया है, बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, एक्सेसिव चीज़ें रहती नहीं है। तो आप अगर कैल्शियम ले रहे हैं तो उससे कोई समस्या नहीं होनी है। कुछ भ्रांतियाँ हैं कि कैल्शियम खाने से स्टोन बन जाता है या फिर कुछ और पथरी की समस्याएं आती हैं। जिनको स्टोन बनना है, पथरी होना है, उन लोगों में ऐसे भी होगा और उसमें कैल्शियम को रोका जा सकता है, बट अदरवाइज 99% पॉपुलेशन में, अगर आप वेजिटेरियन डाइट है, आपको लगता है कि आपके खान पान में कैल्शियम या विटामिन डी पर्याप्त नहीं, जैसे मान लीजिए आपको मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है या आप नॉनवेज फूड नहीं खाते हैं, तो कैल्शियम और विटामिन डी अवश्य लेना ज़रूरी है, और उसको रूटीनली ओवर द काउंटर टैबलेट्स आते हैं वो आप ले सकते हैं।
1: सर, इसी में हम जोड़ना चाहेंगे कि बच्चों की कैल्शियम रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी होती है, क्योंकि बढ़ती उम्र होती है उनकी और उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है।
0: देखिए, बच्चों के शारीरिक विकास की जो समस्या है उस चीज़ को पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है। बच्चे तो वही खाएंगे जो उन्हें पसंद आता है, और बच्चों के शरीर का विकास तो जिस दिन से वो पैदा होते हैं तभी से शुरू हो जाता है, उनकी ग्रोथ आप देखेंगे ग्रोथ स्पर्ट्स में होता है। कुछ दिन तक बच्चा आपको एक पर्टिकुलर हाइट का दिखेगा और फिर एकाएक हाइट बढ़ जाती है, तो ये रुक रुक के होता है, इसलिए इसको हम लोग स्पर्ट्स कहते हैं। मतलब कुछ कुछ दिनों में एक साथ स्पर्ट आता है, एकाएक हाइट बढ़ती है, फिर कुछ महीनों के लिए रुक जाता है, फिर एकाएक बढ़ती है। तो जब ये ग्रोथ स्पर्ट आता है तो ग्रोथ स्पर्ट से पहले शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन के कितनी रिजर्व्स है ये निर्धारित करती है कि ग्रोथ कैसा होगा, स्पर्ट कितना होगा। आमतौर पे बच्चों में ग्रोथ पेन्स बहुत कॉमन होती है इस ग्रोथ स्पर्ट के समय। इसका सीधे सीधे तात्पर्य आपके हड्डियों में, शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन के रिजर्व से है। अगर ये कम है तो ये ग्रोथ स्पर्ट के समय पेन होता है, ग्रोथ पेन्स होती हैं।
1: जी, यानी सर ग्रोथ पेन की आप बात कर रहे हैं, जब अमूमन बच्चे शिकायत करते हैं कि उनके पैरों में दर्द हो रहा है या
0: जी
1: उनके
0: बिल्कुल,
1: पंजों में दर्द हो रहा
0: जी
1: है
0: हाँ, जी
1: या
0: हाँ,
1: हाथ पैर में दर्द हो रहा
0: हाँ
1: है।
0: हाँ तो इन बच्चों में शुरुआत से ही कैल्शियम सिरप्स और विटामिन डी वंस इन 15 डेज या वंस इन 1 मंथ देना आवश्यक है। नेचुरल डाइट में दूध है, मिल्क प्रोडक्ट सारे हैं, अखरोट, बादाम, ड्राई फ्रूट्स हैं, दाल है, मूंग की दाल है, सोयाबीन है, उनसे आप कुछ भी चीला वगैरह बना के ले सकते हैं। नॉनवेज फूड में एग्स हैं, बहुत सिंपल है, चिकन है, फिश है, ये सब कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन के अच्छे सप्लीमेंट है। ध्यान देने वाली बात यह कि विटामिन डी का कोई बहुत सोर्स है नहीं हमारे डाइट में,
1: जी
0: और जो हम लोग सन एक्सपोजर, वो हमारे देश में प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन 45 मिनट आपके शरीर का 80 से 90% सन को एक्सपोज

0: होना चाहिए। और वो हमारे यहाँ गर्म देश है, नॉर्थ में, पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे गर्मी इतनी है कि आप 45 मिनट तो बॉडी एक्सपोज करके धूप में बैठ नहीं सकते हैं। प्लस हम लोग के स्किन का जो कलर है वो भी डार्क है, तो उसमें जो पिगमेंट मेलानिन होता है वो सन रेज के एब्जॉर्प्शन और विटामिन डी की जो सिंथेसिस उसमें बाधा डालता है। तो इसलिए विटामिन डी की कमी बहुत आम है और उसका सप्लीमेंटेशन आवश्यक है।
1: सर, चलते चलते श्रोताओं को आप क्या कहेंगे अपने अस्थि तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए? अपनी दिनचर्या में, साथ ही साथ अपने खान पान में हम किन विशेष बातों का ध्यान रखें?
0: देखिए, अगर घर को साफ रखना है तो लग के आप ही को मेहनत करना होगा। इसी प्रकार से अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको इसमें खुद जुट जाना होगा, इन्वॉल्व होना होगा, अवेयर होना होगा और अग्रसर होके काम करना होगा। तो इसमें डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। डाइट के दो पहलू है। अगर आप मैलनरिश्ड हैं, बहुत दुबले पतले हैं, डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन की कमी है, तो उसको सप्लीमेंट करना, उसकी भरपाई करना आवश्यक है। एक और प्रकार का मैल नरिशमेंट होता है, ओबेसिटी भी एक प्रकार का मैल नरिशमेंट है। मतलब आपके डाइट में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा है जिसकी वजह से शरीर में वो फैट के फॉर्म में है, वो भी मैल नरिशमेंट है, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों का इंटेक सेवन कर रहे हैं और कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी की कमी कर रहे हैं। तो वेट नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो नरिशमेंट है वो नॉर्मल है। बहुत लोगों के नॉर्मल वेट मिलते हैं, उसके बावजूद भी हीमोग्लोबिन कम होता है, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन टेस्ट में कम आती हैं। तो डाइट बहुत अहम पहलू है। दूसरी चीज़ है एक्टिविटी। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप स्मार्ट वॉच यूज़ करके आपने स्टेप काउंट रखा कि हम 10,000 स्टेप चलेंगे, या फिर आपने कोई रूटीन मेंटेन किया हुआ है, या तो आप कोई योगा क्लास जाते हैं, या जिम जाते हैं, या स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ नहीं तो आप खुद ही वर्कआउट में वॉकिंग या फिर योगा करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा, घर में एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल बहुत ज़रूरी है और उसका डेली यूज़ करना सुबह शाम बहुत ज़रूरी है। उससे आपको पता रहता है, बच्चा पढ़ रहा है पर अगर मान लीजिए टेस्ट नहीं देगा तो उसको नहीं पता है कि उसकी जो पढ़ाई हो रही है वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं। तो इसी प्रकार से आप खा रहे हैं, आपका वेट बढ़ रहा है, आपका वेट घट रहा है, अगर उसको रोज़ आप मॉनिटर करते रहेंगे तो डेली आप करेक्टिव एक्शन लेते रहेंगे। भी आज 1 किलो वेट बढ़ गया तो कल आप सचेत होंगे, जब आपको ये पता चलेगा कि 10 किलो वेट बढ़ गया तब उसको घटाना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। अवश्य एक वेइंग मशीन लें। अगर आपको खुद से वेट घटाने में समस्या हो रही है तो डाइटिशियन की मदद लीजिए। खुद से क्रैश डाइटिंग या नेट पढ़ के डाइटिंग करने का प्रयास ना करें, क्योंकि उसमें कई बार मैल न्यूट्रिशन हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, इंजरीज हो जाती हैं। और प्रोफेशनल डाइटिशियन के हेल्प लीजिए, फिजिकली मिलिए, ऑनलाइन आपको डाइटिशियंस मिल जाएंगे, उनसे आप हेल्प लीजिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं।
1: सर, आप कार्यक्रम में आए और हमारे साथ साथ श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्यम आज यहीं समेटेंगे। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आकांक्षा सिंह को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। कार्यक्रम में आज का विषय था ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का खोखलापन। विशेषज्ञ थे डॉक्टर उन्मेष चक्रवर्ती, आपसे बातचीत की आकांक्षा सिंह ने। यह कार्यक्रम आपकी सेवा में पुनः प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 12:01 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम, पेशकश अरुण पांडे की।

0: हुआ।
1: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
2: एक्सक्यूज मी,
3: हाँ बोलना।
0: क्यूट है ना?
1: और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
4: सलाम।
1: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-1052 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से।
0: हाँ।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: जी, मैं चंदूपुरा वाराणसी से राहुल कुमार बोल रहा
0: हूँ। राहुल कुमार जी, आपका फोन लग जाता है तो खुशी आती है, बाहर आ जाती है एक तरह से। और बाहर थोड़ा सा हमारे बनारस में भी आई हुई है, क्योंकि मौसम भी बिल्कुल अचानक से बदल करके ठंडा सा हो गया है।
1: जी सर, ये वाला ठंडा सा सर हो गया है।
0: हाँ, ये हफ्ता भर करीब रहेगा, फिर तो गर्मी है, तो गर्मी का मौसम है तो वो भी जरूरी है, और वो मौसम आने ही वाला है। लेकिन अभी राहत तो हो गई बिल्कुल, अप्रैल के आखिरी में हफ्ते में जो जोरदार बारिश हुई, जबरदस्त अंधेरा जैसा हो गया आपके भी इलाके में।
1: इतना तेज बारिश हुआ सर।
0: अच्छा, ये बताएं, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है सर
0: जी। आज कौन सा गीत सुनवाए राहुल जी?
1: गाना सुनना है माँ फिल्म का, टाइटन सॉन्ग।
0: माँ ही मंदिर है, माँ ही पूजा है, मोहम्मद अजीज की आवाज है, देव कोहली के बोल और अनु मलिक का संगीत। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आपकी पसंद। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हाँ हेलो सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: सर, अरुण सर
0: जी। बिल्कुल
1: जी सर, मैं ग्राम मेर जिला कैमूर भगवा बिहार से अलीम अंसारी बात कर रहा हूँ सर।
0: बहुत बढ़िया अलीम जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं और हमारे प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: सर प्रोग्राम आपका तुम एक से एक लाजवाब है।
0: आप भी लाजवाब हैं। क्या काम कर रहे हैं वहाँ पर आप?
1: सर जी आपसे बात हुआ था, एक बार कालीन का काम करते हैं।
0: बहुत बढ़िया, तो आपकी आवाज और मिठास बड़ी अच्छी है आपकी आवाज में।
1: जी सर आपको भी आवाज बहुत बढ़िया है।
0: तो रेडियो से आपका जुड़ाव बहुत पुराना है लगता है।
1: जी सर, जी सर 1996 से जुड़े हुए हैं।
0: अच्छा, वही वो साल है जब विविध भारती में हमने ज्वाइन किया था आकाशवाणी विविध भारती।
1: जी सर, अफसर नजीर, किशोर जिला का या पुष्पा मिश्रा जी सब पुराने।
0: जी जी जी, हमारे तमाम पुराने साथियों को भी आपने सुना है।
1: जी सर।
0: और अब इस दौर में नए नए साथी आते हैं, उनके बारे में उनके कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: सर जी उनको भी कार्यक्रम बहुत बढ़िया अच्छा लगता है, वो लोग भी अच्छे हैं।
0: जी बिल्कुल, ये तो वक्त है, बदलाव चलता रहता है और सभी के लिए अवसर है। आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: सर फिल्म का नाम है इना मिना डी का। उसमें गाना है कोई कहे दीवाना कोई कहे अनजाना।
0: जी, गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: तो फोन इन फरमाइश
0: जी, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, कहाँ से?
1: ग्राम मन्नापुर, जिला चंदौली से, राजनारायण पटेल।
0: राजनारायण पटेल जी, आपसे हमारी पहले भी बात हुई है।
1: हाँ।
0: तो कैसे हैं, कामकाज कैसा चल रहा है आपका?
1: बहुत बढ़िया चल रहा है। आप अरुण भाई बोल रहे हैं ना?
0: जी जी जी। तो प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको? आपका फोन कट गया इस बीच। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
2: हेलो फोन इन फरमाइश
0: जी, नमस्कार।
2: उस्मान बोल रहे हूँ उत्तराखंड से।
0: क्या कहने, उत्तराखंड में कौन सी जगह से उस्मान जी बात कर रहे हैं आप?
2: बाजपुर दोराय से। दोराय से
0: ये ताजपुर है या बाजपुर है?
2: बाजपुर दोराय।
0: बाजपुर दोराहा, तो ये कौन सी जगह है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आस पास कौन सा बड़ा शहर है आपके?
2: ये हमारा यहाँ पर नैनीताल
0: के आसपास है, यानी तो पहाड़ी और ठंडा इलाका होगा।
2: जी जी, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पर, सुबह शाम की बहुत ठंड है।
0: और ये जो मौसम है इस समय, हालांकि इस बार थोड़ी सी बारिश हो गई, नहीं तो हमारे इधर के तमाम उत्तर भारत के पर्यटक जो है वो नैनीताल जाते हैं घूमने के लिए।
2: जी जी, काफी अच्छा मौसम होता है पहाड़ी इलाका।
0: जी जी जी, तो आपका वहाँ कारोबार किस चीज का है?
2: हम खेती बाड़ी करते हैं।
0: जी, तो पहाड़ों में खेती किस तरह से होती है? वहाँ सीढ़ी नुमा खेत होते हैं,
2: मतलब हमारे जहाँ पर हम रहते हैं अबाजपुर में, यहाँ पर इतनी पहाड़ी नहीं है, नैनीताल के जाके ज्यादा पहाड़ी है।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, वहाँ हल्द्वानी वगैरह के आसपास मैदानी इलाका है और आगे पहाड़ियाँ होती हैं जस्ट तुरंत।
2: यस यस सर।
0: और प्रोग्राम सुन पाते हैं आप डीटीएच से या फिर ऐप पर?
2: ऐप पर सुनते हैं, पहली बार कॉल करिए।
0: जी जी, स्वागत है आपका। और खासतौर से कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं आपको?
2: हेलो फरमाइश है और भी जितने प्रोग्राम आते हैं सभी अच्छे लगते हैं।
0: जी, कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको?
2: वो वाला गीत सुनवा देना, पहाड़ों के ऊपर हुस्न पहाड़ों का,
0: राम तेरी गंगा मैली। और वाकई ये जो गीत है, ये पहाड़ों का जो हुस्न है, वहाँ की खूबसूरती है प्रकृति की, वो देखते ही बनती है, उसका बड़ा अच्छा सा इस गीत में जिक्र किया गया है।
2: जी जी सर, हमारे यहाँ मैं कुछ कहना चाहूंगा।
0: जी बताएं।
2: मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ के उत्तराखंड की ये बहुत अच्छी खासियत है, यहाँ की सड़कें रोड बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जो लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो नियम अनुसार ही चलाते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाती, और मतलब अच्छा नियम है हमारे यहाँ का उत्तराखंड।
0: जी बिल्कुल, देखिए सावधानी ही बचाव है, और खास तौर से हेलमेट वगैरह का प्रयोग तो सभी को करना चाहिए, इस बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है। और अच्छी बात है कि आपके इलाके में लोग इसका पालन करते हैं। ट्रैफिक नियमों के पालन से हम बहुत सारी चीजें, हादसों को बचा सकते हैं, और बिल्कुल एक अनुशासित जो है यातायात वो बना रहता है। ये गीत फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं, राम तेरी गंगा मैली है फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें, गीत संगीत रविंद्र जैन का है।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हाँ सर नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं कुरहट मऊ से बोल रहा हूँ।
0: मऊ से। अच्छा, कुछ इलाकों से ये सीटी जैसी आवाज फोन में आती है।
1: जी आ रही है मेरे मोबाइल में भी।
0: हाँ, तो ये जैसे ना हमें लगता है तो कुछ प्लग वगैरह कहीं ढीला रहता है आप लोग जिस माउथ पीस से, कुछ मोबाइल में ही टेक्निकल दिक्कत होती है लगता है।
1: अच्छा पिछली बार भी आपसे बात हुई थी
0: जी
1: उसमें भी इको आ रहा था, मैंने कहा था।
0: हाँ, तो हमारी ओर से कुछ नहीं, क्योंकि कुछ श्रोताओं से तो अच्छी बातें होती हैं। अब बताइए कैसे हैं आपके यहाँ, मौसम किस तरह का है?
1: मौसम तो बहुत गड़बड़ चल रहा है, कभी कभी धूप निकल रही है, कभी बदली हो रही है, कभी बूंदाबांदी हो रही है।
0: बिल्कुल, ये मौसम इस बार थोड़ा सा गर्मी के मौसम में धूप छांव वाला हो ही गया है,
1: और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत नुकसानदेह है।
0: क्योंकि शरीर को आदत होती है कि जाड़े के बाद गर्मी जैसा माहौल बिल्कुल बना हुआ था। बहुत तेज धूप मार्च के महीने में ही हो गई थी इस बार, तो कभी कभी वैसे, इसीलिए मौसम कहा जाता है। मौसम के मिजाज के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता
1: कुछ नहीं कहा जा सकता
0: है। जी, कौन सा गीत आज सुनवाए आपको?
1: है। फिल्म है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हिमालय जोड़ते हैं, ये मोहम्मद रफी और के इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तुमने सीखा कहाँ से।
0: ये गीत है कश्मीर की कली फिल्म से, और आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। ओपन एयर का संगीत, SH बिहारी के बोल हैं। गीत आप तक पहुंच रहा है।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश
0: जी। नमस्ते।
1: नमस्ते सर। हम बजट डिया अहमदनगर से अली अकबर अंसारी बोल।
0: स्वागत है आपका। और कैसे हैं अली अकबर जी?
1: हम तो अच्छे थे सर।
0: आप जैसे श्रोता जुड़ जाते हैं और तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो ही जाता है, और खास तौर से बनारस में तो मौसम इस बार गर्मी में भी अच्छा हो गया है इस समय।
1: जी सर जी,
0: इस समय
1: बहुत अच्छा हो चुका है इस समय।
0: हाँ, इस समय वो मौसम हो गया जो अगस्त सितंबर में हुआ करता है।
1: जी जी।
0: और इस मौसम में आप प्रोग्राम का लुत्फ ले रहे हैं।
1: जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है इस समय बात करते हुए आपसे। और आप लोग को सर दिल से बधाई देना चाहते हैं सर हम लोग।
0: जी बताइए।
1: ये छाया गीत जो आप लोग चालू किए।
0: बिल्कुल, आप में से बहुत सारे श्रोताओं ने बीच में कहा भी था, और विविध भारती भी हर श्रोता की आवाज को सुनती है।
1: जी सर, हमने खुद इसका प्रयास किए थे।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: लेकिन हमको सुन के बहुत अच्छा लगा सर, आप लोग को दिल से बधाई देना चाहते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी बिल्कुल, हमारे हर कार्यक्रम आप सबके लिए हैं, और आप लोगों का ख्याल रखना, आप लोगों की सलाह पर गौर करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है। और कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: गाना तो सर हमको मोहम्मद रफी साहब के सुना दीजिए। ये फिल्म का नाम तो नहीं याद है, लेकिन गीत गा के हम बता देते हैं।
0: चलिए गाइए, तब तक हम याद करते हैं।
1: पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कोई कीमत कोई नहीं। बच के निकल जाए इस बत्ती से, बस करता मोहब्बत कोई नहीं।
0: लेकिन देखिए, हमारी आपकी जो मोहब्बत है प्रोग्राम वाली, वो तो बनी हुई है।
1: वो तो बनी रहेगी सर। बनी रहेगी भी
0: जी।
1: आगे
0: नीरज जो गोपालदास नीरज बहुत अच्छे कवि थे, और मंचों पर उन्हें काफी सुना जाता था, और एक से बढ़कर एक गीत उन्होंने लिखे। शर्मिली और ये फिल्म, बहुत सारी फिल्में उनकी हैं। पहचान फिल्म का नाम है, शंकर जयकिशन का संगीत। जी तो फिल्म
1: इसलिए ध्यान पर नहीं था।
0: तो फिल्म पहचान का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश सर जी, कैसे हैं?
0: नमस्ते, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। बड़ा लंबा अंतराल हो गया इस बार।
1: बिल्कुल सही बात है सर, बहुत लंबे अंतराल।
0: वैसे हमने आपको कुछ दूसरे केंद्रों पर आपकी आवाज सुनी।
1: जी बिल्कुल,
0: तो वाराणसी जो हमारा आकाशवाणी है, इससे क्या शिकायत शिकवा रहा, कितना लंबा गैप रहा, नाम अपनी आवाज में बता दीजिए आप।
1: जी बिल्कुल सर, मैं पूनम बात कर रही हूँ, कानपुर उत्तर प्रदेश।
0: तो अब तो आप आरजे हो भी गई हैं।
1: जी बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो जो आपका शौक था बचपन से वो पूरा हो गया।
1: जी सर बिल्कुल।
0: हाँ, सोशल मीडिया ने वो अवसर दिया है कि अगर आदमी में काबिलियत हो, शौक हो, हुनर हो और लगन भी साथ में हो तो जरूर वो मुकाम मिल जाता है। तब आप संतुष्ट हैं?
1: बिल्कुल सर, बहुत संतुष्ट हैं और बहुत लगता है सभी श्रोताओं से बातें करके, और बहुत अच्छा अनुभव भी हम।
0: तो यानी जिनसे हमारी बातें हुआ करती थी कई साल पहले, पिछला कॉल कितने साल पहले लगा था आपका पूनम?
1: जी सर, मुझे तो लगता है कि 2 साल से ज्यादा ही हो गए होंगे।
0: हाँ, 2-4 साल हो गए। इस बीच आपकी मसरूफियत पूनम इतनी रही कि आपको जैसे इस प्रोग्राम की याद नहीं आई।
1: नहीं सर, याद तो मतलब आती है, आती है, लेकिन क्या है ना कि सर बहुत लग नहीं पाता है कार्यक्रम में, बहुत ज्यादा
0: है। हाँ, अब जो है देश के कोने कोने से श्रोता फोन करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है तो थोड़ा सा सबके जानकारी हो जाती है और लोग जुड़ जाते हैं, इंटरनेट का जमाना है। अपने बारे में कुछ बताएं, क्या हो रहा है, क्या करती हैं आप अभी?
1: जी सर, फिलहाल तो बस मैं अभी तो फिलहाल कार्यक्रम की कर रही हूँ, ऑनलाइन जॉब करती हूँ
0: जी,
1: और मेरा जो काम है वो नेटवर्किंग काम है, तो वो भी मैं करती हूँ। साथ साथ रेडियो से हमारा तो जुड़ाव है ही है सर, बना ही रहता है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके कार्यक्रम में मेरा कॉल लगा है, कार्यक्रम में आपसे बातें हो रही हैं।
0: जी, हमें भी अच्छा लग रहा है कि जैसे भूले बिसरे कहते हैं ना, भूले बिसरे गीतों की तरह भूले बिसरी पूनम भी लौट आई है प्रोग्राम में।
1: जी बिल्कुल, पूनम तो आ गई है और सर, और बस हम भूलते नहीं है सर, और बस समय जब कहते हैं कि जब साथ देता है जब कुछ संभव हो।
0: जी, तो पूनम आज कौन सा गीत आप सुनाएंगी या सुनेंगी?
1: तो मैं चाह रही हूँ।
0: अच्छा, ये बताएं, आप भी चूंकि प्रोग्राम करती हैं, ये जो कई बार जो आजकल इंटरनेट पे जो फोन आ रहे हैं हम लोग के, ये वाले, इसमें कई बार सिटी

0: की आवाज या खड़खड़ाहट या आवाज कभी कोई श्रोता गाता है तो कटने सी लगती है, ऐसा आपके साथ भी होता है?
1: हाँ सर, होता है। क्या है ना कि कुछ नेटवर्क में इशू है, इस कारण से ऐसा होता है।
0: हाँ, जैसे अभी आप कभी कभी बीच में आपके साथ जो बात हो रही है इसमें भी आ रहा है, और कुछ श्रोताओं से ठीक बात होती है, वैसे वॉइस नॉर्मली आपकी ठीक रिकॉर्ड हो रही है।
1: जी, तो मैं तो चाहती हूँ सर कि कोई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अब क्या है ना कि जब बहुत समय बाद कॉल लगता है ना, तो नेटवर्क भी बीच में डिस्टर्ब कर देते
0: अभी तक ऐसा
1: जी।
0: नहीं है, इसलिए आप सुनाएं क्या सुना रही हैं।
1: तो सर पहले तो हम चंद लाइनें सुनाना चाहेंगे,
0: जी बिल्कुल,
1: है
0: हम
1: ना?
0: सुनना भी चाह रहे हैं और हमारे
1: तो
0: श्रोता भी।
1: जी, तो चलिए सुना देते हैं। वक्त कम है साथ बिताने में, वक्त कम है साथ बिताने में, वक्त बर्बाद ना करो रूठने मनाने में। हमने बांध रखे हैं इन रिश्तों को एक धागे से, हमने बांध रखे हैं इन रिश्तों को एक धागे से, बस जान लगा दो इन रिश्तों को निभाने में।
0: बिल्कुल, रिश्तों को निभाना, बचाना, बनाए रखना बहुत जरूरी है। 4 दिन की जिंदगी है, तो इसमें रूठने मनाने में वो जो रिश्तों के बने रहने का सुख है वो छिन जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आकाशवाणी से तो हमारा ऐसा रिश्ता है ना कि बस मन करता है कि हमारा जो रिश्ता है वो ताउम्र चलता रहे और कभी ना टूटे।
0: बिल्कुल, आपकी आवाज और जो अंदाज है पूनम, वो अभी भी वैसा ही है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। अब
1: जी,
0: बताएं
1: मुझे भी
0: कुछ।
1: सर बहुत अच्छा लगा। और सर मुझे एक गीत सुना दीजिएगा।
0: जी
1: वैसे मुझे पुराना ही गीत सुनना है आज के कार्यक्रम में, और गीत है

0: तमन्ना यही है।
1: बहुत बढ़िया, गा भी आप अच्छा रही हैं, और आज आपसे जो बातें हुई, जो आपने हमें रचना सुनाई और गीत सुनाया, सबका जो एक उसके पीछे जो भावना है वो भी समझ में आ रही है। और ये फिल्म है हंसते जख्म, मदन मोहन जो महान संगीतकार हुए, कैफी आजमी शायर, उनका गीत संगीत है इसमें। गीत आप तक पहुंच रहा है पूनम, फिर आपसे बातें होंगी, उम्मीद है आप कॉल करते रहेंगे। बहुत
0: बिल्कुल
1: शुक्रिया,
0: सर, कॉल हम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपको भी
1: अच्छा लगा आपसे
0: कार्यक्रम में।
1: बात करके। शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम। हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: मैं उत्तर प्रदेश से राजेंद्र यादव भारती बोल रहा हूँ सर। नमस्कार।
0: नमस्कार राजेंद्र यादव भारती जी, आपकी याद तो हम लोगों को हमेशा से रहती है, लेकिन लगता है इस बार ये जो जुदाई रही कार्यक्रम से आपकी, दूरी वो बड़ी लंबी हो गई।
1: बहुत लंबी हो गई थी सर।
0: जी
1: हमें भी अफसोस है, लेकिन ईश्वर करेंगे तो अब हमेशा आपके साथ रहेंगे।
0: बिल्कुल, आप हमेशा रहें, आप जैसे जितने पुराने श्रोता हैं। दरअसल देखिए, बहुत सारे जो हम आप हैं, हम लोग ही हैं जो बचपन से रेडियो सुनते हुए इस माध्यम से जुड़े रहे हैं।
1: जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर।
0: वरना हर क्षेत्र में या हमारे आपकी जिंदगी में भी मसरूफियत और तमाम वजूहात जो हैं वो तो
1: हाँ,
0: बनी हुई हैं।
1: इसीलिए थोड़ा सा दूरी हो गई थी सर।
0: जी, तो अभी आपका कामकाज ठीक ठाक चल रहा है पहले जैसा?
1: जी, बिल्कुल अच्छा चल रहा है,
0: और
1: कोई
0: वक्त निकाल कर कभी कभी रेडियो से जुड़ जाते हैं आप?
1: हाँ जी, अरे अब दिल मानता ही नहीं।
0: तो उम्मीद है कि अब दिल आपको हेलो फोन इन फरमाइश में भी खींच कर ले आएगा।
1: बहुत श्रोता अनुरोध भी किए कि सर मजा नहीं आ रहा है, आप आइए। तो हमने कहा चलिए इस बार हम कोशिश करेंगे फोन लगाने का, और लग भी गया, और आपसे बात करके बड़ी खुशी हो गई सर।
0: जी, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। दरअसल ये जो रेडियो के साथ जो भावनात्मक जुड़ाव है हमारे तमाम पुराने श्रोताओं का, वो वक्त तो बदलता जा रहा है। वो चीजें देखिए, जैसे जमाना बदलता है, बहुत सारे विकल्प हो गए हैं, तो हर चीज

0: अटैचमेंट, जैसे आदमी गांव छोड़ के शहरों में लोग आ गए हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो जो
1: सही कह रहे
0: पुराने
1: हैं।
0: लोग हैं वही गांव की जो कशिश है, वो गांव की जो कमी है वो रह जाती है, चाहे आप देश विदेश में किसी भी बड़े शहर में बड़ी जगहों पर क्यों न चले जाएं।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: कह रहे
0: यही
1: हैं।
0: हम लोगों का जमीन से जुड़ा रहना है, और जब
1: हाँ
0: जमीन की
1: बिल्कुल
0: बात
1: सही
0: होती है साहित्य संस्कृति संस्कार की, तो रेडियो वो जमीन है जिसने बड़ी अहम भूमिका
1: जी
0: निभाई है हम सबके भाषा संस्कार में।
1: सही, क्यों
0: जी,
1: नहीं, देश
0: क्योंकि
1: विदेश
0: देखिए
1: का
0: एक समय तो
1: समाचार।
0: कुछ था ही नहीं ना, अखबार भी
1: जी
0: बड़े हर जगह तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन आकाशवाणी के प्रसारण बड़ा सहज, सरल और सुलभ था।
1: सरल, हाँ सरल, अधिकांश लोग घर में रेडियो लेके बैठ करके सुनते थे
0: जी जी
1: पुराने
0: बिल्कुल
1: समय में। मेरे समय की मैं बात बता रहा हूँ सर, कि गांव में एक दो थे रेडियो रहती थी, सारे लोग जुट करके शाम को टाइम समाचार या खेती बाड़ी कार्यक्रम या लोकगीत, ये सब सारे चीज बैठ करके सुनते थे और बहुत अच्छी जानकारी भी मिल जाती थी सर।
0: जी। और इसी सिलसिले में हम लोग आकाशवाणी के 90 वर्ष पर भी तमाम आयोजन आकाशवाणी विविध भारती के द्वारा किए जा रहे हैं। तो आज कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें?
1: फिल्म कर्तव्य, लैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला।
0: लता मंगेशकर की आवाज, बहुत खूबसूरत गीत है
1: जी
0: ये,
1: जी
0: और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। कफील आजर के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: जी
0: राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।

श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो आप हमें फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222-1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542। ये कार्यक्रम प्रसारित होता है शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे के बीच और प्रत्येक रविवार को दिन में 12 से 1 बजे के बीच। तो कार्यक्रमों से जुड़े रहिए, सुनते रहिए। और आज ये प्रोग्राम

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: आंखों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के मुताबिक रूमी, पिता का नाम बनारसी, ये मड़ौली मडुआडी वाराणसी की निवासी हैं और 22 जून 2024 की शाम 4 बजे से अपने घर से लापता हैं। रूमी की आयु है 20 वर्ष, कद 4.5 फुट, रंग गेहुआ, दुबला पतला शरीर, चेहरा लंबा है, आंखें और बाल काले हैं और बाल इनके छोटे हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था हरे रंग की कमीज। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना दें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार सीमा, पिता का नाम जीतू राम, ये नई बस्ती पटेबर मड़िहान मिर्जापुर की निवासी हैं और 7 मार्च 2026 की रात्रि 2 बजे से नई बस्ती पटेबर से ही लापता हैं। सीमा की आयु है 23 वर्ष, कद 4 फीट 6 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है, इनके बाएं गाल पर तिल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था काले रंग की सलवार और बैगनी सूट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर को सूचना दें। थानाध्यक्ष थाना भेलूपुर वाराणसी से प्राप्त एक सूचना, इसके मुताबिक गोल्डी कुमारी, पिता का नाम अखिलेश दुबे, ये पटियाला पंजाब के निवासी हैं और 25 फरवरी 2025 से 80 घाट से लापता हैं। गोल्डी कुमारी की आयु 20 वर्ष, कद 5 फीट 8 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था सफेद सलवार सूट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो थानाध्यक्ष थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना दें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। आज रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे विद्वान डॉक्टर श्रीनिवास का कर्नाटक शैली में वीणा वादन। रात में 9:30 पर गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम होगा अंजुमन। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम में

कलाकार होंगी चित्रा सिंह। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। इसमें श्रोताओं के ईमेल के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। प्रसारण समय याद रखें शाम 7:31 का। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती विषय पर डॉक्टर मनीष पांडे से बातचीत सुनवाई जाएगी। इसके अलावा चर्चा और लोकगीत, लोकगीत के कलाकार होंगे राहुल कुमार मौर्य। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण है आज की बात, युवाणी कैंपस से यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास, विश्व घटना चक्र और रोजगार सूचना, साथ ही फिल्म संगीत। बाल गोपाल कार्यक्रम होगा शाम 5:00, इसमें शालिनी त्रिपाठी की वार्ता होगी, पर्यावरण संरक्षण हमारा नैतिक दायित्व। 2:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज की फिल्म होगी गदर, प्रस्तुति नैना वाल्मीकि की। 1:30 पर व्हाट्सएप पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोक रंग। 1:15 पर आज इतवार के कार्यक्रम में आप सुनेंगे विनोद कुमार गौतम की लिखी झलकी, समस्या निदान केंद्र, प्रस्तुति मधुर श्रीवास्तव की है। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: राजधानी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। मरकजी हुकूमत ने लेबर कोड के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इससे मरकजी वजारतों, महकमों, खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर के इकदाम में काम करने वाले आउटसोर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन के तहफ्फुज को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक, साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: मरकजी हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड 2025 के फातहीन का ऐलान कर दिया है। पूरे मुल्क से चुनी गई 42 पंचायतों को ये इनामात दिए जाएंगे। वजारत पंचायती राज ने बताया कि इनामात का तकसीम प्रोग्राम 3 जून को नई दिल्ली में मुनक्किद किया जाएगा। वजारत के मुताबिक कर्नाटक से सबसे ज्यादा 6 गांव पंचायतों को अवार्ड के लिए चुना गया है। दरियसना आगरा जिले की बिरहारू गांव पंचायत भी अवार्ड की फेहरिस्त में शामिल है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के पार्टी के बानी सी जोसेफ विजय को आज सुबह वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया गया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। जनाब विजय के साथ नौवुजरा ने भी हलफ लिया। लोकसभा में इस बेख्तलाफ पार्टी के लीडर राहुल गांधी और तमिल फिल्मी दुनिया के कई हस्तियां हलफबरदारी तकरीब में मौजूद रहीं। अयोध्या में राम मंदिर तामीर कमेटी की खसूसी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर तामीर को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर का खसूसी तामीराती काम अब मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मुहिम में अपनी जानों को कुर्बान करने वाले कार सेवकों की याद में मंदिर अहाते में एक अजीमुशान शहीद स्तंभ बनाया जा रहा है, जिसके 15 जून तक तैयार होने की उम्मीद है। वजीर बराए मालियात और पार्लिमानी उमूर सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में शहर के ट्रैफिक, पार्किंग और सफाई इंतजाम को लेकर अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने खसूसी रास्तों पर सामान रखने और गैरकानूनी पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए। जनाब खन्ना ने कहा कि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पहले जुर्माना लगाया जाए, फिर भी खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठेला रेहड़ी वालों को वेंडिंग जोन में भेजने और सड़कों पर तजावजात को हटाने के भी अहकाम दिए। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज

0: के जरिए लेक्चरर ग्रेड के 18 मौजों के कुल 624 ओहदों के लिए दो रोजा तहरीरी इम्तिहान कल से शुरू हो गया। पहले रोज इम्तिहान दो मीटिंगों में मुनक़िद हुआ। इम्तिहान के मद्देनजर इंतजामिया अलर्ट रहा। आज इम्तिहान का दूसरा मरहला मुनक़िद हो रहा है। पहली मीटिंग में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान समेत 5 मौजों का इम्तिहान हो चुका है, जबकि दूसरी मीटिंग में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिन्दी और आर्ट समेत 4 मौजों का इम्तिहान मुनक़िद होगा। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही है। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में एक बच्चा और 2 खवातीन समेत 3 अफराद जां बहक हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकरा गया और पलट गया, जिसमें 3 अफराद दब गए और मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में 2 दीगर अफराद के जख्मी होने की भी खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के दरमियान चेन्नई में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के दरमियान रायपुर में 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज। न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH, DRM और वेब्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:15 हुए हैं। आज इतवार है। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी समस्या निदान केंद्र। लेखक हैं विनोद कुमार गौतम, प्रस्तुति मधुर श्रीवास्तव की।
3: अपनी समस्या हल करें। अरे वाह, समस्या हल करने का भी दफ्तर खुल गया। इससे बढ़कर खुशी की बात आज और क्या हो सकती है। क्यों ना लगे हाथ मेरी भी समस्या का हल हो जाए।
4: का हो हा? का देखत हो? आउते हो नहीं?
3: आ जाओ।
4: अरे यह कोनो पूछे की बात है, एकदम समुच्चा आ जाओ।
3: हाँ हाँ, आइए आइए आइए, वहां से आइए आइए आइए, पधारी पधारी। आप भी क्या कहेंगे, आ गया एकदम वन पीस। आपका साइन बोर्ड देखकर साहब बेहद खुशी हुई। अरे कम से कम लोगों की समस्या हल करने का दफ्तर तो खुला।
5: जी हाँ जी हाँ, ये दफ्तर जनसंख्या की तरह बढ़ती हुई जनता की जटिल समस्याओं को देखकर ही खोला गया है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ।
3: धन्यवाद साहब धन्यवाद। जरा 4-5 गिलास ठंडा पानी पिला दीजिए।
5: पानी जी अभी लीजिए। मंगरू, अरे मंगरू।
6: जी सर, आवत है।
4: का हो सरकार?
5: इन साहब के लिए गिनकर 5 गिलास ठंडा पानी ले आओ।
4: 5 गिलास? मुंह धोने खातिर सर।
5: अबे उल्लू का पट्टा, मुंह धोने के लिए नहीं, पीने के लिए, पीने के लिए, समझा?
4: साहेब, बर्फ वाला कि बिना बर्फ वाला?
3: बर्फ वाला ले आओ प्रभु। बर्फ वाला पानी मिल जाए फिर क्या कहना। अगर उसमें थोड़ी चीनी भी मिला दी जाती तो।
5: मंगरू, शरबत बना ला।
4: अभी लावत है सरकार।
5: आजकल प्यास कुछ ज्यादा लगती है और शरबत की भी जरूरत होती है।
4: ये लो, पिया शरबत है और कलेजा तड़ करो।
5: हाँ,

0: बताइए क्या समस्या है आपकी
1: जी। समस्या? अरे आपने समस्या तो हल कर दी साहब।
0: हल कर दी? अजी समस्या तो अभी तक हमने जानी ही नहीं, हल कैसे कर दी?
1: दरअसल मेरी समस्या ये थी डॉक्टर साहब कि सामने वाले पिक्चर हॉल में मुझे पिक्चर देखनी थी
0: जी।
1: शो खत्म नहीं हुआ था, अब शो खत्म होने तक इस चिलचिलाती धूप में मैं कहाँ मारा मारा फिरता। बाहर समस्या निदान केंद्र का आपका बोर्ड पड़ ही रहा था तो आपके नौकर ने अंदर बुला लिया और मेरी समस्या हल हो गई। देखिए ये पिक्चर भी छूट गई। चलो नमस्ते।
0: ये तो बेवकूफ बना गया ससुरा।
2: इम्मा सोचे का क्या बात है मालिक, रोज आप हो तो सबका बेवकूफ बनावत हो। अरे आज नहला बदला सही।
0: ओहो चुप
2: साहेब।
0: हाँ।
2: टूसनपुर का आएगा वहाँ।
3: हाँ? अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आपका शुभ नाम?
3: मोहम्मद अली सिंह।
0: मोहम्मद अली सिंह, ये कैसा अटपटा नाम है। आप किस कौम से ताल्लुक रखते हैं, हिंदू या मुसलमान?
3: जी जी मैं दोनों हूँ।
0: क्या मतलब?
3: दरअसल मेरे बाप हिंदू हैं और चचा मुसलमान, दोनों के बीच मैं अकेला वारिस हूँ ना, इसलिए साहब मैं हिंदू भी हूँ और मुसलमान भी।
0: फिर इसमें समस्या क्या है?
3: समस्या ये नहीं है जनाब, दरअसल समस्या दूसरी है। मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है।
0: मोहब्बत? बहुत खूब बहुत खूब। अरे ये तो बेहद खुशी की बात है। लड़की का नाम?
3: यही तो समस्या है साहब, मैं उसका नाम नहीं जानता।
0: नाम नहीं जानते? पहली समस्या, आगे बोलो।
3: वो बहुत खूबसूरत है जनाब, इतनी कि अरे अरे अरे
0: अरे आगे बोलो आगे।
3: मैं उसे बहुत चाहता हूँ।
0: और लड़की?
3: यही तो समस्या है हुजूर, कि मुझे देखते ही वो आग बबूला हो जाती है।
0: दूसरी समस्या, उस लड़की से तुम्हारी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई?
3: पहली बार वो मुझे सब्जी की दुकान पर मिली थी, आंखें चार होते ही दिल पर बिजली गिरी। क्या आंखें थी उसकी, आए, आए, आए।
0: सुईवा फिर फंस गई साहेब।
4: अबे तू चुप रह।
0: हाँ तो जनाब, आपने अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह किया?
3: यही तो समस्या है साहेब, जब भी मैंने उससे बात करने की कोशिश की तब उसने मुझे खूर खूर कर इस तरह देखा जैसे मैं इंसान नहीं चिड़ियाघर से भागा कोई जानवर हूं।
2: बिना दुम के साहेब।
0: तू चुप रह। हाँ मिस्टर, आपकी समस्या काफी गंभीर है, आप चाहते क्या हो ये बताइए।
3: उसका दिल जीतना।
0: ठीक है, उसके दिल पर तुम्हें कब्जा दिला दिया जाएगा, पर 75 रुपए लगेंगे, समझे?
3: साहब 80 ले लीजिए, लेकिन लेकिन मेरी समस्या सुलझा दीजिए।
0: अभी लीजिए, प्रेम पत्र लिखना जानते हो?
3: जी जी नहीं, अभी तक मैंने प्रेम पत्र कभी नहीं लिखा।
0: फिर क्या मोहब्बत की खाक? पत्र में लिखो, सेवा में सविनय निवेदन है कि प्रार्थी मोहम्मद अली सिंह वल्द वल्द
3: प्रभु सिंह।
0: हाँ वल्द प्रभु सिंह, ग्राम
3: व पोस्ट बखेड़ापुर, जिला चौपटाबाद।
0: हाँ, चौपटाबाद का स्थायी निवासी हूँ। प्रार्थी ने आपको सब्जी की दुकान पर देखा और देखते ही उसको आपसे एक तरफा मोहब्बत यानी बेलौस मोहब्बत हो गई है, जिससे उसका दोनों वक्त का खाना नाश्ता चाय आदि सब छूट गया है। चुनांचे महोदया जी से गुजारिश है कि प्रार्थी की पेचीदा समस्याओं को देखते हुए उसे 21 जून से 20 जुलाई तक इजहार मोहब्बत का मौका अदा करने का कर्म करें।
3: 21 जून से 20 जुलाई तक, ये तो बहुत कम है साहब, मैं ताज जिंदगी उसकी मोहब्बत पाना चाहता हूँ।
0: ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ मैं क्या बोल रहा था कि प्रार्थी की जटिल समस्याओं को देखते हुए, हाँ आगे लिखिए, उसे ता जिंदगी अपनी मोहब्बत की इजाजत दें, प्रार्थी मोहम्मद अली सिंह।
3: वाह वाह साहब, क्या मोहब्बत नामा लिखा।

0: आया है। दिल खुश हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नमस्ते।
1: अरे सुनो तो मेरी फीस तो देते जाओ।
0: नेक काम के लिए फीस तो हमेशा ऊपर वाला देता है, बिल्कुल फिक्र न कीजिए, मिलेगी, जरूर मिलेगी आपकी फीस।
1: अरे अरे सुनिए तो, ओ, ये भी चुना दे गया उल्लू का पट्टो, 75 रुपया घाटा।
2: आज बोलिए ठीक नहीं भाई साहेब,
1: बिना मतलब तू बीच में मत बोला कर, घर का काम देख।
3: गुड आफ्टरनून सर।
2: हाँ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, प्लीज टेक योर चेयर एंड बी इजी।
3: थैंक यू, लेकिन इस प्रॉब्लम के रहते हम इजी कैसे हो सकता है सर?
2: डोंट वरी, प्रॉब्लम हम फेस करेगा, फिनिश। फिकर मत करो, अपना प्रॉब्लम बताओ मैडम, किस जाल में फंस गई हो?
3: जाल में हम नहीं डॉक्टर, हमारा दिल फंस गया है। हम एक बॉय से लव करता, वेरी स्मार्ट, वेरी हैंडसम बॉय, बिल्कुल तुम्हारा माफिक, बुल की तरह।
1: बुल बुल यानी बैल। वो करता क्या है मैडम?
3: वो रोज मॉर्निंग इवनिंग में हमारा खिड़की के सामने खड़ा होकर सीटी बजाता है।
2: वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी शुरुआत है। और आप क्या करती है मैडम?
3: यही तो प्रॉब्लम है सर, जब हम खिड़की पर जाना मांगता, हमारी मम्मी विलेन की माफिक पहले ही वहाँ आ जाता और खिड़की को हवालात का डोर का माफिक बंद कर देता।
2: समस्या काफी गंभीर है, आप चाहती क्या हो मैडम?
3: हम उसे लव बनाना मांगता, शादी बनाना मांगता।
2: उसका नाम क्या है?
3: प्यारे।
2: वा, वा, वा, वा, वा, वा, वा, क्या नाम है प्यारे? और आपका क्या नाम है मिसेज?
3: मिसेज नहीं सर।
2: हाँ मिस मिस
3: प्यारी।
2: प्यारी कितना स्वीट नाम है।
3: सर हाँ? आपने मुझे प्यारी कहा, एक बार फिर से कहो ना, तुम कितना स्वीट बोलता है।
2: हाय प्यारी।
3: यू शट अप, हम तुमको कहने को बोला?
1: अबे चुप, बदमाश देखता नहीं, कितना सीरियस केस आया है।
2: वो तो कब्बा से देखे थे माली।
1: मंगरू, मैं कहता हूँ मंगरू।
3: आपका ये सर्वेंट बहुत नॉटी लगता।
2: एमएम साहब, मेडपी की तरफ छोड़ के तू हऊ है नाटी नाटा, हम का बोला तू?
3: तुम हमको मेन के बोला।
1: मंगरू, मैं कहता हूँ तू अपना मुंह बंद कर ले, वरना मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। चुप हो जाइए मिस
3: प्यारी।
1: प्यारी मिस प्यारी। आप ये बताइए कि जिसे आप पाना चाहती हैं, वो आपकी खिड़की के सामने सीटी बजाने के अलावा और भी कुछ करता है? आई मीन कहीं काम धंधा करता है?
3: यही तो हमारा प्रॉब्लम है सर, वो काम धाम कुछ नहीं करता, फिर भी हम उससे लव करता, मगर हमारा मम्मी बीच में टांग अड़ाता, कहता है अनएम्प्लॉयड से हम तुम्हारा शादी नहीं बनाएगा।
1: उस लड़के की बेरोजगारी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर दो। अरे फिर तुम्हारा मम्मी क्या, मम्मी का बाप भी तुम्हारा शादी बनाएगा।
3: लेकिन सर हमारा मम्मी का बाप तो हेवन चला गया है, वो कैसे आएगा?
1: आएगा आएगा, तुम फिकर मत करो, हम उसे कोर्ट का समन भेज कर बुलाएगा। अच्छा आप हमारा फीस निकालो, फीस
3: कुछ करना है सर, हम बाद में दे जाएगा।
2: नियावा हम भजा दे।
3: यू शट अप।
1: सुनिए तो, अरे सुनिए तो
2: साहेब, बिना सुई दवाई के कोनो डबल न दे यहाँ।
1: मंगरू, इस बार अगर बोला तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। हाँ
4: सलाम सलाम डॉक्टर साहब।
1: सलाम सलाम, कहिए कहिए।
4: बात ये साहब, मैं उससे बहुत परेशान हूँ साहब।
1: वो तो आपकी शक्ल ही बता रही है, बोलिए क्यों परेशान है?
4: जी जी, चुड़ैल ने मुझे परेशान कर रखा है।
2: चुड़ैल? बाप रे,
4: कुछ कुछ उपाय कीजिए, कुछ उपाय कीजिए, वरना मेरी जान ले लेगी। श्रीमान
1: जी, आप किसी ओझा तांत्रिक के पास जाइए, वही छुटकारा दिला सकते हैं आपको।
4: ओझा तांत्रिक? लेकिन मैं तो किसी ओझा तांत्रिक को नहीं जानता साहब। अब आप ही कुछ उपाय कीजिए जल्दी से, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ साहब।
1: अजीब आदमी है, मैंने कहा ना ये समस्या निदान केंद्र है। चुड़ैल

0: हराओ केंद्र नहीं।
1: अरे बाप रे, अरे बाप रे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे अरे अरे वो देखी, अरे देखे साहब, वो आ गई साहब, वो आ गई, अंदर आ गई साहब। बाप रे बाप, मुझे बचाइए साहब, मुझे बचाइए।
0: अरे बुरे फंसे, इसने तो अच्छी मुसीबत में डाल दिया। हे बजरंग बली, रक्षा करो। हे पवन पुत्र, संकट से उबारो।
2: यहाँ आकर छुपे हो, अब आए हो पकड़ में बच्चे। देखो आज कैसी खबर लेती हूँ तुम्हारी।
1: ए दुर्गम आता, रक्षा करो। बजरंगी बली, बचाओ बचाओ बचाओ।
0: आप क्यों इनके पीछे पड़ी हैं?
2: तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले जी?
0: ये हमारे क्लाइंट हैं।
2: अच्छा, तो तुम्ही ने इनका दिमाग खराब कर रखा है। अब समझ में आया कि घर से क्यों गोल रहते हैं?
0: आप गलत समझ रही हैं श्रीमती जी। ये हमारे यहाँ पहली बार आए हैं समस्या लेकर।
2: समस्या? कैसी समस्या?
0: आप इनका पीछा छोड़ दीजिए।
2: पीछा छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? तुम कौन होते हो पीछा छोड़ाने वाले?
0: आपको नहीं मालूम, मैं समस्या विशेषज्ञ, लोगों की समस्याओं का निदान करता हूँ।
2: अच्छा, तो तुम लोगों की समस्याएं हल करते हो, तो जरा अपनी समस्या तो हल कर मुए बदमाश।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रही है? क्या क्या कर रही है?
1: अरे भागो, अरे भागो, अरे रोगी छोड़कर तुमने कपाल में पत्थर ही होते। अरे वो है, भागो भागो।
2: क्या कहा? अरे छोड़ो, रुको, छोड़ो, सब तेरी आकर दुरुस्त करती हूँ।
3: समस्या निदान केंद्र, अभी आप सुन रहे थे ये झलकी। लेखक थे विनोद कुमार गौतम, भाग लेने वाले कलाकार पालो कुमार, श्री प्रकाश वाजपेयी, शांति स्वरूप प्रधान, सतीश चित्रवंशी, प्रतिमा टिक्कू, सुरेंद्र सिंह और मीनू रानी दुबे। प्रस्तुति मधुर श्रीवास्तव की थी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग।

कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोताओं आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस यानी मदर्स डे है, इस मौके की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। वो एक शेर है कि वरना अनजान शहर लगता है, माँ जो होती है तो घर लगता है। जीवन में शिक्षा और संस्कार की पहली पाठशाला माँ होती है, इस भावना को नमन और इसकी प्रतिष्ठा का दिन है आज।

लोक रंग कार्यक्रम में आज शामिल कलाकारों के नाम हम आपको बता रहे हैं। दीनानाथ, काजोल बाल्मीकि और मासूम अली। 7905519981 ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको संदेश भेजना है। सबसे पहले कलाकार का नाम जरूर लिखें ताकि उनके लोकगीत के साथ आपका नाम शामिल हो सके, यानी आपकी फरमाइश पूरी हो सके। वक्त रहते यानी 2:15 बजे तक अपने संदेश हमें भेज दें ताकि आपके नाम शामिल हो जाएं कार्यक्रम में। कलाकारों के नाम दोहरा रहे हैं, दीनानाथ, काजोल बाल्मीकि और मासूम अली। सेवन नाइन जीरो फाइव फाइव वन नाइन नाइन एट वन यानी 7905519981 ये नंबर है हमारे केंद्र से व्हाट्सएप पर आधारित जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके लिए।

इन कलाकारों के लोकगीत के लिए बहुत सारी फरमाइशें आपकी आ चुकी हैं। हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं कि आप प्रोग्राम में बने रहते हैं, इंतजार करते हैं और फिल्मों के या फिर कलाकारों के नाम बताते ही आपकी फरमाइशें हमारे कंप्यूटर स्क्रीन तक पहुंच जाती हैं।

0: में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: It's another six.
2: रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया?
3: मैच तो गया।
2: पेमेंट कैसे करेंगे?
4: टोकनाइज कार्ड से।
3: टोकन?
4: हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट, वही सुविधा अधिक सुरक्षित।
3: ऑलराउंडर
4: ओके भाई। RBI कहता है कि
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आज इस कार्यक्रम में शामिल कलाकारों के नाम है दीनानाथ, काजोल बाल्मीकि और मासूम अली। 7905519981 ये प्रोग्राम का नंबर है और बहुत सारी फरमाइशें आपकी आ चुकी हैं। इस विदेशिया के लिए कलाकार हैं दीनानाथ। आइए कार्यक्रम का आरंभ इस लोकगीत के साथ करते हैं।

दीनानाथ के स्वर में ये लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। फरमाइशें आप सबकी आई हैं। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, शुभम धीमान, प्रियंका, कोमल आंचल, चिराग और उनके परिवार के बाकी सदस्य। ये फरमाइश है आशीष कुमार की महरेओं जौनपुर से आई हुई। मोनू पासवान, पुतुल पासवान, अतुल पासवान, बनकू बादल और कनक पासवान हैं बखारीपुर मोहम्मदाबाद गाजीपुर के हमारे श्रोता। जमानिया गाजीपुर से व्हाट्सएप संदेश आया है। सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का। गमरिया जमशेदपुर से हैं विपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल आशुतोष और अभिनव जायसवाल। दिलदारनगर गांव पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर के श्रोता हैं जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह। गमरिया जमशेदपुर से ये संदेश रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल का। बबरी बाजार चंदौली से हैं विजय और सरोज जायसवाल। रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती जायसवाल। चकिया बाजार चंदौली से सुंदर और सुमन जायसवाल। दिनारा रोहतास से हमें सुन रहे हैं प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, सौरभ कुमार, अर्पित कुमार, हर्षित कुमार, हनी, आदर्श, आलोक और हर्ष। फरासी हिसार से ये संदेश राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी का। आप हैं जलालाबाद वेस्ट के हमारे श्रोता। सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता हुजा। मुबारकपुर उची तक आजमगढ़ के श्रोता हैं दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना और हसीना दिलशाद। हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता की फरमाइश नथाना पंजाब से आई है। आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, धनेश्वरी वर्मा, ज्योति, प्रहलाद वर्मा, राजेंद्र माधव वर्मा, बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से। सूर्यभान सिंह, बिसुंदरी घोरावल, सोनभद्र के हमारे श्रोता हैं, शुक्रिया आपका। पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि और अश्विन शाह, साथ में मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से हमें सुन रहे हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, आशीष राजा, चेतन मस्कीन और साथ में चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशु और रिधान खुराना। लालमदा सुदामा नगर, रटलाई, झालावाड़, राजस्थान के हमारे श्रोता हैं हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। बागरी मोहल्ला रटलाई झालावाड़ राजस्थान से नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और हुंदी बाई बागरी। देवशंकर तामूरिया और अजय देव तामूरिया, साथ में तुषार देव तामूरिया, डोंडी लोहारा बालूद छत्तीसगढ़ से। भोपाली यवतमाल के श्रोता हैं जयराम सिंगड़कर और दिशांत कुमार सिंगड़कर। ये फरमाइश है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और ईशान छिपा की भोपालगढ़ राजस्थान से। आरजू बानो, आलिया बानो, नेहा बानो, सिमरन बानो, सना बानो, सानिया बानो, मनीषा बानो और गुड़िया बानो है नगर पंचायत गंगापुर गोला बाजार से। जगमाल सिंह डकला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक हमें सुन रहे हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से।

इसमें आपने बहुत सारे नाम लिखे हैं, अब ये कलाकारों के नाम हैं या फिर आपके नाम हैं, बहरहाल ये सारे नाम, क्योंकि इसमें जो कलाकार आपने लिखे हैं वो आज नहीं है, तो आज नहीं यानी आज इस कार्यक्रम में नहीं है, लेकिन आपका खुद का नाम इसमें नहीं दिख रहा है। बहरहाल आपकी डीपी से पता चलता है सोनू बिंद आपका नाम है, तो शुक्रिया, लेकिन नाम जरूर लिखें। आइए कार्यक्रम का अगला लोकगीत सुनते हैं।

ये झूमर आप तक पहुंच रहा था, कलाकार थी काजोल वाल्मीकि। फरमाइशें आप सबकी आई हैं। पटेल नगर मुगलसराय के हमारे श्रोता हैं सुनील कुमार सिंह, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की फरमाइश पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से आई है। बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, निहारिका और योगेंद्र कुमार चिंडालिया हैं लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा के श्रोता। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड के हमारे श्रोता हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से हमें सुन रहे हैं राजू कुमार, बिट्टू कुमारी, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदनी कुमारी, शुक्रिया आप सभी का। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा की फरमाइश दतनेगी भाटापारा से आई है। इसी लोकगीत को सुनना चाहा राधेश्याम यादव ने नगदिलपुर गाजीपुर से। श्री गोपाल गिरी, रमेश गिरी, इंदु गिरी, विकास गिरी, विशाल गिरी हैं गाजीपुर से। कोटवाना

नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया के श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहाने वादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। संतोष कुमार राव, भारती राव और बेलाबाई सिंह है उमरिया मध्य प्रदेश से। राहुल खुराना, रजता खुराना, केशु और रिधान खुराना है पंचकुला चंडीगढ़ से। हमारे यहाँ श्रोता क्लबों के नाम न दिया करें। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित और बेबी गर्मी है सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से। कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन, सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता। पंकज सिंह, चंचल सिंह, राशिका सिंह, आकृति सिंह और वंशराज सिंह है भूर चौराहा बुलंदशहर से। शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान की फरमाइश बाबा कुटीर रायगढ़ से आई हुई है। गणेशपुर, शिवपुर, वाराणसी से हैं संतोष कुमार, अशोक कुमार, मनोज कुमार और सनोज प्रजापति। विजय यादव, बिंदु यादव, प्रतीक यादव और अमोघ साथ में वैदेही, ग्राम पोस्ट रैदा आजमगढ़ से आपकी फरमाइश आई है। छत्तीसगढ़ हसदा से हैं कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू, इसी लोगी की फरमाइश। पंचम कुमार, कुमारी गुंजा, नेहा, निधि और कुमारी कुसुम की आई है चंदौली से, ग्राम पोस्ट आरंगी, थाना कंदवा। एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और बेबी नुसरा खान है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। शेर के साथ मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। बहुत खूब और शुक्रिया आपको। जवाहर नगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। परवेज अहमद हमें सुन रहे हैं शुक्लपुरा वाराणसी से, शुक्रिया आपका भी। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण और तरुण चौहान। और अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, ये पूर्वी मासूम अली की आवाज में।

और बहुत शुरुआत में ही इस लोकगीत के लिए फरमाइश भेजी है हमारे बेहद नियमित श्रोता पहाड़ी अशोक विहार कॉलोनी फेज दो से अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अंकुश कुमार गुप्ता और पूजा गुप्ता गौंड ने। शुक्रिया आपका।

0: इस पूर्वी के लिए जिसमें आवाज मासूम अली की आप तक पहुंच रही है, फरमाइशें आप सब की आई हुई हैं। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू और सुजाता साहू, कौशल जायसवाल अतुल जायसवाल हैं, बरई पार मछली शहर से साथ में शशिधर पाल भी, प्रमोद कुमार साहू बीमा और वैभवी की फरमाइश, बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से आई हुई है। आप हैं डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये, राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि अनुराग दीप और भागल यादव, आप सभी का स्वागत हम कर रहे हैं और शुक्रिया आपका। अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति की फरमाइश कुरौता वाराणसी से आई है। मृति यादव है ग्राम बरठी सकलडीहा चंदौली से, शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल और मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू और माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा और पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद और पिंकी जायसवाल की फरमाइश। आप हैं चोचकपुर गाजीपुर से हमारे श्रोता भास्कर दुबे और राम सकल चौधरी, शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप की ये फरमाइश आई है पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा झारखंड से, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता, विशाल मिश्रा बधवा बाजार माधोपुर इमिलिया से हमें सुन रहे हैं, रमेश कुमार विश्वकर्मा, पूनम विश्वकर्मा, प्रियांशु प्रीत प्रांजल हैं मेहदीगंज मड़ई राजा तालाब वाराणसी से, कमल बालूजा और मधु बालूजा की फरमाइश सतना से आई हुई है, सिद्धार्थनगर दरियापुर से हैं गजानन येले और नवदीप येले, सुनील पाठक अनारकली बाजार जगराव पंजाब से साथ में कमल पाठक और दीपिका मल्होत्रा, ये फरमाइश नारी पच देवरा डी बाबा चौराहा से, अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा और उनके माता पिता, सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर के श्रोता है, अनिश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर, आकर्ष राजभर, जयराम बीन, सीता मुनि देवी, लालसा कुमारी और काजल कुमारी की फरमाइश चौसा गोला बक्सर से आई है। सारंग छपरा खड्डा कुशीनगर के हमारे श्रोता हैं श्याम सुंदर यादव, ऋषु मौर्य हमें सुन रहे हैं जौनपुर से, दीपक पासवान और पल्लू पासवान, निशु और धनंजय पासवान के नाम के साथ बखारीपुर मोहम्मदाबाद से, रविन्द्र सिंह, रमन कुमार, जयंत कुमार देवरिया, नुआ और रामगढ़ कैमूर से हमें सुन रहे हैं, बाबू यादव, मनशा यादव, दुर्गेश यादव हैं सारनाथ देवकी विहार कॉलोनी वाराणसी से, श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य की फरमाइश गोला बाजार बक्सर से आई है, अनीस फातमा और कनीज जहरा की फरमाइश मुबारकपुर तकिया आजमगढ़ से, आप हैं सोनू बिंद, राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती की फरमाइश वालिदपुर मढ़ा मऊ से, कमल बालूजा, मधु बालूजा की फरमाइश आई है मजनू का टीला दिल्ली से। तो श्रोताओं, ये थी आज आपकी फरमाइशें और इसी लोकगीत के साथ अब आज का ये प्रोग्राम यानी लोकरंग समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आज के दिन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: Good afternoon.

0: This is Akashvani, and I'm Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with nine ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉल्ड फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया थ्रू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ एम्पावरमेंट एंड इनर वेलबींग
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है
0: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on Mental Well-being, Rural Development, Nature Conservation and Social Transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
1: भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें गेम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है
0: Attacking Congress, the Prime Minister accused the party of opposing the Nari Vandan Sanshodhan Bill in Parliament.
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी बड़ा खेल चला करता था बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया लेकिन साथियों कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया
0: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will

0: से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलकवेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनुम नान तमिलनाडु अरसिन मुदलमेच्चर एन्र मुरैयिल एनदु गवनत्तिर्कुल्लावदुम तेरियवरुवदुमान एन्द पोरुलैयुम முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के

0: अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरकुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि NDA का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
1: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और NDA का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। NDA सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभात पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेन

0: 2003 में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कार्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडीवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नैना और लेकर हाजिर हूं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, गदर 2001 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने और निर्माण नितिन केनी ने किया था। इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म को 15 जून 2001 को सिनेमा घरों में पहली बार दिखाया गया। इस फिल्म में सनी देओल को उनके शर्मीले किरदार के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार हेतु नामांकित भी किया गया था। इसका दूसरा भाग 11 अगस्त 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुका है। इस फिल्म को बनाने में लगभग 11.5 से लेकर 9 करोड़ रुपए लगे हैं। फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद यह भारत के सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। उस समय की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्मों में दूसरी हिंदी फिल्म बन गई। इस फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की। तो दोस्तों, कार्यक्रम में गदर फिल्म का यह गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

गदर फिल्म की कहानी की बात करें तो दोस्तों, यह तारा सिंह यानी कि सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है। इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहता है और इसी दौरान वह पिछले समय को याद करते रहता है जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बनना चाहता था पर उसे मौका नहीं मिलता था। जब वह सकीना और उसके दोस्त से मिलता है तो वह लोग उसे बेवकूफ़ बनाते हैं। और सकीना एक संगीत शिक्षिका है। तारा को बाद में पता चलता है कि वह कोई शिक्षिका नहीं बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक विद्यार्थी है। सकीना उसकी गायकी से काफी प्रभावित रहती है और अपने कॉलेज में हो रहे संगीत समारोह में अपने जगह पर तारा को गाने का मौका देती है। तारा के ये गाने से सभी प्रभावित होते हैं। सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कहकर घर चले जाती है। अब इस समारोह में जो गीत तारा ने गाया था, आइए सुनवाते हैं आप सभी को यह गीत।

गदर फिल्म में कहानी आगे बताते हैं और बताते हैं कि तारा उसे यानी सकीना को अपने घर ले आया है वर्तमान में और उसे किसी तरह अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उस दंगे में उसके माता पिता नहीं बचे। बाद में धीरे धीरे सकीना तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उनका एक छोटा प्यारा सा बेटा भी होता है जिसका नाम वो लोग जीते रखते हैं। उनका जीवन काफी अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन सकीना की नज़र पुराने अखबार पर पड़ती है जिसमें उसके पिता होते हैं, वो जीवित होते हैं और लाहौर में मेयर होते हैं। उनके पिता का किरदार अमरीश पुरी ने निभाया है। वह अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास में कॉल करती है और वह उसके लाहौर आने के लिए विमान का इंतजाम करता है। हालांकि तारा और उसके बेटे भी साथ में जाने वाले होते हैं, लेकिन वीजा के परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जा

पाती है। वहां जाने के बाद सकीना वापस आने की बात कहती है तो उसके माता पिता मना कर देते हैं, जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी कराने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसके बेटे पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी जबरदस्ती कराई जा रही है। वे लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने दो शर्त रखते हैं कि उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम में परिवर्तित होना होगा। अशरफ अली को लगता है, अशरफ अली यानी कि अमरीश पुरी को लगता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वह दोनों शर्त मान लेता है। इसके बाद वह तारा से अपने देश का अपमान करने को कहता है ताकि पता चल सके वह सच्चा पाकिस्तानी है। तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ द्वारा नियुक्त किए हुए हमलावर जो उसे मारने वाले होते हैं उन्हें मार देता है। वे तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह जाकर छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिल जाता है जो भारत जाने वाली होती है। वे लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब अशरफ को यह पता चल जाता है कि कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। उसी दौरान सकीना को अपने पिता से गोली लग जाती है। अस्पताल में सकीना कोमे में चले जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो फिल्म में दिखाया जाता है कि अशरफ अपनी नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वे लोग वापस भारत लौट जाते हैं। इस तरीके से फिल्म में हैप्पी एंडिंग यानी कि अंत भला तो सब भला दिखाया गया है। आइए सुनवाते हैं आपको इसी फिल्म का एक और गीत।

इस फिल्म में मुख्य कलाकार तारा सिंह के तौर पर सनी देओल, सकीना अली के तौर पर अमीषा पटेल, अशरफ अली सकीना के पिता अमरीश पुरी, सबाना अली जिसे लिटिन डुबे सकीना की माँ, दरमियान सिंह विवेक शौक तारा के दोस्त और चरणजीत उत्कर्ष शर्मा जो कि सकीना और तारा के बेटे हैं। इस तरीके से कई दिग्गज कलाकारों ने इस फिल्म में अपना योगदान दिया। यह फिल्म आज भी हम भारतीयों के दिलों में राज करती है। हम दर्शकों के लिए यह फिल्म आज भी बहुत अनमोल है। कहानी कह रहे हैं ओम पुरी और संगीत लिखा था आनंद बख्शी ने और गीत से सजाया था उत्तम सिंह ने। इस फिल्म में गायक कलाकार हैं उदित नारायण, अयाज चक्रवर्ती, परवीन सुल्ताना, प्रीति उत्तम और अलका याग्निक। इस फिल्म की जितनी भी तारीफ करें वो कम है। कुछ फिल्में हमारे जीवन में, हमारे स्मरण में हमेशा रहती हैं। उन्हीं फिल्मों में से एक है गदर एक प्रेम कथा। आइए सुनते हैं इसी फिल्म से एक और गीत।

यह फिल्म 2001 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और अपने समय की सफल फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म ने अपने नाम पर काफ़ी पुरस्कारों

0: को दर्ज कराया, जैसे फिल्म फेयर बेस्ट एक्शन अवार्ड टीनू वर्मा को, फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अमीशा पटेल, स्टार स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सनी देओल, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जी सिने विशेष पुरस्कार पुरुष सनी देओल को मिला, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सनी देओल को मिला, IIFA बेस्ट मूवी अवार्ड नितिन कैनी को दिया गया, नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने पुरस्कार अमरीश पुरी को सम्मानित किया गया, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए अनिल शर्मा को जी सिने पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फिल्म
1: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे फिल्म गदर पर आधारित कार्यक्रम, प्रस्तुति नैना वाल्मीकि थी। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम वेब्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं, आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। शाम के 5:39 हुए हैं, बच्चे अपना कार्यक्रम सुने बाल गोपाल।
1: बचवा बोला जय हिंद। बचवा लोग हम देखा आज जुट गई या फिर से बाल गोपाल कार्यक्रम में। बचवा लोग भी जोहल कराना कि कहिया आतवार आई या 5 बजी तो बाल गोपाल हुई।

0: तो बढ़िया बढ़िया जानकारी मिली, बाल गीत हुई। तो देखें आज एक विषय पर चर्चा हुई, विशेष करके एक गर्मी में होकर ज़्यादा महत्व है, वह कि स्वच्छ पेयजल का प्रयोग करें बच्चों लोगन, बहुत जरूरी है। भोजन तनी से कम मिली, राशन तनी से कम मिली, खाना खराई मारे के तनी कम मिली तो चल जाई, लेकिन अगर पानी गंदा अगर पी लेवा जाए तो निश्चित रूप से जाना कि कहीं ना कहीं तबीयत खराब होए का बहुत ज़्यादा संभावना हो जाए। ऐसे हमेशा ध्यान रखें कि पानी जब भी पिए शुद्ध पिए, काहे कि अशुद्ध पानी पेट में आंतन के बहुत नुकसान पहुंचावला और बीमारी का सबसे बड़ा कारण होला अशुद्ध पानी, गंदा पानी। तो कोशिश ही रखें कि हमेशा ताज़ा पानी पिए, चापाकल का पिए। अगर आपके घर में हैंड पंप हो तो जरूर से चापाकल का पानी का प्रयोग करें, बासी पानी पिए से बचें। कोशिश ही रहे कि अगर हमान गंदा पानी कहीं से अगर ओकर आगमन नल के माध्यम से या कहीं जहां हमन रहत है जा वहाँ, तो ओकर जरूर उपाय करें, ओकर समाधान करें कि कैसे पानी साफ मिले पिए बदे। कहे दे कि स्वच्छ पेयजल ही स्वस्थ शरीर का परिचायक है, पानी गंदा रही तो बीमारी का बहुत ज़्यादा आशंका रही। देखें आज वार्ता के क्रम में हमन बहुत विशेष जानकारी सुनल जाई, एक दो बेरी सुन चुकल है जाए, लेकिन वैज्ञानिक तकनीक का कितना उपयोग सही होए के चाहिए। देखें कहल जाला कि दाल में अगर नमक पड़ल तो बहुत बढ़िया, ना पड़ल तो बेस्वाद हो जाई, लेकिन ज़्यादा हो जाई तो खवाई ना। वैसे ही वैज्ञानिक तकनीक का अगर सही प्रयोग हो तो निश्चित रूप से भविष्य उज्ज्वल हुई। एकरे बदे विशेष जानकारी देता हूँ शैलेश चौरसिया भैया, आवा सुनल जा वैज्ञानिक तकनीक और उसका सही उपयोग।
1: मेरे प्यारे प्यारे बाल गोपाल, आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। परीक्षा परिणाम आ गए हैं। आप सभी अच्छे अंकों के साथ आगे की कक्षा में प्रवेश भी ले चुके होंगे। कुछ बाल गोपाल के तो आगे की कक्षा की पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई है। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। खूब मन लगा के पढ़िए, आप देश के भविष्य हैं। लेकिन बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ आपको समसामयिक विषयों की जानकारी से भी लगातार रूबरू होते रहना चाहिए। देश दुनिया में हो रही खोज पर पैनी नजर रखनी चाहिए। अपने बाल गोपाल के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आज हम एक नए विषय के साथ आपके लोकप्रिय कार्यक्रम बाल गोपाल में हाजिर हुए हैं। तो आपको जिज्ञासा होगी, आप विषय जानना चाहेंगे। जी बच्चों, आज का विषय है वैज्ञानिक तकनीक और उसका सही उपयोग। आज के विषय में आपको मैं ढेरों बातें बताऊंगा और आपके मन में उठने वाली जिज्ञासाओं को शांत भी करेंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से विषय पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। मेरे होनहार बाल गोपाल, आप सभी वैज्ञानिक सबसे तो परिचित हैं ही। विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करके नई खोज करने वाला व्यक्ति ही वैज्ञानिक कहलाता है। आप अवश्य जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक तकनीक है क्या। ये शब्द हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन बेहद जिज्ञासु शब्द है। बच्चों, वैज्ञानिक तकनीक का अर्थ है किसी वैज्ञानिक प्रश्न का उत्तर देने या किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए एक अति व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग करके सार्थक एवं विश्वसनीय परिणाम तक किसी भी खोज को पहुंचाना। यानी खोजकर्ता या अनुसंधानकर्ता, जिसे आप वैज्ञानिक कहते हैं, वह विषय पर शोध करके निष्कर्ष का पूर्णतः अवलोकन करके परिणाम के प्रयोग और उसका डेटा विश्लेषण के साथ आप सभी के बीच प्रस्तुत करता है, वही वैज्ञानिक तकनीक है। बच्चों, वैज्ञानिक तकनीक को वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उपयोग जानकारी प्राप्त करने या विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका सही उपयोग ज्ञान और विकास को बढ़ावा देता है। जब आप किसी वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से किसी भी विषय पे कार्य करते हैं या अमल में लाते हैं या फिर कोई प्रयोग करते हैं, तो वह आपके लिए बेहद लाभकारी होता है। गलत उपयोग नुकसानदेह भी हो सकता है। इस वजह से आप सभी नन्हे मुन्नों से मेरा निवेदन है कि वो जो भी वैज्ञानिक तकनीकी का परिणाम उन्हें मिले, उस पर सोच के विचार

के समझ के या किसी वरिष्ठ जनों से बात करके ही उसको अमल में ले आए। बच्चों, वैज्ञानिक तकनीकी किसी वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने या वांछित सामग्री या उत्पाद प्राप्त करने की एक व्यवस्थित व्यवस्था भी मानी जाती है। वैज्ञानिक तकनीक को कई अलग अलग समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे तैयारी तकनीक, विकास तकनीक, शुद्धिकरण तकनीक, मापन तकनीक, विश्लेषण तकनीक, लक्षण वर्णन तकनीक, विश्लेषण तकनीक, इमेजिंग तकनीक, जैसे अनेक समूह होते हैं। उन्हें अलग अलग नाम से भी आप पुकार और संबोधित कर सकते हैं। बच्चों, वैसे तो वैज्ञानिक तकनीक दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन यहां दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तकनीक का अर्थ है किसी काम को करने का एक बेहतर मापदंड या तरीका, या यह कह लें कि विशेष ज्ञान और कौशल का उपयोग करके कोई काम करना। यह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे विज्ञान, इंजीनियरिंग या कला। तकनीकी शब्द किसी खास क्षेत्र में उपयोग होने वाला शब्द या अवधारणा नहीं हो सकता। तकनीकी एक व्यापक शब्द है जो किसी काम को करने के तरीके, विशेष ज्ञान और कौशल और किसी क्षेत्र में संबंधित शब्दावली का वर्णन भी करता है। मेरे बच्चों, तकनीक की भूमिका पर अगर आप सभी के साथ चर्चा करें तो तकनीक की प्रगति ने जीवन के हर पहलू को आगे बढ़ाया है। तकनीक ने हमारे काम करने, संवाद करने, सोचने, सीखने, आजीविका कमाने और अवकाश में समय बिताने के तरीके को भी बदल दिया है। इसने कठिन कार्यों को पूरा करने में सहायता करके रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद की है। बच्चों, तकनीकी आज हमारे जीवन का आधार बन चुकी है। इसका सही उपयोग हमारे जीवन को बेहद सुखद बना सकता है। अगर आप नन्हे मुन्ने तकनीक का प्रयोग संभल कर करें तो आपसे अच्छा विद्यार्थी और कोई साबित नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे आप सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पर किसी तरह की वैज्ञानिक तकनीकी खोज लेते हैं तो उसके माध्यम से जो आपको ज्ञान अर्जित होता है, आप उसका प्रयोग बेहद संभल कर करें और चरणबद्ध तरीके से करें। आप उसका प्रयोग करके कुछ नूतन चीजों को जान सकते हैं। आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। जो चीज आप नई अर्जित कर रहे हैं उनका उपयोग शनै शनै आराम से करके कुछ और नई चीजों के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सदैव आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी चीज को करते समय आप बहुत उत्तेजना न दिखाएं और हड़बड़ी कतई न करें, क्योंकि आप बच्चे हैं, जिज्ञासा आपकी ज्यादा रहेगी, लेकिन आपको संभल कर उस तकनीक का प्रयोग करना होगा। तकनीक की उन्नति में आज पूरी दुनिया को आगे बढ़ाया है। विज्ञान, वैज्ञानिक और तकनीक की खोज ने जीवन शैली को प्रत्यक्ष रूप से बहुत सकारात्मक प्रभाव दिया है। अगर बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की या फिर कंप्यूटर की दुनिया की, तो हर जगह कुछ नया रोज ही खोज किया जा रहा है। वैज्ञानिक कुछ ना कुछ नई खोज करके एक सार्थक परिणाम पर पहुंच रहे हैं, जो आम इंसान के लिए, इस देश के लिए, सभी क्षेत्र में बहुत कारगर साबित हो रहा है। आप सभी बाल गोपाल से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लगातार अपनी पढ़ाई से कुछ समय निकालकर जो भी देश दुनिया में नई खोज हो रही है, नए परिणाम आ रहे हैं, उसमें भी आपको आगे रूबरू होना है, और जो चीजें आप समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, उसे आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य डिस्कस करें ताकि उनका भी ज्ञान बढ़ सके। देश में बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए कई एक नए शोध निरंतर किए जा रहे हैं। नए शोध के सार्थक और उपयोगी परिणाम भी आ रहे हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में बेहद उपयोगी

0: फैल हुई है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चों को कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग सिखाने के लिए सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे उन्हें नई दुनिया से जुड़ने और सीखने के लिए अवसर मिल रहे हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन क्विज आविष्कारक प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों के ज्ञान को बढ़ाया जा रहा है। क्विज की नई तकनीक से बाल गोपाल की जिज्ञासा को नया समाधान भी मिल रहा है, उनके ज्ञान बढ़ रहे हैं। क्विज की नई तकनीकी से बाल गोपाल की जिज्ञासा को नया समाधान मिल रहा है। तकनीक के माध्यम से बाल गोपाल अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। बच्चों, आप लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर के भी वैज्ञानिक नित्य नूतन नई खोज कर रहे हैं। आप देश की भविष्य हैं। आप सभी को सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि वैज्ञानिक तकनीकी जो भी आपके समक्ष आ रहा है उसका सही और संभल कर उपयोग करें। आज के विषय में बस इतना ही।
1: बच्चों लोगों ने देखा रहना है आप शैलेश चौरसिया भैया, और बहुत समझा के बताऊना कि वैज्ञानिक तकनीक का सही उपयोग किया जाए। अब आवाज सुन लेवल जाए एक बाल गीत।

0: बच्चों वालों को देखें बाल गीत के माध्यम से आप लोग ही जरूर सुनना कि माता पिता कितना अनमोल होना, चाहे कोनो गिफ्ट मिले न मिले, उपहार मिले न मिले, लेकिन मम्मी पापा का साथ रह बहार जरूरी है। आ जे परिवार के बीच में जो उन बच्चों लोग पलाना बढ़ाना, उनका निश्चित रूप से परवरिश अच्छा होला, संस्कार अच्छा होला, और जब बच्चों लोग उनका संस्कार अच्छा हो तो देश मजबूत हुई। यही उम्मीद के साथ कि सब पढ़ें, सब बढ़ें, बढ़िया बढ़िया ज्ञान अर्जित करें, देश के आगे बढ़ावें। आज कार्यक्रम के यही ठिना समेटत है, अगले कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। तो बचवा बोला जय हिंद।
1: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे युवा साथी अपना कार्यक्रम सुने युववाणी।

0: में एक सपना पल रहा है, कुछ नया करने का, कुछ अलग बनाने का। स्टार्टअप और उद्यमिता आज सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक जुनून बन चुके हैं।
1: लेकिन इस भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा के बीच एक अहम सवाल अक्सर अनदेखा रह जाता है, क्या हम अपने सबसे बड़े संसाधन यानी अपने शरीर और मन का ध्यान रख रहे हैं?
0: सफलता की इस दौड़ में अक्सर लोग दिन रात काम में जुट जाते हैं, अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देते हैं। पर क्या बिना फिट शरीर और शांत दिमाग के बड़े सपनों को हासिल किया जा सकता है?
1: शायद नहीं, क्योंकि एक मजबूत स्टार्टअप की नींव सिर्फ आइडिया और मेहनत पर नहीं बल्कि उस व्यक्ति की ऊर्जा, सोच और स्वास्थ्य पर भी टिकी होती है जो उसे आगे बढ़ा रही है।
0: दोस्तों, उद्यमिता और स्वास्थ्य के बारे में और विस्तार से बताने के लिए आपके साथ आज आपकी दोस्त मैं जयशालिनी
1: और मैं शिवांगी। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, तो स्वीकार कीजिए हमारा
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सर 50,000 एडवांस।
2: इतना कैश तो हम नहीं
3: रहे। और आज बैंक भी बंद है।
4: इलाज है, डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढोल।
3: लेकिन
4: अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने क्योंकि RBI करना है
5: कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ
6: और को भी सिखाओ।
7: आजकल हर तरफ स्टार्टअप और उद्यमिता की चर्चा है दोस्तों, लेकिन एक बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो है फिटनेस। क्या तुम्हें नहीं लगता शिवांगी कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए फिट रहना भी उतना ही जरूरी है?
8: बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन लोग बिजनेस प्लान, फंडिंग और नेटवर्किंग पर तो ध्यान देते हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भूल जाते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि अगर शरीर और दिमाग स्वस्थ नहीं होंगे तो कोई भी स्टार्टअप लंबे समय तक नहीं सफल हो सकता।
7: हाँ, क्योंकि स्टार्टअप शुरू करना आसान नहीं होता, इसमें लंबे समय तक काम करना पड़ता है, कई बार तनाव भी झेलना पड़ता है। ऐसे में अगर व्यक्ति फिट नहीं है तो जल्दी थक जाएगा और उसका फोकस भी कम हो जाएगा।
8: सही कहा शिवानी, फिटनेस सिर्फ शारीरिक ही नहीं मानसिक भी होती है। योग, मेडिटेशन और नियमित व्यायाम से दिमाग शांत रहता है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। एक उद्यमी के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि उसे हर दिन नए फैसले लेने होते हैं।
7: और एक बात, फिट रहने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है और जब आप खुद को अच्छा महसूस करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी भी निखरती है। इससे लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है जो बिजनेस में बहुत मायने रखता है दोस्तों।
8: बिल्कुल, आजकल कई सफल उद्यमी अपनी दिनचर्या में फिटनेस को शामिल करते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फिर काम की शुरुआत करते हैं। इससे उनकी ऊर्जा पूरे दिन बनी रहती है।
7: और मुझे लगता है दोस्तों कि स्टार्टअप की सफलता के लिए वर्क लाइफ बैलेंस भी जरूरी है। अगर हम सिर्फ काम ही करते रहेंगे तो अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करेंगे तो एक समय बाद हम खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे।
8: और यही कारण है कि आज की नई पीढ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने पर जोर दे रही है। वे समझ चुके हैं कि फिटनेस ही असली पूंजी है। पैसा तो बाद में भी कमाया जा सकता है लेकिन खोया हुआ स्वास्थ्य वापस पाना बहुत मुश्किल होता है।
7: तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए फिटनेस और बिजनेस दोनों का संतुलन जरूरी है?
8: बिल्कुल, फिट शरीर, शांत मन और मजबूत इरादे, ये तीनों मिलकर एक ही सफल स्टार्टअप की नींव रख सकते हैं।
7: बहुत सही कहा तुमने शिवांगी, अब तो हम भी अपने जीवन में फिटनेस को उतना ही प्राथमिकता देंगे जितनी अपने करियर को।
8: यही समझदारी भी है क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे।
7: तो दोस्तों आइए इसी के साथ सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों आइए अब सुनते हैं इस संडे का स्पेशल सेगमेंट यूथ कैंपस।
1: दोस्तों साइबर फ्रॉड आज के डिजिटल युग की एक गंभीर समस्या बन चुका है। इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधियों के द्वारा लोगों को ठगने के तरीके भी लगातार बढ़ रहे हैं
2: और साथ ही फर्जी कॉल, नकली वेबसाइट, ओटीपी, धोखाधड़ी, फिशिंग ईमेल, सोशल मीडिया हैकिंग और ऑनलाइन लोन ऐप जैसे माध्यमों से लोगों की निजी जानकारी और पैसे चोरी किए जाते हैं।
1: दोस्तों साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता सबसे जरूरी है। किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, बैंक विवरण, पासवर्ड या एटीएम पिन कभी साझा नहीं करना चाहिए और अगर शॉपिंग करनी है तो केवल विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप का ही उपयोग करना चाहिए।
2: मोबाइल और कंप्यूटर में मजबूत पासवर्ड तथा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रयोग करना चाहिए। किसी संदिग्ध लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचना चाहिए और इसी के साथ हमें समय समय पर अपने पासवर्ड्स बदलना चाहिए और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट साथ रखना भी आवश्यक है।
1: और इसी के साथ दोस्तों अगर आपके साथ किसी प्रकार की ऑनलाइन ठगी हो जाए तो तुरंत बैंक या साइबर हेल्पलाइन नंबर जो कि है 1930-1930 पर शिकायत करनी चाहिए। जागरूकता और सावधानी ही साइबर अपराध से सुरक्षा का सबसे प्रभावी उपाय है।
2: और इसी से जुड़ी बातें की हमने अपने युवा साथियों से यूथ कैंपस सेगमेंट के अंदर,
1: जिसमें इस बार हम गए थे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में, जहां हमने अपने युवा साथियों से बात की कि हमारा आज का युवा साइबर फ्रॉड के प्रति कितना सतर्क है। तो आइए सुनते हैं कि हमने क्या बातचीत की है। अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम अनुष्का सिंह है, एमए मास कॉम कर रही हूँ, सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है अभी मेरा विद्यापीठ से।
1: तो अनुष्का, जैसा कि आपको पता है कि हमारा आज का विषय है कि साइबर फ्रॉड में युवाओं की कितनी सतर्कता है, तो आप साइबर फ्रॉड से बचने के लिए किन किन मेजर स्टेप्स को फॉलो करती हैं खुद की लाइफ में?
3: मैं खुद की लाइफ में पहले तो अपने फोन में जो जरूरी चीज होती है वो पासवर्ड, जैसे फोन जब हम लोग ओपन करते हैं तो पहला स्टेप जो होता है वो पासवर्ड ओपन करते हैं तो वो आता है पिन सेट करते हैं या फिर वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फिर हमारे फोन में डिजिटल प्लेटफॉर्म भी होते हैं, उसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है तो उस पर भी हम पासवर्ड अपना सेट करते हैं। और जैसे

0: बैंक डिटेल वाली चीज़ों को पिन किसी से शेयर ना करे, किसी के पास ना जाए। और जैसे ऑनलाइन कोई भी मैसेज आते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आते हैं, जो लिंक आते हैं उस पर कोई क्लिक ना करे, क्लिक करके उससे भी साइबर फ्रॉड की हो सकती है,
1: गुंजाइश
0: मिल सकती है।
1: तो अनुष्का एक बात बताए, क्या कभी आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है या फिर आपके जान पहचान में किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट?
0: हाँ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, बट मेरे जान पहचान में हुआ है। कॉल, जैसे कॉल आता है तो कॉल उठाने पे पैसे उनके कट गए थे, ऐसा हुआ था उनके साथ।
1: तो आपको ये पता है कि साइबर फ्रॉड अगर हमारे साथ हो जाता है तो हम उसकी रिपोर्ट कहाँ करा सकते हैं?
0: साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट, जैसे साइबर का वेबसाइट होता है, ऑनलाइन होता है, उस जैसे उसका नंबर है 1930, उस पे कर सकते हैं।
1: थैंक यू अनुष्का। आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम शुक्ति है, मैं MA मास कॉम सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, विद्यापीठ से पढ़ाई कर रही हूँ।
1: अच्छा, तो आपको पता है साइबर क्राइम क्या होता है?
2: साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से होता है।
1: ओके, जैसे साइबर फ्रॉड जो चल रहा है वो ऑनलाइन स्कैमिंग भी चल रहा है और सोशल मीडिया को लोग हैक भी कर ले रहे, तो उस पर आपका क्या मत है?
2: सबसे पहले तो हम लोगों को किसी के साथ अपनी OTP जो आती है वो शेयर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों को अपने फोन में ट्रस्टेड एप्स ही डाउनलोड करनी चाहिए। और उसके बाद हम लोगों को किसी फेक कॉल या फेक मैसेजेस पे रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। जैसे आता नहीं है कि आपकी लॉटरी लग गई है या कुछ भी ऐसे, तो हम लोगों को उस पर रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए।
1: हाँ, लिंक वगैरह का शेयर करना चाहिए और OTP शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम जुली जायसवाल है, मैं MA मास कॉम की सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ, मैं विद्यापीठ से पढ़ती हूँ।
1: जुली, ये बताइए कि साइबर फ्रॉड से आप क्या समझती हैं?
3: साइबर फ्रॉड से मेरा समझने का ये मतलब है कि एक डिजिटली लोगों को फ्रॉड करने का तरीका होता है।
1: और क्या ये बता सकती हैं आप कि कितने टाइप के साइबर फ्रॉड्स होते हैं?
3: हाँ, इसमें बहुत तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, जैसे कि कॉल आती है, कोई पुलिस रहता है, कोई CBI बन के लोगों को कॉल करता है, उससे कहता है कि हाँ आपके वीडियो ये हो गए, वायरल हो गए, आप मुझे इतने पैसे दीजिए तो मैं ये कर दूंगा, क्लोजिंग कर दूंगा ये। लेकिन इस सब बातों पे हमें बिलीव नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब फ्रॉड गिरी हो करते हैं सब।
1: और डिजिटल अरेस्ट के बारे में पता है, जो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है?
3: हाँ, इसके बारे में भी पता है, मतलब ये डिजिटल फ्रॉड एक तरीके का फ्रॉड है, जैसे कि हमें वीडियो कॉल करके लोगों को, पुलिस रहेगा या कोई अधिकारी रहेगा, वो कहता है कि आपके खिलाफ कोई अरेस्ट हुआ है, मतलब किसी ने शिकायत की है कि आपने ये किया है, उसको लेके चलते हमें डिजिटल फ्रॉड के जरिए पता करने की।
1: तो आप इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आज के युवाओं को क्या कहना चाहिए, किन तरीकों से खुद को सेफ कर सकते हैं आज का युवा?
3: तो मेरा मानना तो ये है कि सबसे पहले हमें अपने सारे जो OTP आते हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। किसी अननोन लिंक पे क्लिक करके कुछ हमें बताना नहीं चाहिए कि ऐसे कभी कदार आते हैं कि आपके बैंक के लिए KYC करवाइए, ये करवाइए, तो कभी भी भूल के उन सारे लिंक पे क्लिक नहीं करनी चाहिए। वो हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है खुद
1: जी। अपना नाम बताइए।
4: मैं सूरज चौबे हूँ और काशी विद्यापीठ से MA का छात्र रहा हूँ।
1: सूरज जी, आप हमें ये बताइए कि साइबर फ्रॉड से आज के युवा किस प्रकार सतर्क रह सकते हैं?
4: देखिए, साइबर फ्रॉड आज के समय में बहुत ही आम चीज हो गई है। आए दिन घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि फला जगह साइबर फ्रॉड हो गया, फला जगह साइबर ठगी हो गई, फला के खाते से इतने पैसे निकाल लिए गए, उनका खाता ऐसे हो गया। या साइबर फ्रॉड का केवल खाता से ही संबंध नहीं है, उसमें कई बार तो हाउस अरेस्ट का भी मामला सामने आता है, डिजिटल अरेस्ट का मामला। तो ये सब साइबर फ्रॉड का एक सेगमेंट है। युवाओं को इसमें सतर्कता बरतने के लिए 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे पहले उसको वो ठीक से, मतलब प्राइवेसी रखें, रेस्ट्रिक्टेड करें। उनके जो पासवर्ड हैं वो बहुत थोड़े से, आज का जैसा Gen Z है तो Gen Z थोड़ा सा टेक्निकल तो रखता है, लेकिन फिर भी उनको सतर्कता अपने सोशल मीडिया पे सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। किसी अन्य जो फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, फ्रॉड कॉल पे कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से फ़ोन आया कि हम आपके पापा बोल रहे हैं या हम आपके पापा के दोस्त बोल रहे हैं, मुझे इस पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे भेज दीजिए। तो हम बिना जांच पड़ताल किए तुरंत विश्वास कर लेते हैं और उसके भेजे गए मैसेज पे या नंबर पे हम पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ जांच पड़ताल की जरूरत है।

तीसरी बात आती है कि कई बार हमारे व्हाट्सएप या अन्य जगहों पर आता है एपीके फाइल, कई बार शादी के कार्ड के रूप में एपीके फाइल आ जाता है, तो एपीके फाइल वास्तव में वो पीडीएफ है या क्या है, हमें इसकी जांच करने की जरूरत है। तो वहाँ पर लिखा होता है .apk.pdf.jpg, तो आज का जो युवा पढ़ा लिखा युवा इतना तो समझदार है, उसको इतना कम से कम देख लेना चाहिए कि अप्रैल फूल वाले दिन अगर कोई कुछ भेज रहा है तो वास्तव में अप्रैल फूल का मैसेज है या .apk है। .apk को आप अगर खोलते हैं तो कई बार आपका फोन हैंग हो जाता है, कई बार आपके फोन से पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते हैं, तो इन चीजों को आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। साथ ही साथ युवाओं का कर्तव्य भी है कि वो दूसरों को भी बताएं, है ना, केवल अपने जान लेने से अच्छी बात नहीं है, वो दूसरों के भी को भी बताएं और इस चीज को जागरूकता फैलाएं।

0: बात नहीं है, वो दूसरों के भी को भी बताएं और इस चीज को जागरूकता फैलाएं।
1: सूरज, जैसा कि हम जानते हैं कि शॉपिंग के टाइम पर भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, तो वो भी एक टाइप का साइबर फ्रॉड ही है, तो क्या आपने कभी कोई ऐसी घटना खुद मतलब हुई है आपके साथ या किसी जान पहचान, तो आप कुछ शेयर करना चाहें?
0: हाँ, एक बार मेरे साथ ऐसी घटना हुई है और अमूमन आम लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती है। हुआ यह था कि मैं इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें एड आते रहते हैं। एक एड आया, अच्छा लग गया मुझे, मैंने सोचा इसको खरीदते हैं, वहीं पर मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सब कुछ मेरे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्लिपकार्ट पे मौजूद है, इसके बावजूद वहाँ पर फीड करने को मांग रहा था। एक बार मुझे ऐसा लगा कि दोबारा क्यों मांग रहा, लेकिन मुझे लगा हो सकता है क्रोम से खुला हो, ब्राउजर से खुला हो, इसलिए ऐसा मांग रहा। मैंने उसको फीड किया, मैंने बाय भी कर लिया, मुझे मैसेज भी आ गया कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। 3 दिनों तक मुझे कोई मैसेज नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। मैंने उस पर देखा, फिर बाद में पता चला कि मेरा जो है 300 रुपए का सामान जो है मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। तो इस तरीके की चीजों से भी बचना चाहिए, और अगर हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, आजकल तो तमाम प्लेटफॉर्म हो गए, तो हमें एक बार सतर्क हो जाना चाहिए, एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। बस एक बार क्रॉस चेक कर लेने से कई समस्याओं का हल हो सकता है।
1: थैंक यू सूरज। आपका नाम?
2: मेरा नाम समर प्रताप सिंह है, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बी ए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ।
1: अच्छा, ये बताइए कि साइबर क्राइम क्या होता है?
2: साइबर क्राइम जो आजकल लोग डिजिटली इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं, लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम कब क्या किसी से क्लिक करने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या चीज़ें गलत प्रभाव डालेंगी। तो आजकल काफ़ी चीज़ें फ्रॉड में चल रही है, जैसे कि फेक लिंक, फेक शॉपिंग, बबल्स, पोस्टर्स, ये सब वजह से लोग इसके शिकार बनते जा रहे हैं। तो ये क्राइम के दायरे में ही आएगा जो डिजिटली है।
1: और ये बताइए कि अगर आपके साथ अगर कुछ ऐसा स्कैम होता है तो आप उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेंगे?
2: मेरे साथ अगर ऐसा स्कैम होता है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिना डरे मुझे क्राइम ब्रांच के पास मुझे मैं शिकायत दर्ज करूंगा, और सेकंड मैं अपने सारे सिक्योरिटी इनेबल कर दूंगा अपने फ़ोन से, और अपने जो भी मतलब बैंक अकाउंट है सारे इसको सिक्योर करने की कोशिश करूंगा।
1: हाँ, ओके। और आप फिशिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं? अगर
2: फिशिंग की बात करें तो ये लोगों को जाल डालने का काम करते हैं लोग, लालच देकर अपने तरफ अट्रैक्ट करना, जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री, इसके साथ आपको ये मिलेगा, लोग उससे उसके जाल में फंस जाएंगे, जिसके वजह से वो जो कदम नहीं उठाना चाहिए वो कदम उठाते हैं लोग, और जो वो चाहते हैं लोग वैसा कर जाते हैं। हम अपना डेटा दे करके, अपना अकाउंट डेटा दे करके मैं वहाँ फंस जाते हैं।
1: और अभी आजकल सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन स्कैमिंग भी बहुत हो रही है, जैसे कि डिलीवरी को लेकर के किसी ऐप के थ्रू जो लोग अपना इन्फॉर्मेशन दे दे रहे हैं और उसके बाद वो चीज़ें उन्हें डिलीवर भी नहीं हो रही है, उनकी जो प्राइवेसीज हैं वो लीक हो जा रही है, उस पर क्या कहना है?
2: ऑनलाइन मार्केटिंग जो ऑथेंटिक ऐप के थ्रू ही करना बेटर होता है। अगर थर्ड पार्टी ऐप अगर कोई अगर ऑनलाइन शॉपिंग या कोई उस तरह की चीज़ें करा रही है तो पहले हमें जाँच परख करनी चाहिए अच्छी तरीके। ऐसा हादसा मेरे साथ भी हो चुका है, मैं कैमरे का बहुत शौकीन आदमी हूँ और मैं क्लास 9th स्टैंडर्ड में था, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ, मुझे कैमरा लेना था। तो फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए आते हैं कि ये 10,000 में इतने ये कैमरा ले लीजिए, वो कैमरा ले लीजिए, तो मुझे कैमरे का अनुभव नहीं था, बट मैंने उस कैमरे को परचेज किया। तो उसने डेटा के तौर पर उसने कहा कि आप हमें अपना लोकेशन दे दीजिए, कहाँ कहाँ रहते हैं, मैंने उसको एड्रेस दे दिया, पर सबको फिल करा दिया। फिल कराने के बाद उसने कहा कि सर आपके ऑर्डर के लिए सबसे पहले आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने उसको 1500 रुपये पे किया, 1500 पे करने के बाद से अगला बंदा शाम को फिर कॉल कर रहा है, कह रहा है कि सर आपका जो ऑर्डर है उसे पैकेजिंग हो रहा है और एक फेक पोस्ट का जो है उसने फोटो भेजा
1: शिपिंग
2: कि आपके देखिए ये शिपिंग होने जा रहा है, तो मुझे और मतलब 3,500 के आसपास मुझे पैसे चाहिए, तो आपका यहाँ से ऑर्डर चला जाएगा, बाकी आप पेमेंट आपका ऑर्डर मिलने के बाद होगा। मैंने उसको 3,500 पे कर दिया, उसके बाद ना कभी मुझे ऑर्डर मिला, ना उसका डिटेल मिला, ना उस बंदे का कॉन्टेक्ट मिला।
1: सो बी अवेयर फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। थैंक यू सो मच समर जी। आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम स्नेहा सेठ है।
1: और आप क्या पढ़ाई करती हैं?
3: मैं फाइनल ईयर है मैं मास कम्युनिकेशन का।
1: कहाँ से?
3: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
1: के। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे इस टाइम सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू बहुत सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, क्या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें आपके साथ फ्रॉड हुआ हो या स्कैम हुआ हो, आपकी आईडी से किसी और ने फेक आईडी बनाई हो और आपसे पैसा लिया हो?
3: जी, मैं इंस्टाग्राम पर मेरी फ्रेंड के आईडी से मुझसे पेमेंट मांगा गया था और मुझे आइडिया नहीं था कि ये मेरी फ्रेंड की आईडी है, मैंने उस पर पेमेंट किया था, फिर मुझे बाद में पता चला कि ये फ्रॉड है और मैंने पेमेंट कर चुका था तो वो रिटर्न नहीं कर सकते थे, और मैंने इसके लिए कंप्लेंट भी किया था पर अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है।
1: ओके तो आपने जब आपके साथ ये इंसिडेंट हो रहा था तो क्या आपने अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की?
3: मैंने

0: उसने मैसेज नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया था, फिर मैंने बाद में उससे मैसेज किया था तो उसने बोला ये मेरी आईडी नहीं है। अब मुझे भी आइडिया नहीं था कि वो उसकी आईडी नहीं, क्योंकि उस पर उसकी फोटो लगी हुई थी और फॉलोवर भी थे उतने, उसकी वीडियोज भी डले थे, तो मुझे आइडिया सच में नहीं था कि वो उसकी आईडी नहीं है।
1: अच्छा, अगर आपके साथ अब ऐसी कोई चीजें होती है तो उसके लिए आप क्या स्टेप लेंगी?
0: अभी मेरे साथ इंस्टा पे और लोगों की आईडी आई थी, मतलब पहले से ही मुझे फ्रेंड्स ने पता था मुझे कि ऐसी आईडी फेक बन रही है, इसलिए मैं अब उसे फॉलो ही नहीं करती उस आईडी को कि ये स्कैम हो सकता है। अब मैं थोड़ी सी इम्प्रूव्ड हो गई हूँ कि ऐसे आईडी को फॉलो नहीं किया जा सकता है।
1: ओके, मैं पहले है। और अभी फिलहाल में देखा जाए तो जैसे ऑनलाइन में ये भी हो रहा है कि किसी जॉब को लेकर के लोग आपको आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि आप ये कर लीजिए, आपको पहले इतना पे करना होगा, उसके बाद आपका जो जॉब है वो कन्फर्म हो जाएगा, तो उस पर आपका क्या कहना है?
0: ऐसी मतलब रहती है बहुत सारी, पर ट्रू कॉलर पे पहले से आ जाती है ये सारी चीजें कि ये स्कैम कॉल है तो आप इसे ना उठाए, वो पहले से ब्लॉक कर देते हैं ट्रू कॉलर पर, इसलिए ऐसे कॉल पहले ही आ जाते हैं कि ये स्कैम है,
1: अवॉइड कर देने चाहिए इन सब चीजों को। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये सब चीजों जो चल रही है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रही है या उसके थ्रू ही ज्यादा हो रहा है?
0: ये सारी चीजें ज्यादातर सोशल मीडिया के द्वारा ही हो रही है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी नहीं हम लोग की नंबर या आईडी को फॉलो करता है, सोशल मीडिया पे मेरी आईडी बनी रहती है, उसी को देखकर वो कॉपी करते हैं और इसलिए ऐसे होते हैं।
1: आजकल तो ये भी हो रहा है ना कि जैसे कोई छोटे बच्चे हैं या कोई लेडी का ग्रुप है वो आपसे कहते हैं कि मैम हमें फोन करना है, बात करना है, तो उसके थ्रू भी स्कैम हो रहा है। तो आपको कुछ ऐसा इंसिडेंट याद है आपके साथ हुआ है या आपके अगल बगल किसी के साथ?
0: जैसे कि अभी यहाँ पर यात्री लोग आते हैं बहुत सारे, उसमें भी बहुत लोग होते हैं उनके पास अपनी फोन होती है, पर वो तो भी आपसे कहते हैं कि आप अपने फोन दीजिए मुझे कॉल करनी है, और उससे नंबर आपके लीक हो जाती है और वो आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट ले लेते हैं।
1: हाँ, लाइक कि अभी जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे कभी कभी लिंक भी आते हैं,
0: ऐसे लिंक को ओपन नहीं किए जाते, वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है कि आप उसे ना ओपन करें, क्योंकि आपके डिटेल्स सारे उनके पास चले जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आपके इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल है वो भी लीक हो जाते हैं। तो अगर ये बताइए कि जैसे आपके साथ अगर ऐसा कुछ होगा सोशल मीडिया से रिलेटेड, ओटीपी वेरिफिकेशन समथिंग, तो आप उसके लिए क्या करेंगे?
0: मैं पहले उसको प्रॉपर चेक करूंगी उस ओटीपी को, ऐसे ही मैं किसी को अपनी ओटीपी एंड पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर कर सकती हूँ कि उससे मेरे बैंक डिटेल्स या मेरे पर्सनल डिटेल्स किसी के पास जाए।
1: ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच स्नेहा फॉर योर टाइम।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
3: 0542227658।
1: ओ
4: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।

0: खार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दोस्तों, हमें लोगों की बातें और उनके शब्दों से पता चल जाता है कि वो कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए। ऐसे ही नए शब्द आपको आपकी युवाणी भी बताती है। तो चलिए आइए जानते हैं आज का हिंदी का शब्द, जो कि है अवधारणा, जिसका अर्थ होता है सुविचारित धारणा, और इसके पर्यायवाची होंगे सोच, कल्पना, धारणा।

0: और इस वाक्य में हम कुछ यूं कह सकते हैं, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की अवधारणा को जीवन में उतारा था।
1: तो इसलिए इंग्लिश का शब्द है जस्टिपोज, जिसकी स्पेलिंग है JUXTAPOSE, जिसका अर्थ होता है मिलना। और इसके कुछ सैनोनिम्स है जैसे एडजेसेंट, एडजॉइंग और कॉन्टिग्यूस। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं जैसे व्हेन यू जस्टिपोज द टू यू कैन सी द डिफरेंस।
0: इसी क्रम में अब वक्त हो चला है हमारे खास रोजगार सूचना का, जहां हम आपको बताते हैं करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां।
1: तो दोस्तों, इस बार की सूचना सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF द्वारा कांस्टेबल ट्रेड्समैन परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
0: इस भर्ती के अंतर्गत कुल 9,195 पद घोषित किए गए हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि है 19 मई 2026।
1: और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.rect.crpf.government.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: तो दोस्तों, ये तो हो गई हमारी रोजगार सूचना की बात, लेकिन रोजगार सूचना तब काम आएगी जब आप अब करंट अफेयर्स को जानेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जीके जीएस कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ घटित हुआ इस हफ्ते।
1: तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने खेल के लिए नई तैयारी तेजी से शुरू कर दी है और खेल मंत्री मनसुख मंदविया ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और 2028 ओलंपिक्स की तैयारी पर जोर दिया है।
0: इसके साथ ही दोस्तों, भारत में नया साउथ कोस्ट रेलवे जोन बनाया जाएगा और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा।
1: और जानती हो जयशालिनी, भारत ने HVDC पावर ट्रांसमिशन में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2035 तक 60% लोकल कंटेंट का लक्ष्य रखा है।
0: इसी के साथ दुनिया में AI और सस्टेनेबल इंजीनियरिंग पर नए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारी तेज हो गई है और साथ में भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को बड़ी सफलता मिली है। गैलेक्सी आई स्टार्टअप ने मिशन दृष्टि सैटेलाइट लॉन्च किया है।
1: TISS यानी टीस ने ग्लोबल सर्विस साइंस रिसर्च बॉडी शुरू करने की घोषणा की है।
0: और दोस्तों, अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, लेकिन उससे पहले बारी हमारे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के विजेताओं के नाम जानने की। तो कल हमने आपसे सवाल किया था, आकाशवाणी नाम देने का श्रेय किस महान कवि व साहित्यकार को जाता है, जिसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर।
1: और सही जवाब देने वाले हमारे साथियों के नाम हैं चंदा चंदौली से, प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से।
0: और इसी के साथ दोस्तों, अब तैयार हो जाइए हमारे आज के प्रश्न के लिए, जो कि है, आकाशवाणी को उसका नाम किस वर्ष में मिला। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, आकाशवाणी को उसका नाम किस वर्ष में मिला।
1: तो दोस्तों, पता है ना कि इसका जवाब आपको कहाँ भेजना है? जी हाँ, अपना जवाब आप हमें इंस्टाग्राम ID youth AIR Varanasi पर या हमारे ईमेल पता youth AIR VNS@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो जल्दी कीजिए।

0: दोस्तों, आपसे बातें करते करते पता ही नहीं चलता कि घड़ी की सुइयां हमें जाने का इशारा कर रही हैं। लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि समय प्रबंधन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और तुम्हें याद है शिवांगी कि हम पहले अपने टाइम कैसे मैनेज करते थे? लेकिन शायद अभी नहीं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज है कि हम एक शेड्यूल बनाकर अपने टाइम को मैनेज करते थे। जैसे कि बचपन में हम टाइम टेबल बनाते थे ना कि ये काम इस समय करेंगे, ये काम इस समय करेंगे, ऑल्दो वो कभी फॉलो नहीं हो पाता था।
1: हाँ वही तो, आधुनिक तरीके थोड़े स्मार्ट हैं। जैसे आप अपना काम स्वयं पहले से हिस्से में बांट लेते हैं, कब पढ़ना है, कब काम करना है और कब ब्रेक लेना है। इससे काम करते वक्त ध्यान ज्यादा रहता है और थकान भी थोड़ी कम लगती है।
0: हाँ, और पुराने टाइम में ना थोड़ा हम लोग का टाइमिंग सही नहीं बैठता था, इधर उधर कर देते थे और कोई अगर नया प्लान आ गया तो फिर सब गड़बड़ हो जाता था,
1: चेंजेस करते रहते थे।
0: और एक फर्क ये भी है कि पहले लोग डायरी या कागज पर सब लिखते थे, जबकि अब मोबाइल एप्स और कैलेंडर की मदद लेते हैं लोग, और समय समय पर ये हमें याद भी दिलाते रहते हैं।
1: इसीलिए दोस्तों, हम जाते जाते आपसे यही बात कहेंगे कि अपने समय की बचत करें और अपने समय को मैनेज करना सीखें, उससे ध्यान दें, क्योंकि जो समय चला जाता है ना वो वापस लौटकर नहीं आता। तो यह बात तो अब आप सब जानते ही हैं, तो इन्हीं बातों से दीजिए हमें विदा। और आपकी इन दो रेडियो साथी शिवांगी और
0: जयशालिनी को खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने गोरखपुर केंद्र से।

आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम शिवानी अरोरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का आज विस्तार भेल। मुख्यमंत्री के मौजूदगी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जनभवन के गांधी सभागार में नया मंत्रियन के शपथ दियावलिनी। मंत्रिमंडल के नया सदस्य के रूप में भूपेंद्र सिंह चौधरी आ मनोज कुमार पांडे कैबिनेट मंत्री और कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा आ कैलाश सिंह राजपूत राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली ले। योगी सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल आ सोमेंद्र तोमर यह मौका पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ले।

0: ने नया मंत्री लोग राज्यपाल आ मुख्यमंत्री के पुष्पगुच्छ देकर उनकर अभिनंदन कैली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, भाजपा का महामंत्री संगठन धर्मपाल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। प्रदेश सरकार का ऊर्जा मंत्री कहले हवे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगुवाई वाली सरकार बिजली व्यवस्था में बढ़न सुधार कैल गैल हो। तकनीकी सुधारण की जरिया से मानवीय हस्तक्षेप कम कैल गैल हो, जबने से भ्रष्टाचार पर रोक के लगावल जा रह सके। आ जनता के राहते मिले वहां के कहले कि प्रदेश के बढ़िया बिजली ढांचा देवे बदे लगातार कोशिश जारी बा। ऊर्जा विभाग का उपलब्धि गिनावत श्री शर्मा कहले कि प्रदेश में अब जिला मुख्यालयन के 24 घंटा, तहसीली मुख्यालयन के 22 घंटा अ ग्रामीण इलाकन के 20 घंटा बिजली आपूर्ति दिहल जा रहे हो। वहां के बतवले की सरकार 165 लाख नया बिजली कनेक्शन देले हवे, 59 लाख से बेसी स्मार्ट मीटर लगावल गयल हो और 26,000 किलोमीटर से बेसी पारेषण लाइने का विस्तार कैल गल हवे। एकरे अलावा ग्रामीण इलाकन में ढेरी संख्या में निजी नलकूपन के बिजली कनेक्शन उपलब्ध करावल गैल बा। अयोध्या के श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र बतवले हवे कि मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुकेल बा। परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ी रहल हो। श्री मिश्र आज अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति का बैठक में शामिल भैले के बाद संवाददाता लोगों से बतियापत रहले। वहां के बतवले की मंदिर परिसर में राम मंदिर आंदोलन में अपन प्राण न्यौछावर करे वाले कार सेवकन के याद में एक भव्य शहीद स्तंभ बनावल जा रहे हो, जेके 15 जून ले पूरा हो गए लेके उम्मीद बा।
1: निर्माण पूरा हो चुका है। एक स्तंभ जो आप सभी को विस्तार से बताया, शहीद स्तंभ, वो स्तंभ जो है उसका निर्माण जून 15 तक पूर्ण हो जाएगा। ही बाउंड्री वॉल जो बननी है 4 किलोमीटर, उसमें लगभग साल लगेगा। प्रयास है कि हम 2026 में उसे भी पूरा कर।
0: श्री मिश्र बतावले की परिसर में नया जमाना का म्यूजियम का निर्माण चली रहल हो। म्यूजियम में 20 गैलरी बनावल जाए, जिसमे एको 7D तकनीक आधारित गैलरी श्रद्धालुओं के मंदिर भ्रमण जैसन अभुनव अनुभव कराए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज वाराणसी के बलदेव इंटर कॉलेज में संपूर्ण सामाजिक रीति रिवाज के साथ 183 जोड़न का विवाह करावल गेल। यह मौका पर नया विवाहित जोड़न के 60,000 रुपए के चेक, परिधान उपहार का समान अभिहा प्रमाण पत्र दिहल गेल। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह से सतही सज्जू जनप्रतिनिधि लोग विवाहित जोड़न पर फूल बरसाकर उनके सम्मुख उज्जवल भविष्य का कामना कैले। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के ओरी से प्रवक्ता संवर्ग का 2 दिवसीय परीक्षा आज प्रदेश भर में संपन्न हो गई। आज पहला पाले में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत आ मनोविज्ञान के साथ ही 5 विषयन आ दूसर की पाले में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी आ कला के साथ ही 4 ही विषय का परीक्षा आयोजित भेल। सज्जो जिलन में परीक्षा के लेके जिला प्रशासन सतर्क रहल, कहीं से कौनो तरह की शिकायतें नहीं मिलल। हापुड़ जिला के काली देर राती गंगा एक्सप्रेसवे पर भयल सड़क की दुर्घटना में एगो बच्चा और 2 महिला लोगों के साथ ही 3 जने का मौती हो गई। पुलिस सूत्र बतावले की बरेली से लुधियाना जा रहे एगो कैंटर डिवाइडर से लड़े के पलट गई, जिसमें 3 लोग दबी गई और वही जुग में मौती हो गई। यह दुर्घटना में 2 जने और घायल हो गए, जिन्हें इलाज बदे अस्पताल भेजी दी गई। प्रदेश का करीब सज्जो जिलन में पिछला 2 दिन के दौरान मौसम साफ रहले और तेज घाम निकलने के नाते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज कैल गेल हो। मौसम के ये बदलाव के नाते लखनऊ के साथ ही कई जिलन में उमस भरी गर्मी पड़े लागल बा। मौसम विभाग बहने से ही एक बेरी फिर मौसम में बढ़न बदलाव का पूर्वानुमान जतवले हो। समाचार पूरा भेल, नमस्कार।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 8 बजे सुनिएगा सुगम संगीत, जिसमें हमारी आज की कलाकार होंगी चित्रा सिंह। शाम 6:30 पर हमारे किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे कृषि जगत, जिसमें कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती इस विषय पर डॉक्टर मनीष पांडे से बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही लुत्फ उठाइएगा राहुल कुमार मौर्य के गाए हुए दादरा का। शाम 7:31 पर कार्यक्रम सुनिएगा पत्र के लिए धन्यवाद, प्रस्तुति अरुण पांडे और सना सलीम की होगी। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:10 और शाम 7 बजे। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे रस रंग और रस माधुरी का समय होगा रात्रि 8:15। गैर फिल्मी गीत एवं गजल पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 9:30 पर। ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब सुनिए कल यानी दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनिएगा विदुषी वसुंधरा कोमकली का गायन। दोपहर 12:45 पर और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा एकल तबला वादन, कलाकार होंगे पंडित किशन महाराज। कार्यक्रम सुगम संगीत में दोपहर 12:30 पर सुनिएगा गीत और भजन, कलाकार होंगी अर्चना माहेश्वर। और रात्रि 8 बजे इसी कार्यक्रम में सुनिएगा मिताली सिंह की गाई हुई गजलें। शाम 6:30 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे कृषि जगत, जिसमें धान के खेत की तैयारी इस विषय पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही लुत्फ उठाइएगा बाबूलाल यादव और साथी के गाए हुए लोकगीत का। इन्हीं के गाए हुए लोकगीत आप सुन सकेंगे सुबह 9:50 पर और दोपहर 1:45 पर भी। बहनें अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी सुन सकेंगी दोपहर 1:15 पर। हमारे युवा साथी अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:15 से, जिसमें आकर्षण होगा आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और गीत संगीत। इसके अलावा सुनेगा वार्ता, विषय होगा विदेश में पढ़ाई, अवसर और चुनौतियां। वार्ताकार होंगे शुभम राय। रात्रि 10 बजे सुनिएगा कवि गोष्ठी, आकाशवाणी के 90 वर्ष से संबंधित। प्रतिभागी कवि होंगे अशोक कुमार सिंह, अत्रि भारद्वाज, राम नरेश और सविता सौरभ। सुबह 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में विषय होगा सामयिक कृषि कार्य, इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना सुबह 6:10 पर। सुबह 6:30 पर विचार बिंदु का समय होगा राजा राम मोहन राय। स्वास्थ्य चर्चा आप सुनिएगा सुबह 6:35 पर। कार्यक्रम का विषय होगा बच्चों में डायरिया का संक्रमण और इसकी चिकित्सा, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर PN यादव। तो ये थी हमारी केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म चंबल की कसम से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है खयाम ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।

0: 7658।
1: कार्यक्रम का अगला गाना है फिल्म बुड्ढा मिल गया से। इस गीत को अपनी आवाज दी है मन्ना डे ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने। संगीत बद्ध किया है आरडी बर्मन ने।

मन्ना डे की गाये फिल्म बुड्ढा मिल गया के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्या वार्ताः। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः चतुर्नवति शतकोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान्। भाजपा दलस्य षट् नेतारः मंत्रिरूपेण शपथं गृहीतवन्तः। तमिलनाडु राज्ये टीवीके दलस्य संस्थापकः श्री सी जोसेफ विजय अद्य प्रातःकाले मुख्यमंत्री पदस्य शपथं गृहीतवान्। तेन सहैव नवमन्त्रिणः अपि शपथं गृहीतवन्तः। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंता विश्वास शर्मा विधायक दलस्य नेता रूपेण निर्वाचितः। अपि च शंघाई नगरे आयोजिते धनुष्क्रीडायाः विश्व चषक स्पर्धायां भारतीय महिला रिकर्व दलेन चीन देशं पराजित्य स्वर्ण पदकं प्राप्तम्।

पंचों राम राम, सब पंच भैया लोगन के हाथ जोड़िया राम राम। आ देखें भैया, जौन खेती किसानी में ये समय लगल भैया, वो सबसे बड़ बात ही कि जेकर काम नीक बा ओकर काम सबके बढ़िया लगाला, लेकिन जेकर काम खेती किसानी में गड़बड़ा जाला भैया, वो लोग सोचा ना कि आखिर का बात है कि इनकर खेती गड़बड़ा गई।

देखें, हमारी हथजोड़िया नहीं हो रहा हर किसान भैया लोगन से कि देखा जेकर बनल बा ओकर तो ठीक बा, लेकिन जेकर बिगड़ल बा ओके हो सके तो सहारा दें, उनकर मार्गदर्शन करें, उनके में का कमी रह गल बिया बेहन में या बुआई में या बीज के चयन में कहाँ से गड़बड़ी भैल, ई अगर बात बतकही के माध्यम से एकर समाधान निकल जाए तो निश्चित रूप से किसान भैया लोगन के भी फायदा होई या जेकर नुकसान भैल बा ओके भी आवे वाले समय में नुकसान न होई। आज हम ये बात काहे कहत हई, काहे से कि देखें आवश्यकता ये बात का महसूस भइल कि अक्सर होला का कि हमहन सही जगह पर सही बात के नहीं पूछित जा तो गलती हो जाला। जैसे बीज चयन का बात करल जा या लवनी रोपनी का बात करल जा, आवे वाले समय में अभी हमन के धान का खेती करे के बाद अभी गेहूं का फसल ले ली है जा, सरसों का फसल ले ली है जा, बहुत से किसान भैया लोगन के हैं इस समय कुड़ार में आबादी में सब्जी निकलत है, बाजारे देखें एक सौदा कई लोगन का जाला। जैसे मान लो चल हम बात करते लौकीये का, तो बहुत सा ऐसा लौकी है बाजारे में जो उन 5 रुपया बेसी भी बड़े आराम से गाहक ले लेवन है, लेकिन बहुत सा ऐसा भी वही बाजारे में वह सौदा वही गांव से जात बा, लेकिन ओकर पैकिंग करे में कहीं कुछ कसाई ज़्यादा हो गल या बोरिया में रसरी का दाग लग गल, तो समझ लें कि वह बिया वह बेहन वह सौदा लेकिन नरम पड़ के बेचे के पड़ला, तर तरकारी के जो न अपन भाव हो के गिरावे के पड़ला। ऐसे हमें ये बात के कहत है कि देखें आज हमन अपने पंचायती में बात करल जाए कृषि में उन्नत तकनीक का प्रयोग करल जा, कैसे अपनावल जा, कहाँ से सीखल जा। तो देखें सीखे बदे तो अक्सर किसान मेला लगाला, ये कार्यक्रम के माध्यम से बहुत से विशेषज्ञ भैया लोग समय समय पर आवना, नई नई जानकारी देवना। देखें हम शुरुआत से बात करते हैं, शुरुआत ही होला कि खेत कहाँ का है, ओमन का पैदा हमन के लेवे के है, माटी का जांच से। देखें बहुत जरूरी है कि माटी का जांच करके ये बात के जानब कि हमार माटी का उर्वरा शक्ति है, वो जौन हम मन बनावत है फसल उगावे का ओकर उम्मन उत्पादन क्षमता बरियार है कि नहीं है, आई पता चली भैया माटी के जांच से ही। तो पहला हो गल माटी का जांच, दूसरा देखा कौनो भी बीज का चयन हमेशा विश्वसनीय दुकान से करे के चाहिए या जो भी विशेषज्ञ भैया लोग बतावन है। अब देखें बहुत से किसान भैया लोग यहाँ आवन है, प्रगतिशील किसान अभी कुछ दिन पहले आर ने बतौना कि पपीता का खेती करके इतना बढ़िया लाभ लेते हवन कि कहना कि उनकर लड़का भी नौकरी छोड़ के आ गई ना, और पपीता का इतना व्यापारिक खेती करते हैं लोग कि कई जिलन में प्रदेश के उनकर पपीता जाता, मतलब एक बढ़िया आय उनके होता, 10 लोग काम भी करते हैं उनके बगीचा में, तो वो लगन का बात है। देखें मछली पालन के भी समय विषय में एक किसान भैया लोग आए ना बताऊना कि बहुत बढ़िया आय का साधन है। देखें यार अपने अंचल में बहुत से ऐसा किसान लोग हम जो अगैती फसल लेकर के तर तरकारी में जो तोड़ान जनकर निकलला, अब देखें इस समय नेनुआ का दाम तनिक सा नरम हो गल, लौकी का दाम नरम हो गल, पुरवा जब जब बहाला तनिक तरकारी का नाम नरम हो जाला, लेकिन देखें यह 15-20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले जौन आज किलो का रेट है बाजारे में फुटकर में तो उन पौआ का रहे 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले। तो कहे का मतलब यह है कि हमेशा खेती बाड़ी में अपन तालमेल बना के चले के चाहिए, पशुपालन अगर 2 मूड़ 4 मूड़ गैया गोरू को करत हुआ तो ओकर अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करे के चाहिए, कहे से कि पशुपालन भी एक आय का बहुत बड़ा साधन है। अब जैसे लवनी का बात कैली कि या रोपनी का बात बीज शोधन का बात भैल, तो बीज शोधन में हो गल कि बढ़िया प्रजाति का चयन हो गल, बीज शोधन जैसे कृषि वैज्ञानिक भैया लोग समय समय पर कह रहे ना कि ट्राइकोडर्मा से अगर हो सके तो बीज शोधन हो जाए, ओकरे बाद देखें बिया बोवे का भी तरीका सही से होए के चाहिए। विशेषज्ञ भैया लोग बतावे ना कि जैसे हरदी का खेती करें चाहे गन्ना का खेती करें चाहे धान गेहूं का करें चाहे तर तरकारी का करें, दूरी बड़ा मायने रखाला। दूरी जब नियम के अनुसार हुई मानक के अनुसार हुई तब पैदावार भी बरियार मिली। कहले का मतलब यह है कि अक्सर हम
नादानी में या कहला कि तनी सा लालच

में कि जितना बिया पड़ जाए उतना सयार होई, कभी कभी ये होशियारी भारी पड़ जाला। काहे से कि ढेर गज्झिन बो देले से, ढेर घना बो देले से पैदावार पर असर पड़ जाला। तो दूरी उचित जौन हो वो बहुत जरूरी है। तो कृषि में जैसे संयंत्र है, जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, या फिर जौन भी चारा काटे का मशीन है, जौन भी अपने खेती में कृषि यंत्र हवन,

कृषि यंत्र हमन वैज्ञानिक भैया लोग सुविधाजनक मार्गदर्शन करन है। जौन भी आप अपनावत हम खेती में क्रम ओकर अगर यंत्र का जितना देखें, विज्ञान का युग है, जय जवान जय किसान के आगे अभी आधुनिक युग में जुड़ गल है जय विज्ञान। अगर विज्ञान के हम न शामिल करल जाए अपने खेती किसानी में तो कहीं ना कहीं देखें लागत के अनुसार मुनाफा का जो न अंतर है वो घट जाए। तो लागत कम से कम लगे और मुनाफा अधिक से अधिक होए, आज के युग में तो यह होशियारी है। आइए जितना भी प्रगतिशील किसान भैया लोग हवा ये वैज्ञानिक तकनीक के अपनावत हवा, कृषि यंत्र का प्रयोग करत हवा, उन्नत बीज का प्रयोग करत हवा, जहाँ खाद बिया का प्रयोग करे के है जैसन ओकर करत हवा, अधिक से अधिक जैविक खाद का प्रयोग अपने खेती में करत हवा, कम से कम कृषि रसायन का प्रयोग करत हवा, आ खेती के साथे बारी के भी शामिल करत हवा, पशुपालन के भी शामिल करत हवा। जौन आपके लहान बैठे कम से कम दू साधन अगर आय का बन जाला खेती किसानी में तो वो एक कहला कि माथे पर सिकन नहीं आवे दे, कहला कि चिंता नहीं करे के पड़ला कि जैसे हम बार बार कहिला कि धान का फसल है या गेहूं का फसल है तो 3-4 महीना बाद एकर जो कल पैदावार होला ओकर जोन पैसा मिलला तो 3-4 महीना इंतजार करे के पड़ला। तर तरकारी है, पशुपालन है, तो जैसे दूध जाता है बाजारे तो रोज को रोज आपके 2 पैसा मिल जाता, तर तरकारी बाजारे जाता तो आपके रोज 2 पैसा बाजारे मिल जाता। तो ऐसे हमेशा कृषि वैज्ञानिक भैया लोग का सलाह माने, जोन भी विशेषज्ञ भैया लोग आपके जोन कृषि में जोन भी आप कार्य करत हुआ ओकरे संबंध में कुछ नसीहत देत हुआ तो नसीहत के माने कृषि यंत्र का प्रयोग करें, वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करें। बात बात कही आगे और हुई, देखें घड़ी का सुई सारा कहा था कुछ संदेश है, अब सुन लेवल जा संदेश।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है।
2: ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में।
3: केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं।
2: रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से,
1: आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए,
4: जानकार बनिए,
5: सतर्क रहिए।
6: देखें ही हो गल सनेश, और देखें हमन अपने बात बात कही में साग सब्जी के बात करत रह लिया जा, उन्नत तकनीक के बात करत रह लिया जा। तो देखें हमके विशेषक भैया लोग के बात बात कही याद आवत है कि अक्सर वो लोग कहना कि बिया बढ़िया होई तब पैदावार बढ़िया होई, जतन तब महत्वपूर्ण होला जब बिया बेहन बढ़िया हो। आप कितनों मेहनत करें, कितनों जतन करें अपने दैनिक दिनचर्या में, लेकिन अगर बिया बढ़िया नहीं है या माटी माई का उर्वरा शक्ति कमजोर पड़ गल है, तो जान लें कि आपके कहीं ना कहीं फसल का पैदावार लेवे में समस्या आई। ऐसे बिया का चयन बढ़िया हो, विश्वसनीय दुकान से हो, दूसरा बीज शोधन सही से हो, तीसरा माटी का जांच सही समय पर, आपके जब जब जरूरत पड़े पैदावार घटे तो माटी का जांच करा लें, का कम है माटी में, जिंक है, सल्फर है, का कमी है, ओकर ओमन भरपाई हो जाए, ओमन खाद के माध्यम से उपूर्ति हो जाए जो उन्हें चीज का कमी है, और फिर अपन आप बढ़िया प्रजाति का ओमन बिया बेहन लगा करके बढ़िया पैदावार ले सकन है। देखें आजकल चौराई है, पालक है, धनिया है, ये कुल का बहुत बढ़िया बाजार में मांग है, चाहे वो लगन का बात हो तब या जो दैनिक उपभोक्ता जो खरीदत हम बाजारे में लोगों, तो ये हरियर सब्जी का तो देखें गर्मी में बहुत बढ़िया मांग है। और जौन सौदा तनी चमकाला, जौन सौदा तनी बोलाला, कहले का मतलब कहा हमरे चमकाला बोला का मतलब कि जौन तनी देखे में बढ़िया लगला, जैसे पालक बा, चौराई बा, धनिया बा, तो जेकर पत्ता तनी बढ़िया बा, चमकत है, साफ सफाई से ओके लगावल गल है, पर मतलब सजावल गल है बेचे बदे, तो ग्राहक भी दो पैसा बढ़िया देवे के तैयार होना। ऐसे किसान भैया लोगन का लाभ मिलला।

0: ऐसे ही कद्दू वर्गीय सब्जियन का खेती कैसे करल जा, एकरे बारे में आज जानकारी देत हवा डॉक्टर मनीष पांडे भैया। बात बत कही कैले हमारे रामकृष्ण मिश्रा जी, तो आवा हम कहब कि सुनल जा कद्दू वर्गीय सब्जियन में खेती कैसे कैल जा, जानकारी डॉक्टर मनीष पांडे भैया। बात बत कही का क्रम शुरू।
1: आज अपने पंचायती में डॉक्टर मनीष पांडे जी आयल हुआ, आप उद्यान वैज्ञानिक हुआ कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी में। तो डॉक्टर साहब आपसे आज ही जानल चाहब कि जोन कद्दू वर्गी तरकारी है तो इनकर खेती कौने तरीके से कल जाए जैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके। पहले तो ये बतावें कि कद्दू वर्गी तरकारी में कौन कौन तरकारी आवत है।
2: जी नमस्कार किसान भाइयों, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इस कद्दू वर्गीय फसलों में हम किन किन फसलों के बारे में जानकारी लेते हैं। जब कद्दू वर्गीय फसलों की बात करते हैं तो हम उसमें कद्दू हुआ जिसको कोहड़ा बोलते हैं हिंदी में, लौकी हुआ, करेला हुआ, तरोई हुआ, नेनुआ हुआ, और इसके साथ साथ आप देखेंगे परवर और कुंदरू। ये सारी सब्जियां हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत आती हैं और ये अपने पोषक तत्वों के लिए भी बड़ी जानी जाती हैं। साथ ही साथ इनका हम जब खेती करते हैं तो वर्ष भर में हमें कम से कम दो बार इनकी खेती करते हैं। एक तो आप गर्मी के सीजन में जब हम 15 फरवरी के बाद से लगा लेते हैं खेत को, जो अभी आज हमारे अभी किसान भाइयों के खेतों पे लगी होंगी, ये अब खत्म होने की अवस्था में होंगी। इसके बाद फिर दूसरा समय ये जो गर्मी वाला आता है, ये हम जब 15 जून के बाद से लेके जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक इसकी तैयारी करके हम इसको खेत में रोपित कर देते हैं। अब उसकी तैयारी हम किस तरीके से करें, इस चर्चा में हम आज उसको विषय को रखेंगे जानेंगे।
1: जी तो ये जैसे आप तैयारी की बात की ना, तो जैसे खेत है किसान का, तो खेत कौने तरीके से तैयार करे कि बहुत बढ़िया से जोन है फसल लग जाए।
2: जी बिल्कुल, देखिए खेत की तैयारी में हम किसान भाइयों को विशेष ध्यान ये रखना होता है कि जब इस बार अभी गर्मी की जब हम फसल लेने जाते हैं तो अभी आपका मौसम अगर खेत खाली है और मौसम गर्म रहता है तो हमें एक गहरी जुताई कर करके 7 से 10 दिन के लिए अपने खेत को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उसमें आप कल्टीवेटर और रोटावेटर से आप अपने खेत को बढ़िया से समतल करके तैयार कर लीजिए, और साथ ही साथ खेत की तैयारी के समय ही आप उसमें 20 से 25 टन FYM जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है उसको अच्छे से आप अपने खेतों में मिश्रित कर लें। साथ ही साथ सड़ी हुई गोबर की खाद को डालने के बाद इसमें हमको देना होता है कि जब आप बीज की बुआई करना होगा उस समय हमको NPK का पूरा विशेष ध्यान रखना होगा कि हम इसमें नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश की कितनी मात्रा डालें। तो ये अमूमन देखा जाता है कि 120 किलो नत्रजन, 80 किलो फास्फोरस, 80 किलो पोटाश हम खेत की तैयारी के समय डालते हैं। पर ध्यान ये हमें रखना है कि जो नत्रजन की पूरी मात्रा है उसको पूरा न डाल के आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा डाल दिया जाता है, और नत्रजन की जो आधी मात्रा बचती है जब हम उसको 25 दिन या 45 दिन के बाद जब उसमें निराई गुड़ाई करते हैं उस समय हम पौधों को दोबारा दिया जाता है।
1: तो मैंने इसे खेत की तैयारी कर ले
2: इस तरीके से।
1: विधि का रही लगावे का पौधा,
2: देखिए जब हम बात करते हैं जायद में या गर्मी वाली में तो उस समय तो हम अपना रेज बेड जो हमारा मेड़ी होती है, मेड़ी विधि पे ही किसान भाई लगा देते हैं। उसमें हमें समस्या बरसात के पानी की नहीं होती, पर अब जब ये गर्मी वाली जून जुलाई में हम जिस पौध को लगाने की आज बात यहाँ पे कर रहे हैं उस समय हमें बरसात से अपनी फसलों को बचाने के लिए, खास करके कद्दू वर्गीय फसलों को बचाने के लिए मचान विधि जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, मचान विधि का क्या कहते हैं उसमें उपयोग करना चाहिए, जिससे कि जो वर्षा का पानी हो आपके खेत में लगे तो आपके फलों को नुकसान न पहुंचे, अन्यथा वो हमारे किसान भाइयों को अच्छा खासा नुकसान देखने को मिलता है। और साथ ही साथ खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था भी बनाते हुए किसान भाई अपने खेती की तैयारी करें।
1: अच्छा, माने कि पौधा लगावे से पहले, बीज लगावे से पहले खेत कैसन तैयारी कर दे कि जल निकास की व्यवस्था भी बढ़िया रहे,
2: सुचारू रूप से रहे
1: ए समय जोन लगे हुए।
2: जी जी बिल्कुल।
1: तो मान ले कि खेत का तैयारी हो गल, अब उन्हें किसान के बीज लगावे के है, तो बीज का चयन कैसन करें, कौन उन्नतशील प्रजाति हो जेकर इस्तेमाल करें जिससे बढ़िया लाभ मिल जाए।
2: देखिए कद्दू वर्गीय सब्जियों में तो हमने बताया आपको बहुत सी सब्जियां आ गई, लेकिन विशेषता हम आपको कोहड़े के बारे में बताएंगे। कोहड़े के बारे में जैसे आपके नजदीकी संस्थान भारत बनारस में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, वहाँ की काशी हरित एक प्रजाति है। साथ ही साथ हमारे आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय जिसके द्वारा हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जुड़ा हुआ है, वहाँ

0: की प्रजाति नरेंद्र आभूषण है और पूषा विश्वास जो कि आपकी नई दिल्ली की प्रजातियां हैं। ये सारी प्रजातियां बड़ी अच्छी प्रजाति हैं जो रोगों से अवरोधी भी हैं
1: अच्छा।
0: और इनकी उपज भी अच्छी होती है। ये कम से कम 30 से 40 कुंटल तक की उपज इनकी आपके पास रहती है। और इसको आप लगाने के लिए अब इसमें हमें ये ध्यान देना है विशेष कि आप इसमें बीज की दर कितनी हमारी लगती है। तो ये आप जान लीजिए 1.5 से 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर है। और किसान भाई जब भी बीज लगाने की तैयारी करते हैं उस समय आप बीज को रात भर पानी में भिगो करके रखें और सुबह हम इसकी बुआई अपने खेतों में, आपके खेतों में अच्छी खासी नमी होनी चाहिए, नमी बरकरार रहे तो जमाव आसानी से हो जाता है, उस समय हम इसकी बुआई कर दी जाती
1: अच्छा,
0: है।
1: कुछ किसान जैसे अगर अपने ही पौधा से, अपने ही पौधा से जो तैयार रहो बीज अगर होकर इस्तेमाल करल चाहे तो कैसे बीजों के रखें, मतलब कौन स्थिति में कौन अवस्था में वो बीज के रखें।
0: देखिए इसमें होता क्या है कि हमारे किसान भाई जब बात हम प्रजातियों की करते हैं तो वो तो अपना बीज वो बना सकते हैं, अन्यथा जब हम किसान भाई बाहर से संकर प्रजातियों का चयन करते हैं तो संकर प्रजातियों का हम एक वर्ष में एक ही बार उसका उपयोग कर सकते हैं, हम उसको दूसरे सीजन में नहीं लगा
1: अच्छा।
0: सकते हैं। क्योंकि आप उसको अगर बीज तैयार करके आप दूसरे सीजन में आप लगाते हैं तो उसमें पृथक्करण हो जाता है, उसमें
1: अच्छा।
0: नर और मादा जिस अपने मातृत्व का कैरेक्टर लेकर वो आया
1: दोनों
0: हुआ
1: रंग
0: है
1: कम हो
0: वो
1: जाए।
0: दोनों में अलग अलग हो जाता है, जिससे कि आपको उपज खराब हो जाती है और लागत आपकी बढ़ जाएगी। इस वजह से जब हम प्रजातियों की बात करते हैं तो प्रजाति अगर आपके पास है कोई, जैसे हमने काशी हरित की नाम लिया और आपका नरेंद्र आभूषण का नाम लिया, अगर आप इन प्रजातियों का चयन किए हुए हैं तो आप इसमें जो फल आपके स्टार्टिंग में बन जाते हैं पहली तुराई करने के बाद, दूसरी तुराई के बाद आप फल को अपने अच्छी तरीके से उसको 2, 4, 10 पौधों को आप सेलेक्ट
1: छाट
0: करके रख लीजिए,
1: लें।
0: छाट के रख लीजिए, उनमें से उस पौधों पे उन फलों को छोड़ दीजिए, उसको विशेष रूप से रख करके उसका बीज निकाल करके तैयार करके वो किसान भाई उसका उपयोग कर सकते
1: तो
0: हैं।
1: माने फलत वैसे ही आई।
0: फलत तब उनकी प्रजातियों की फलत वैसे आएगी जो संकर प्रजातियां हैं जो किसान भाई लगाते हैं उनके बीज को वो दोबारा अपने यहाँ तैयार करके ना लगाए, हम ये
1: अच्छा।
0: सजेस्ट करते हैं।
1: अच्छा, मान लें बीज लग गल, पौधा बढ़वार पर आ गल, अब जो उन्हें खाद का इस्तेमाल करे के है किसान के, तो वो कौन तरीके से करें।
0: देखिए जब पौधा आपका 2 से 4 पत्ती की स्टेज पे हो जाता है, जब आपका कद्दू वर्गीय फसलें होती
1: जी
0: हैं, तो हम तो पहले तो खाद के प्रबंधन खेत की तैयारी के समय हमने कर ही लिया अमूमन।
1: हाँ
0: इस समय हम फिर क्या करते हैं, 19-19-19 इसको क्या कहते हैं, आप पानी में घोल करके, ये पानी घुलनशील खाद है, इसको आप पानी में घोल करके आप हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर पे 15 से 25 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तो उस पे आप ये लगातार छिड़काव आप करते रहते हैं
1: टॉप ड्रेसिंग के
0: टॉप
1: रूप में।
0: ड्रेसिंग के तौर पे, तो ये आपके पौधों को भी स्वस्थ रखता है साथ ही साथ फल बनने में और फूल बनने में अच्छी सहायता मिलती है।
1: अच्छा, 19 किलो का।
0: 19-19-19 नाम से है,
1: हाँ
0: इसमें 19-19% आपका एनपीके होता
1: अच्छा।
0: है जो कि आपके पौधों को डायरेक्ट मिल जाता है, वो जड़ के माध्यम से ना
1: प्रतिशत
0: मात्र
1: के हिसाब से।
0: पत्तियों के माध्यम से वो पौधा अवशोषित कर लेता है,
1: ठीक।
0: उनको मिल जाता है। और साथ ही साथ इसमें कद्दू वर्गीय फसल में एक समस्या कभी कभी किसान भाइयों को ये आती है कि जो अभी जैत वाले फसल में या फरवरी में किसान भाई हमारी बुआई करते हैं जिस समय आपका दिन छोटा और क्या
1: रात
0: कहते हैं
1: भर।
0: बड़ी होती है, जहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा वो होता है, उस समय आप देखेंगे कि फलों की संख्या ज्यादा होती है। तो अभी उसमें किसान भाई घबराते हैं कि सर हमारे यहाँ फूल बहुत आ रहा है और फल नहीं टिक रहा है, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं होती क्योंकि आप के कद्दू वर्गीय फसलों में नर और मादा पुष्प दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए जो अभी आपका इस समय गर्मी वाली फसल की जो तैयारी कर रहे हैं इसमें आपका उपज बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसमें आपके मादा पुष्प भी ज्यादा
1: ज्यादा।
0: आएंगे और ठंडी में हम देखते हैं कि हमारे नर पुष्प ही ज्यादा आते रहते हैं जिसकी वजह से हमको उस
1: उत्पादन कम
0: रेशियो में
1: होता
0: उत्पादन
1: है।
0: नहीं मिलता है और ये गर्मी में ये अनुपात अच्छा हो जाता है।
1: तो ऐसे ये खाद का इस्तेमाल करें का, एकरे अलावा जैविक खाद भी कुछ
0: देखिए
1: दे।
0: जैविक खाद में भी अगर आप जैविक तरीके से कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत है, नीमास जीवामृत है, बीजामृत है, घन जीवामृत है, जो किसान भाई करना चाहते हैं इसका भी ये तो बहुत अच्छी बात है, उनको करना भी चाहिए। खेत में सिंचाई के समय आप जीवामृत को अपने खेत से सींच दें और बुआई से पहले अपने बीज को बीजामृत से भी ट्रीटमेंट कर दें, तो इन सब खादों का भी उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ खेत की तैयारी के समय ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग वो कर भी सकते हैं। ये सारे
1: ट्राइकोडर्मा बीज शोधन बदे ही रहे
0: हाँ
1: कि मृदा शोधन बदे भी कर
0: नहीं,
1: सकते?
0: मृदा शोधन भी आप कर सकते हैं, उससे बीज शोधन भी कर सकते हैं। मृदा शोधन जब आपको

0: करना है, तो जो हमने आपको बताया था FYM, उसी में आप उसको मिला कर करके
1: अच्छा
0: एक साथ ही आप अपने फील्ड
1: डाल
0: में उसको
1: डाल
0: अप्लाई
1: दें।
0: कर सकते, डाल सकते हैं।
1: अच्छा, तो ये तरह से मैंने खाद उर्वरक का प्रबंधन करा, सिंचाई की व्यवस्था कैसे करा?
0: जी देखिए, सिंचाई भी एक महत्वपूर्ण अंग है इस खेती का। जब बरसात में हम लोग बात करते हैं सिंचाई की, तो बरसात में देखिए अमूमन आपको वर्षा होती रहती है और पानी की आवश्यकता उतनी पौधों को नहीं पड़ती है। लेकिन अगर देखा जाए आमतौर पे 6 से 7 दिन के अंतराल पर आपको वैसे भी एक हल्की सिंचाई अपने खेतों में देनी चाहिए। अगर बरसात नहीं हो रही है और वर्षा है, तो आप वर्षा के आधार पर ही अपने खेतों पे सिंचाई का ध्यान रखें,
1: माने कि जैसे बरसात होता है वो हिसाब
0: उसी
1: से
0: हिसाब से सिंचाई
1: पानी
0: रखें। क्योंकि कभी
1: व्यवस्था
0: कभी
1: करना
0: वर्षा का अंतराल भी बढ़ जाता है,
1: बढ़
0: 10 दिन 15 दिन तक
1: जाए।
0: बरसात नहीं होती है,
1: हाँ,
0: तो उन
1: तो
0: बीच में आप
1: ओगर ही
0: हल्की
1: थोड़ा सा पानी
0: सिंचाई,
1: ले
0: आप हाँ
1: लें।
0: बिल्कुल व्यवस्था देखिए सिंचाई की।
1: अच्छा, रोग कीट मा कैसा लगा था, ओकर कैसे नियंत्रण हो?
0: हाँ देखिए, अगर कद्दू में कद्दू वर्गीय फसलों में अगर हम बात करें, तो कद्दू का एक लाल कीड़ा जिसको हम लोग रेड पम्पकिन बीटल बोलते हैं,
1: जी
0: ये बहुत ही खतरनाक कीड़ा है। ये अभी इस सीजन वाले में तो कम आता है, लेकिन आप जब हम फरवरी वाली फसल जब इसमें हम लगाते हैं कद्दू में, उस समय इसका प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है।
1: अच्छा
0: और ये प्रकोप जब क्या कहते हैं आपकी फसल की 2 से 4 वाली पत्ती वाली अवस्था रहती है, उस समय ही सबसे ज्यादा रहता है। और ये पत्तियों को खा करके खत्म कर देता है, जिससे कि आपके पौधे कमजोर हो जाते हैं। अगर इसकी रोकथाम के लिए देखना है, तो इसमें हमको डाइक्लोरोवास 76 EC 1.25 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से 7 से 10 दिन के अंतराल पर इसको आप एक इस
1: छिड़काव।
0: छिड़काव करते रहते हैं, जिससे इन कीड़ों से आपका बचाव हो जाता है। अन्यथा इससे आपको आपकी इनिशियल स्टेज पे ही आपकी फसल खराब होने की
1: खराब हो
0: ज्यादा समस्या रहती है।
1: गई।
0: दूसरा आता है एक फल मक्खी कीट। ये फल मक्खी कीट करता क्या है, जैसे ही आप जो इसका प्रौण होता है कीट का, ये आपके फलों पे जाकर के अंडा दे देता है। और अंडे ही जहां पे अंडा देगा, वहां से आप देखेंगे आपके फल वहां से टेढ़ा होने शुरू हो जाएंगे, वहां दाग बनना शुरू हो जाएगा, साथ ही साथ वहीं पे ही आपका फल सड़ना शुरू हो जाता है। इसके बचाव के लिए भी हमको क्लोरोट्रानिप्रोल एक दवा आती है जो बहुत ही कारगर है, 18.5 EC, जिसको जिसका अगर डोज हम की बात करें तो 0.25 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर किसान भाई इसका स्प्रे करते हैं, तो इस कीट से भी उनको निजात मिल जाती है। जी,
1: अच्छा।
0: और बात रोग की अगर करते हैं, तो रोग इसमें देखिए एक चूड़िल आशिता आता है और एक मृदुल आशिता, दो रोग आता है, और दोनों ही एक कवक जनित रोग है। और इसको अगर
1: लक्षण
0: आप
1: कर रही है क्या?
0: इसमें लक्षण आप देखेंगे, अगर चूड़िल आशिता की बात करते हैं, तो ये जो प्रथम लक्षण है, पत्तियों के तीनों सतह पे सफेद और गंगूरे धूसर रंग के ये धब्बे आए इस पे दिखाई देना पड़ जाते हैं। और इस धब्बे को आप दिखाई जब दे भी दिखाई दे, तो आप समझ लीजिए कि इस पे आपका इस रोग का प्रकोप होना
1: हो
0: शुरू हो गया है।
1: गया।
0: तो इसकी रोकथाम के लिए हमें थायफेनेट मिथाइल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, ये कवक नाशी आपकी दवा है, इसका स्प्रे आप कर दीजिए। और ये भी आप दो वही 1 हफ्ता 10 दिन के अंतराल पर आप करते रहेंगे, तो इस रोग से भी आपको निजात मिल जाएगी। विशेष ध्यान ये देना है कि रोग जब आपको खेत में एक दो ही फसलों पे देखे, तभी इसका उपचार
1: तबे
0: करना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो ये बहुत तेजी से ये
1: फैल जाए।
0: फॉर्मआउट
1: मने
0: बोलता है।
1: सचेत होए का जरूरत है,
0: हाँ
1: किसान बराबर अपने खेत पे जाके निगरानी करत रहे, देखत रहे अपने पौधन फसल के। जब भी ऐसा रोग कीट का प्रकोप हो
0: हाँ
1: तो तुरंत
0: सतर्कता
1: जो ना सतर्कता
0: बिल्कुल
1: से एक नियंत्रण करें।
0: बिल्कुल
1: तो डॉक्टर साहब, आज आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देना कि कद्दू वर्गी जो भी तरकारी है उनकर कैसे बढ़िया से खेती करें, ये विषय पे जानकारी देवे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष पांडे जी के बात बत कही करतना रामकृष्ण मिश्री आवाए। अब झुरे झुर नहीं, इतना बढ़िया जानकारी के बाद मन फेर हो जाए, उसे पहले सुन लेवल जाए एक संदेश।

देखें ये मन फिर रहल है राहुल कुमार मौर्या का, जौन दादरा विधा में अपन मन मनसायन करावत रहना है। आ देखा सनेस भी होगल, मन फेर भी होगल आ जानकारी भी होगल, लेकिन यह उम्मीद आ विश्वास हम करीला कि सब पढ़ें सब बढ़ें, प्रगतिशील किसान के रूप में सबकर आय बढ़े, सबकर पैदावार बढ़िया मिले, सबके जीवन में खुशहाली आवे, एकरे बदे देखें जो हमन का दैनिक दिनचर्या का काम हो वो मन तनी सा निखार लिया के पड़ी, तनी सा वैज्ञानिक तकनीक अपनावे के पड़ी आ तनी अपन संगत बढ़िया करे के पड़ी, काहे कि संगत का भी बहुत असर पड़ला। तो देखें घड़ी का सुई इशारा करत है कि आज कार्यक्रम पे इतना समेटल जा, तो पंचों राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की। गीत के बोल लिखे हैं अहमद अनीस और कुमार ने। संगीत है जवाद अहमद शारिब तोशी का।

अगली आवाज़ें आप सुनेंगे AR रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत है AR रहमान का, फिल्म का नाम है रॉकस्टार।

इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार देवेंद्र कुमार पांडे पुत्र नीरज कुमार पांडे निवासी CK 65/281A बड़ी पियरी चौक वाराणसी, ये दिनांक 27 जनवरी 2025 की सुबह 8 बजे से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 19 वर्ष, कद 5 फीट 10 इंच, दोहरा बदन, रंग गोरा है। इनके विषय में यदि कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया अपने नजदीकी थाने को अथवा थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। अगली सूचना, थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार मुस्कान परवीन पुत्री इसरार अहमद मकान नंबर C 15/114 लल्लापुरा पोखरा माता कुंड सिगरा की निवासी हैं। ये दिनांक 20 मई 2022 दिन शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे से लापता है। इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं, उम्र 20 वर्ष, कद 5 फीट, शरीर सामान्य, चेहरा गोल और रंग गोरा है। आखिरी बार देखे जाते समय इनका पहनावा लाल कुर्ती और पैजामा था। इनके विषय में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया अपने नजदीकी थाने को अथवा थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: अपना कार्ड दे। पिन दे।
1: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नितिन मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज लखनऊ के जनभवन के गांधी सभागार में प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान

0: नौच की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ सभी नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर के 18 विषयों की कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 1,92,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रिकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। धार्मिक महत्व के अलावा सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेन मिश्र ने आज अयोध्या में समिति की बैठक के बाद बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अब परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कार सेवकों की याद में बन रहा भव्य शहीद स्तंभ 15 जून तक तैयार हो जाएगा तो सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है। यही नहीं, परिसर में निर्मित हो रही आधुनिक म्यूजियम, 7D गैलरी और आकर्षक फसाद लाइटिंग की सुविधा श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक आनंद का अनुभव कराएंगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय।

0: ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। विभिन्न जिलों में जन जागरूकता रैलियों और संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हमीरपुर में मीडिया डे का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने स्वगणना की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे जनगणना जैसे महत्वपूर्ण अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मदर्स डे के अवसर पर स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर फ्री वुमेन भारत यात्रा आनंदी माँ एक जीवन बचाओ अभियान रैली का आज लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की मजबूती का आधार है। समय पर जांच और जरूरी सावधानी बरतने से कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। रैली में करीब 150 लोगों ने सहभागिता कर महिलाओं की सेहत, कैंसर जागरूकता और स्वास्थ्य भारत के संकल्प को लेकर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। 1857 के पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा और क्रांति दिवस के उपलक्ष में आज मेरठ में जिलाधिकारी की अगुवाई में गांधी आश्रम से शहीद स्मारक तक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में सिविल डिफेंस, स्वयंसेवकों, आम जनमानस, स्कूली छात्राओं, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर अमर शहीदों और वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये महासमर पराधीनता की बेड़ियों को छिन्न भिन्न करने का साहसिक और संगठित प्रयास था, जिसने संपूर्ण राष्ट्र में आजादी की अलख जगाई। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का रुख बदल गया है। हल्की बारिश के बाद अब दिन के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य में आज से 14 मई के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव होने से कानपुर, आगरा और लखनऊ सहित आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 1,92,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेन मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। आज की प्रस्तुति अरुण पांडे और सना सलीम की है।

0: अरुण जी, आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का एक बार फिर से नमस्कार।
1: और पहले हर बात पे आती थी हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती।
0: जी, और ये... आज क्या है अरुण जी खास?
1: आज खास क्या है ये तो आप बताएंगे, क्योंकि तमाम जो खास चीजें होती हैं वो गुड मॉर्निंग में ही आती हैं।
0: आज है मदर्स डे। जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं उन सभी को मदर्स डे की शुभकामनाएं। अपनी माँ का बहुत ख्याल रखिए, यही आज के दिन संदेश देना चाहेंगे हम। तो अरुण जी, अब जो है मेल जो है हमारे पास बहुत सारे हैं, और ये जो मेल हमें मिला है ये फोटो क्लिक करके उन्होंने भेजा है, और भेजने वाले हैं परशोत्तम कुमार।
1: ये पहले भी एक आध बार उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन बीच में इनके जो एक आध मेल आए थे वो लिखे हुए आए थे। तो परशोत्तम जी से हम ये कहेंगे कि पहले ये बताएं कि सभी लोग पुरुषोत्तम होते हैं, यानी पुरुषों में उत्तम, ये परशोत्तम है और इधर के हैं भी नहीं, ये शायद जम्मू साइड के कहीं के हैं।
0: हाँ, जम्मू कश्मीर के हैं।
1: जी जी, तो उधर में ये पुरुषोत्तम जो है परशोत्तम हो गया होगा, बोलचाल में होता है। तो आप टाइप करके लिखते रहेंगे तो हमें भी खुशी होगी कि आप तकनीक के साथ जुड़े हुए हैं, और आपको सहूलियत होगी कि पहले कागज पे लिखना और उसके बाद फिर उसको फोटो खींचना फिर भेजना, तो इन दुश्वारियों से आप बच सकते हैं। सना सलीम जी आपके इस फोटो को आवाज दे रही हैं।
0: जी, ये इन्होंने हमें मेल अरे मैसेज किया है, गांव डंडी तहसील भद्रवा जिला डोडा जम्मू कश्मीर से लिख रहे हैं, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मैं आपका नियमित श्रोता हूं और मैं ये कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुनता हूं। शाम को 7:30 बजे वाराणसी और लखनऊ केंद्र से पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम एक साथ चलता है। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का समय बदले ताकि हम बारी बारी दोनों कार्यक्रमों को सुन सकें।
1: इसीलिए इन्होंने लिखा था कि ध्यान से सुनते हैं, इनको दो पत्र के लिए धन्यवाद एक साथ सुनना पड़ता है। अब देखिए, ये चीज तो है कि कई बार 7:30 बजे शाम को बहुत सारे और भी चीजें होती होंगी, थोड़ी सी दुश्वारी ये होती है कि हम लोग कहीं भी कोई समय ले जाते हैं बहुत सोच समझ करके, पूरा एक शेड्यूल होता है, तो ऐसे में फिलहाल तो ये संभव नहीं है। लेकिन एक बात आपको ये बताएं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है वो आकाशवाणी वाराणसी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी रहता है, तो आप चाहें तो बाद में भी, हालांकि हम तो चाहते हैं कि आप हमें लाइव सुने जब ये प्रोग्राम हमारे यहाँ से प्रसारित होता है, लेकिन अगर कुछ मिस हो जाए दोनों ही जगहों को सुनते हुए, तो आप हमारे आकाशवाणी वाराणसी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी प्रोग्राम को एक दो रोज के बाद या उस दिन भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो शुक्रिया, उम्मीद करेंगे कि आप ये कार्यक्रम के साथ साथ बाकी कार्यक्रम भी सुनेंगे और सुनते होंगे, और उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया अगले मेल में जरूर लिखेंगे,
0: और मेल में लिखेंगे, फोटो क्लिक करके नहीं भेजेंगे।
1: जी,
0: अगला ये जो मेल है ये है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का। शिकायत और बधाई के साथ ये लिख रहे हैं कि वाराणसी वाइब्स में जब भी निराली निवेदिता आती है मेरा मैसेज वो नहीं शामिल करती है। उनको मैं पहले के प्रोग्राम में कई बार व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा, शामिल नहीं किया।
1: तो इस प्रोग्राम के जरिए हम ये कहें कि सुरेश जायसवाल जी हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, और प्रायः ये बड़ी बात है कि वर्षों से हर प्रोग्राम में वो चाहे पहले फोन इन हो, पत्रों पर आधारित हो, और आजकल सोशल मीडिया के द्वारा इंटरनेट पर ये जो तमाम प्रोग्राम होते हैं सुरेश जी जुड़ते हैं। तो आप जैसे श्रोताओं का और सभी का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, निराली निवेदिता तक आपकी बात हम लोग पहुंचा देंगे और वो प्रोग्राम ये सुन रही है, तो उम्मीद है कि वो इस बात का ख्याल रखेंगे।
0: फेसबुक पर कभी कभी गुड इवनिंग का मैसेज शामिल करती हैं। उनको मुझसे क्या एलर्जी है ये मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने वाराणसी वाइब सुनना ही बंद कर दिया। समय निकालकर 30 मिनट कार्यक्रम सुनना, इसके बावजूद मुझे शामिल नहीं करना, ये मुझे पसंद नहीं।
1: अब चूंकि हम लोग सभी रेडियो सुनते सुनते रेडियो में आए हैं, तो इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं कि एक श्रोता जब घर बैठे हुए जब वो रेडियो से जुड़ा नहीं होता है प्रेजेंटर के रूप में, तो उसकी चीजें प्रतिक्रिया खतों के जरिए या मेल के जरिए अभी फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए अगर उसने वक्त पे भेजा है और वो शामिल नहीं होती और प्रोग्राम पूरा इंतजार करना पड़ता है, तो थोड़ा सा मन को तकलीफ होती है और आपकी तकलीफ हम लोग समझ सकते हैं, ऐसा न हो आइंदा इसका हम लोग ख्याल रखेंगे।
0: और थोड़ी सी दिक्कत ये भी होती है ना अरुण जी कि जब लाइव प्रोग्राम जाता है तो उसमें लाइव के जो कमेंट्स आते हैं वो पढ़ना और साथ में व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल तो
1: ये
0: होता
1: जरूर है,
0: है
1: कि ये कह रहे हैं कि 2-3 प्रोग्राम इन्होंने ऐसा आकलन किया है तो कुछ महसूस किया है इन्होंने, तब इन्होंने ये बात लिखी है।
0: आगे लिखते हैं कि 22 मार्च को शैलेश दुबे द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना जो हम लोगों को बेहद पसंद आया, उनके प्रोग्राम पेश करने का मनमोहक अंदाज बहुत प्यारा लगता है, इसके लिए शैलेश दुबे को बहुत बहुत बधाई। 22 मार्च को ही आरोग्यम में अंकित कृष्ण अग्रवाल से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत हार्ट अटैक पर सुना, बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई, इसके लिए डॉक्टर साहब और शिखा श्रीवास्तव को बहुत बहुत बधाई।
1: तो आपकी बधाई आरोग्यम कार्यक्रम के लिए डॉक्टर तक और शिखा श्रीवास्तव तक पहुंच रही है।
0: इसी दिन श्याम मोहन अस्थाना की लिखी झलकी

0: एक खबर झूठी आज इतवार है कार्यक्रम में सुना, जिससे हम लोगों का भरपूर मनोरंजन हुआ। इसके लिए लेखक, प्रस्तुतकर्ता और कलाकारों को बहुत बहुत बधाई। उसी दिन स्नेहा सिंह और अरुण भैया द्वारा प्रस्तुत पीकेएलडी सुना, बहुत प्यारा लगा। उस दिन मेरा ईमेल तो नहीं शामिल हुआ, फिर भी श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ईमेल को सुनकर अच्छा लगा। इसके लिए स्नेहा सिंह और अरुण जी को बहुत बहुत बधाई।
1: तो बहुत शुक्रिया कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया। स्नेहा जी को भी ये जानकर सुनकर अच्छा लगेगा। और होता यह है कि बहुत सारे हम लोग इस कार्यक्रम में एक दिन में 5-6-7 ही मेल शामिल कर पाते हैं उनके आकार के मुताबिक, और फिर कुछ श्रोताओं के मेल जो है वो अगले एक आध हफ्ते बाद जरूर शामिल होते हैं। लेकिन हर मेल हम लोग हिफाजत से रखते हैं और जरूर शामिल करते हैं। तो ये बात दोहरा दें कि कभी भी एक मेल कोई भी श्रोता हो दोबारा न भेजें। उससे क्या होता है कि उसके शामिल होने का एक थोड़ा सा अंदेशा जो है वो बन जाता है।

0: उससे क्या होता है कि उसके शामिल होने का एक थोड़ा सा अंदेशा जो है वो बन जाता है। तो अपना मेल जब भेजें, नए नए मेल हर हफ्ते भेजें और वो क्रमशः शामिल होते रहेंगे।
1: आगे लिखते हैं कि 1 मार्च को सना सलीम और अरुण पांडे द्वारा प्रस्तुत पीके अल्ली सुना बहुत दिनों बाद। सना की हंसी और पत्र पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। अरुण भैया के जवाब देने की शैली बहुत पसंद आती है। अच्छी प्रस्तुति के लिए सना और अरुण जी को बहुत बहुत बधाई।
0: तो बहुत शुक्रिया कि आपको सना जी का ये जो आगमन हुआ एक अंतराल के बाद, वो आपको इनका अंदाज पसंद आया। सना जी की जानिब से भी हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं।
1: नहीं नहीं, बहुत
0: क्योंकि
1: बहुत
0: वो तो अपनी
1: सुरेश जी
0: मुस्कान के जरिए आपको शुक्रिया कह ही रही हैं।
1: आगे लिखते हैं कि 2 मार्च
0: दो
1: को,
0: तीन बार शुक्रिया हो गया सुरेश
1: दो तीन
0: जी।
1: बार चौथी बार हो गया। आगे लिखते हैं 2 मार्च को अंजना दीदी द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र आपके गीत और 3 मार्च को किरण दीदी द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना। बहुत प्यारे प्यारे गीत सुनने को मिले, दिल खुश हो गया। इसके लिए अंजना जी और किरण जी को दिल से धन्यवाद।
0: तो ये दोनों ही प्रोग्राम आपको पसंद है और इसमें जरूर आपके नाम शामिल हुए होंगे और हम सबको ये ख्याल रखना चाहिए।
1: 4 मार्च को अनुपम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना। होली के रंगों में सराबोर गीत सुनकर आनंद आ गया। बहुत सारे ईमेल में नामों को सुनकर अच्छा लगा। सफल प्रस्तुति के लिए अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 8 मार्च को स्वस्ति श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत लोक रंग सुना। अच्छे अच्छे लोकगीत सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। बहुत सारे मैसेजेस उन्होंने शामिल किए। अच्छी सफल प्रस्तुति के लिए स्वस्ति श्रीवास्तव को बहुत बहुत बधाई।
0: तो ये जो तमाम प्रोग्राम आपने सुने उसके लिए बधाई। स्वस्ति श्रीवास्तव, अंजना जी, किरण जी और अनुपम गुप्ता तक पहुंच रही है, बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए।
1: अगला ये मेल है रंजीत कौर और रवि कुमार राहुल का, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से।
0: हमें लग रहा है इन्होंने पहली बार भेजा है। और क्या कहते हैं?
1: लिखा है इन्होंने कि रेडियो के साथ उठता हूँ, इसी के साथ सोता हूँ।
0: हाँ, पहले सोते होंगे रेडियो के साथ, तब उसको लिए हुए उठते होंगे।
1: जब सुनता हूँ नाम अपना तो बहुत खुश होता हूँ। खुश हो रहे होंगे,
0: यानी रेडियो सुनते सुनते सुबह होती है और
1: शाम होती है। कभी फरमाइश पूरी ना हो तो मायूसी में आपा खोता हूँ।
0: नहीं, आपा नहीं खोना है। आपा खोने में बहुत सारे हमारे श्रोता रेडियो पटक देते हैं, तो टूटने का डर होता। हम चाहते हैं कि आपका रेडियो या ऐप या मोबाइल सही सलामत हो ताकि आप हमें सुनते रहें। थोड़ी बहुत नाराजगी हो तो उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया करें।
1: मेरा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। जी हाँ जनाब, मैं रेडियो श्रोता हूँ।
0: ये बड़ी बात है सचमुच कि रेडियो की जो परंपरा है वो आप जैसे श्रोताओं ने बनाए रखी है और इसकी महत्ता इसी बात से है। लेकिन ये हम आपको कहें कि आप हमारे इस प्रोग्राम में पहली दफे आए, आपका स्वागत है। और इसी प्रकार अपने मेल कार्यक्रमों के मुतालिक जरूर उसमें उसके बारे में बातें लिखें। आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा जिसमें आप हमारे तमाम प्रोग्राम जो दोनों ही चैनलों के हैं उनको सुनेंगे और उसके बारे में अपनी राय हम तक पहुँचाएंगे।
1: अगला ये जो मेल है ये हमें मिला है सोन वर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से, अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर का। लिख रहे हैं दिनांक 26 अप्रैल 2026 को अरुण पांडे सर द्वारा हेलो फोर इन फरमाइश कार्यक्रम बहुत अच्छा था और उसी दिन लोक रंग कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था।
0: तो ये जो प्रोग्राम आपको पसंद आया इसके लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं और यूं ही बाकी प्रोग्राम सुने और उसके बारे में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाए।
1: अगला ये जो मेल है ये है असगर अली का शिवपुर से।
0: जी,
1: लिख रहे हैं समझ के समझो, समझ के समझो, समझ के समझना ही समझ है।
0: ये थोड़ा सा जो मुहावरा है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा उसका बदला हुआ रूप है, ये उसका असगर अली वर्जन है।
1: समझ के भी जो ना समझा, मेरी समझ से वो ना समझ।
0: हाँ, ये अभी तक मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि आप कहना क्या चाहते हैं, शायद अब समझ में आएगी।
1: हाँ, और अरुण जी ये जो लाइन्स इन्होंने लिखी है संस्कृत में, ये आप ही पढ़े सो ज्यादा बेहतर होगा।
0: नहीं, ये बहुत प्रसिद्ध लाइनें हैं, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और इसका अर्थ ये होता है कि अंधकार से उजाले की ओर जाने की जो बात है, और ये संस्कृत का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है।
1: अरुण भाई, ये श्लोक जब मैं कक्षा 6 में जेपी मेहता कॉलेज में पढ़ रहा था 1955 में, ये प्रार्थना में पढ़ा जाता था। प्रार्थना तो पूरा याद है लेकिन मतलब न समझ पाया,
0: तो
1: प्लीज
0: मतलब
1: इसका
0: तो,
1: मतलब बता दीजिए।
0: ये मतलब तो हमने बता दिया कि आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की ईश्वर से प्रार्थना है। और सवाल की तरह इसी बात को वो कह रहे थे कि समझ के समझने वाली बात है।
1: जैसे हम ये डिजिट्स नहीं समझ पाते हिंदी के
0: जो हिंदी वाले हैं। अच्छा, गूगल अभी भी बहुत सारी जगहों पर अगर आप 14 लिखें 1-4 वाला रोमन का इस्तेमाल करके तो वो पुराने जमाने का 14 लिख देता है।
1: जी, आगे लिखते हैं कि कार्यक्रम के बारे में।
0: जी,
1: आगे इन्होंने कार्यक्रम के बारे में नहीं लिखा। हाँ, ये कार्यक्रमों के बारे में इन्होंने लिखा है। कार्यक्रम तो आजकल सब अच्छा चल रहा है
0: जी।
1: सुबह 5:54 से रात के 11 बजे तक के कार्यक्रमों में सबसे अच्छा कार्यक्रम मुझे 10:30 से 11 बजे तक का कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत लगता है।

0: इसमें बांसुरी का अंतरा तबला के संगत के साथ जो होता है उस आवाज में एक अजीब सा नशा होता
1: अच्छा,
0: है।
1: यानी सिर्फ क्लासिकल जो म्यूजिक है उस प्रोग्राम में सिर्फ बांसुरी वादन का ये लुत्फ लेते हैं, आनंद लेते हैं। अच्छा, उसमें जब सितार वायलिन ये सब चीजें होती हैं तो क्या आपको लगता है वो भी हमें बताइएगा?
0: निकल जाता है
1: अच्छा
0: अपने आप, जिसकी तारीफ शब्दों में नहीं की जा सकती। तबला वादक नरेंद्र घोष और बांसुरी वादक एके आकाश, ज्यादातर यही कार्यक्रम सुनता हूँ, वही हमको ज्यादा पसंद है।
1: ये जरूर असगर जी बताइएगा कि जो मेल आप लिखवाते हैं उनका भी नाम जरूर हाँ, लिखिएगा, और ताकि उन तक भी हम लोग बधाई और आभार प्रकट कर सके कि असगर जी के जो बताए हुए अल्फाज हैं वो आप टाइप करके इंटरनेट के जरिए हम तक पहुंचाते हैं।
0: आगे लिखते हैं कि फरमाइशी गाने के अंतरे में गाने के गले पर छुरी चलने का काम आप भी करते हैं, बहुत दुख होता है।
1: ये कई बार ये होता है कि नाम इतने ज्यादा आते हैं, फरमाइशें पूरी करनी होती है, खासतौर से व्हाट्सएप के प्रोग्राम में, या जैसा अभी सना जी ने वाराणसी वाइब्स वगैरह के बारे में कहा, तो हम लोग ये चाहते हैं कि श्रोताओं के जो मैसेजेस हैं उनके नाम है वो शामिल
0: वो
1: हो जाए, वरना बहुत सारे श्रोताओं को निराशा होगी अगर हम पूरे 5-7 मिनट पूरा गाना सुना देंगे और नाम रह जाएंगे तो।
0: जी, आगे लिखते हैं कि कुछ दिन पहले गजलों के कार्यक्रम नाम याद नहीं रहा, उसमें अनाउंस किया गया था कि बेगम अख्तर की आवाज में गजल सुनिए, लेकिन जो आवाज सुनाई दी वो आवाज मर्दाना लगी। गजल का नाम मेरे हमनफस मेरे हमनवा,
1: मुझे दोस्त बनकर दगा न दे,
0: वो समझ
1: बड़ी प्रसिद्ध गजल है और बेगम अख्तर की आवाज में, और गजल साम्राज्ञी उन्हें कहा जाता है। ये कहें कि ऐसा कभी कभी त्रुटि हो जाती है, लेकिन जब हम कोई प्ले करके गाना या कोई भी आइटम जब हम सुनते हैं तो पहला श्रोता तो अनाउंसर या प्रेजेंटर खुद होता है, तो इस बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए। असगर जी, ये जो गलती हुई है उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं
0: जी। और आखिर में इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि पुराने आसिफ अली की गजल कैदे गमे हयात बजाने की मेहरबानी करें, पुराने आसिफ अली की गजल का एल्बम बजने की मेहरबानी करेंगे तो कोटि कोटि धन्यवाद।
1: तो फिलहाल जो गम है प्रोग्राम में जवाब की जो दुश्वारी है वो ये है कि इस नाम के किसी आर्टिस्ट का कोई एल्बम हमारे पास नहीं है, जो पुराने दौर के आसिफ अली जो एक गायक हुआ करते थे उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आइंदा अगर इन फ्यूचर भविष्य में कोई ऐसी स्थिति बनी तो जरूर उनके भी गाये हुए गजल या उनके नगमे आपको सुनने को मिलेंगे। इस मेल के लिए शुक्रिया,
0: और जरूर खुशी भी होगी क्योंकि इनका पत्र शामिल हो गया, मेल शामिल हो गया,
1: तो अगला मेल जरूर लिखिएगा
0: जी। और आज पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम का ये आखिरी जो मेल है हम शामिल कर रहे हैं, सूर्यभान सिंह बिसुंदरी घुरावल सोनभद्र से
1: जी।
0: लिख रहे हैं, पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले आप दोनों लोगों को सूर्यभान सिंह का प्यार भरा नमस्कार। 25 अप्रैल को किसका कार्यक्रम था उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उनकी जानकारी की बात 25 अप्रैल 1982 को रंगीन टीवी की शुरुआत हुई तथा पुराने जमाने में टीवी से संबंधित बातें जैसे एंटीना बूस्टर नामों को लेकर पुराने जमाने की यादें ताजा कर दी। इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: यानी ये गुड मॉर्निंग बनारस की बात कर रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में आपको पुराने दौर के टेलीविजन के बारे में बताया गया। वो दौर सचमुच हमें याद है जब टीवी नया नया आया था और वो एंटीना लगा करते थे तीलियों वाले, और उसको लोग छतों पर खपरेल के घरों में और कई जगह पेड़ों पे लोग बांध कर रखते थे, तो उसके जरिए ट्यून करना होता था, और बड़ा एक अलग अनूठी सी चीज थी दूरदर्शन पर जब कोई भी चलता फिरता आपके घर में, क्योंकि उससे पहले हम लोग सिर्फ हॉल में ही जाकर के ऐसी चीजें देख पाते थे, तो वो यादें ताजा हुई आपकी, तो ये प्रेजेंटर्स तक आपकी बधाई पहुंच रही है।
0: आगे लिखते हैं कि 26 अप्रैल को शिखा जी का कार्यक्रम था, क्या आपके यहाँ दो शिखा हैं?
1: जी बिल्कुल, हमारे यहाँ दो शिखा हैं, लेकिन एक शिखा हमारे जैसे नॉर्मल प्रेजेंटर हैं और अनाउंसर हैं, और दूसरी जो है अंगनैया में है। ये संयोग ये भी है कि दोनों ही शिखा श्रीवास्तव ही है
0: जी।
1: तो अंगनैया में वो लाली के नाम से आती है, जो कभी कभी आपको आरोग्यम कार्यक्रम में भी आवाज सुनाई देती होगी, तो वो शिखा अलग है, और शिखा श्रीवास्तव जो गुड मॉर्निंग वगैरह करती है वो अलग है।
0: आगे लिखते हैं कि रामानुजन गणितज्ञ जी पर की गई चर्चा अच्छी लगी, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दिन मधुरिमा कार्यक्रम ज्योति स्वरूप जी ने प्रस्तुत किया था और कार्यक्रम में उन्होंने अच्छे अच्छे गाने सुनवाए। उन गानों में से मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगा, फिल्म पापा कहते हैं का, घर से निकलते ही। कार्यक्रम की लाजवाब प्रस्तुति के लिए ज्योति स्वरूप जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: उन्हें भी वो गाना घर से निकलते ही याद आया था और उन्होंने उसको प्ले किया, आपको पसंद आया, आपकी जो बधाई है खुशी है वो ज्योति स्वरूप तक पहुंच रही है।
0: 27 अप्रैल को शुचि जी ने बताया कि हमें अपने जीवन में अफसर को पहचानना चाहिए, क्योंकि वो अफसर ही हैं जो हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। अर्श का भाव तो समझ में आ रहा है, कृपया अरुण सर इसे स्पष्ट कर दें तो इसका मतलब और श्रोताओं को भी पता चल जाएगा।
1: बिल्कुल, सभी हम लोग फर्श को बोलते हैं, जमीन जो नीचे जिस

0: पर हमारे पांव टिके होते हैं और आसमान को ही अर्श कहते हैं।
1: जी आगे लिखते हैं कि 28 अप्रैल को पूजा जी ने सुरक्षित वर्कप्लेस पर चर्चा की, चर्चा अच्छी लगी। उनके द्वारा दी गई डिहाइड्रेशन पर जानकारी और इससे होने वाले नुकसान, जैसे लंबे समय तक पानी न पीने से खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे हार्ट या बीपी की समस्या हो सकती है, पूजा जी की जानकारी बहुत लाभप्रद लगी, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। 29 अप्रैल को सना जी ने बताया कि जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता है, इसी से संबंधित उन्होंने हर्मेटिक का सिद्धांत भी बताया सना जी को कार्यक्रम में।
0: अच्छा, ये कौन सा सिद्धांत है? वैसे अकारण कुछ भी नहीं होता है, ये तो सही बात है। और पूजा और सना दोनों तक आपकी बधाई पहुंच रही है, और ये सिद्धांत कौन सा था?
1: सना जी को कार्यक्रम में कहीं पर करोड़ों बोलना था, लेकिन गलती से उनसे करोड़ों,
0: ये अक्सर होता है क्योंकि घर में जब नख लऊ जाना पड़ता है तो
1: लखनऊ लेकिन अगले स्थान पर उन्होंने करोड़ों ही बोला। स्वाभाविक है, सभी से कभी ना कभी ऐसा हो जाता है
0: जी।
1: सना इसको अन्यथा ना ले, मैं अन्यथा नहीं लेती हूँ।
0: लेके भी क्या करेंगे, उन्हें तो पूरे प्रोग्राम में अभी रहना है और दूसरे उधर इंतजार कर रहे हैं
1: जी। 1 अप्रैल को शुक्रवार को छुट्टी होने की वजह से व्हाट्सएप गीत एक्सप्रेस में शामिल होकर के मेरी भी 3-4 वर्षों पहले की पुरानी यादें ताजा हो गई। ये कार्यक्रम लेकर आई थी अंजना झा। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि कार्यक्रम में एक ही बार संदेश भेजे, वो भी एक गीत के लिए। उनका नाम पहले या
0: दूसरे, ये मेल कुछ ज्यादा बड़ा है सना जी, क्योंकि यहाँ तक आते आते भेजने वाले का नाम तक हम लोग भूल गए हैं।
1: उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि कार्यक्रम में एक ही बार संदेश भेजे, वो भी एक गीत के लिए। उनका नाम पहले या दूसरे की तक शामिल हो जाएगा, वो इंतजार करें, नाम अवश्य शामिल होगा। मैंने भी ऐसा किया, मेरा नाम दूसरे गीत के साथ नहीं बल्कि तीसरे गीत के साथ शामिल हो गया।
0: चलिए, तीसरे के साथ शामिल तो हो गया ना, वरना बहुत सारे श्रोता है जो, जैसा आपने हाल में भी सुना पिछले उस शुरुआती मेल में कि उन्होंने कहा कि उन्होंने भेजा और आखिर तक शामिल नहीं हुआ, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। दरअसल शुरुआत में ही सैकड़ों की तादाद में श्रोता अपने संदेश हम तक भेज देते हैं, जो कि थोड़ा सा कभी कोई आगे पीछे मैसेजेस हो जाते हैं, लेकिन शामिल हूँ ये प्रयास हमारा रहता है
1: जी। और मतलब कुल मिला के इनको अंजना जी का कार्यक्रम जो है वो पसंद आया।
0: और कुल मिला के आपकी बधाई हम लोग अंजना जी तक इस प्रोग्राम के बाद, क्योंकि गर्मी अभी थोड़ी सी कम है, घर जाकर पहुंचा देंगे
1: जी। आखिर में इन्होंने लिखा है कि कुछ उद्घोषक या उद्घोषिका हम लोगों से उम्र में बहुत बड़े होंगे। जी शब्द तो हम उम्र वाले लोगों के साथ प्रयोग करते हैं, जी रनिंग शब्द होने की वजह से लिखते हैं, जिससे पत्र पढ़ने वाले को समस्या ना हो। वैसे आप लोग हम लोगों से बहुत महान हैं, आप और हम आप लोगों का बहुत सम्मान करते हैं।
0: चलिए, आपके विचारों का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और इसमें आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से तमाम प्रोग्राम का जिक्र किया और कार्यक्रम में मेल हमें भेजा
1: जी। इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और श्रोताओं से यही कहेंगे कि ऐसे ही मेल जो है वो हमें भेजते रहें। हमारी ईमेल आईडी पर pkldaarvaranasi@gmail.com पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा,
0: और हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए अरुण पांडे
1: और सना सलीम को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पत्र के लिए धन्यवाद। आज की प्रस्तुति अरुण पांडे और सना सलीम की थी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बाजीराव मस्तानी से। इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल ने। बैकग्राउंड वोकल्स हैं गणेश चंदन शिवे, मुजतबा, अजीज नाजा, अल्तमश फरीदी और फरहान साबरी के। इस गीत को लिखा है सिद्धार्थ गरिमा ने। संगीत है संजय लीला भंसाली का।

अगला गीत है फिल्म साथिया से। इस गीत को गाया है ऋचा शर्मा ने। गुलजार के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है ए आर रहमान ने।

कार्यक्रम रस रंग अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह की गाई हुई कुछ चुनिंदा गजलें।

इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है रामलाल ने।

अगला गीत है फिल्म घर से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

अगला गाना है फिल्म बहू बेगम से। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने। गीत के बोल हैं साहिर लुधियानवी के, संगीत है रोशन का।

अगली आवाजें आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। साहिर लुधियानवी के बोल और संगीत है रोशन का। फिल्म का नाम है ताजमहल।

अगला गीत है फिल्म एक नज़र से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म एक दूजे के लिए के इसी गीत के साथ हमारा कार्यक्रम रसमाधुरी अब समाप्त होता है।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुँच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटिबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167

0: के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और

0: समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरीकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा सम्पन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अलमाटी में आईएसएसएफ निशानेबाज शॉर्ट गन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले

0: में से 24 निशाने लगाए, चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the center, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: मिस्टर मोदी सेड टुडे इंडिया इज एडवांसिंग ऑन रिफॉर्म्स एक्सप्रेस एंड आल्सो बिल्डिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया जिनकी लागत तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए है। उन्होंने मगरबी एशिया तनाजे के मनफी असरात को कम करने के लिए दरामद शुदा पेट्रोलियम मसनूआत के किफायती इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इमकानी सैलाब और शदीद गर्मी से निमटने की मुल्क की तैयारी से मुतालिक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने काबीना में तौसी की है। उन्होंने 2 काबीना वजीरों और 4 वजराए मुमलकत को शामिल किया है। भारत और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने सियाहत, हिफ्जान सेहत और आयुर्वेद शोबों में 8 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में खुदकुश हमले में हिफाजती अमले के 15 अफराद हलाक हो गए। और IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। एक और मैच रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के शहर हैदराबाद में बुनियादी ढांचे और सनअत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा जिनकी लागत तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए है। इन प्रोजेक्टों का मजमूई मकसद रियासत को मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा मरकज बनाना, कनेक्टिविटी को मजबूत करना, रोजगार के मौके पैदा करना, लॉजिस्टिक्स की इस्तेदाद में इजाफा करना, हिफाजत में इजाफा करना और लोगों को सफर में बेहतर सहूलियात फराहम करना है। वज़ीरे आज़म मोदी ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि भारत मरकज की तरफ से किए गए इकदामात की वजह से मगरबी एशिया की महाजराई से उभरने वाले तवानाई के बुहरान से मुअस्सर तौर पर निमट रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन के इस्तेमाल में जिस तहम्मुल से काम लिया गया है वो वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दरामद की गई पेट्रोलियम मसनूआत को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे गैर मुल्की जरे मुबादला की बचत और जारी महाजराई के मनफी असरात को कम करने में मदद मिलेगी।
1: सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है, इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। CNG आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।

0: लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत इस्लाहात के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और जदीद तरीन बुनियादी ढांचे की तामीर कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो तेलंगाना में हर कुनबे को यकीन दिलाना चाहेंगे कि मरकज आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए और ज्यादा रफ्तार के साथ काम करेगा।
0: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: आज जिन बड़े प्रोजेक्टों का आगाज किया गया उनमें वरंगल में पीएम मित्र पार्क भी शामिल है, जिस पर तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी। भारत के तारीखी इम्तियाज को एक आलमी इकतसादी ताकत के तौर पर याद करते हुए, जब कपड़े की सनतें यकसर तब्दीली लाने वाला रोल अदा करती थीं, वज़ीर आज़म ने मौजूदा इकदाम के जरिए इस अहम शोबे को नई जिला बख्शने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया।
0: आज जिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहाँ हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में मुमकिना सैलाब और शदीद गर्मी की सूरत हाल से निमटने की तदाबीर के तौर पर एक जायजा मीटिंग की। नई दिल्ली में आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की इन हालात से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा पेशगी वार्निंग सिस्टम, वसाइल की फराहमी और मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान आपसी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया, ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान से मुअसर तौर पर निपटा जा सके। वजीर मौसूफ ने मुल्क भर में तवील मुद्दती सैलाब का भी जायजा लिया, जिसमें अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का तहफ्फुज़, दरिया के इंतजाम के इकदाम और पेशगोई में साइंसी पेशरफ्त शामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आईन और अदलिया ने भारतीय जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा किया है। जनाब शाह आज शाम नई दिल्ली में दो किताबों के इजरा के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ये किताबें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तसनीफ की हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आम आदमी के यकीन, समाज की कारकर्दगी और मुल्क के किरदार का इजहार इंसाफ के एक मजबूत निजाम से होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने एक समाज के तौर पर अपने इदारों में लोगों का एतमाद कामयाबी के साथ बरकरार रखा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पूरे मुल्क के अवाम का ये यकीन है कि अगर कोई नाइंसाफी होती है तो आईन मौजूद है, अगर हुकूक पर कोई हमला होता है तो अदलिया के दरवाजे खुले हैं, और अगर किसी कमजोर शख्स की आवाज दबाई जाती है तो अदालतें इनकी आवाजों को यकीनन सुनेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी काबीना में 6 मजीद वजरा को शामिल किया। इसके अलावा 2 वज़राए मुमलिकत को तरक्की देकर उन्हें भी काबीनी वजीर आजादाना चार्ज का ओहदा तफवीज किया गया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जन भवन लखनऊ में आज नए वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इन नए वज़रा की शमूलियत से 403 रुकनी उत्तर प्रदेश असेंबली में वज़रा की तादाद 60 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रियासत में आज होने वाली काबीना की इंतहाई मतवक्के दूसरी तौसी में पार्टी के साबिक रियासती सदर चौधरी भूपेंद्र सिंह और मनोज पांडे को काबीना वजीर बनाया गया है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही फतेहपुर में जिले के खागा असेंबली हलके की नुमाइंदगी करने वाले कृष्ण पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से बीजेपी एमएलए कैलाश सिंह राजपूत और अलीगढ़ की खैर असेंबली सीट से एमएलए सुरेंद्र दिलेर को वजीर मुमलकत बनाया गया है। कानून साज काउंसिल के रुकन हंसराज विश्वकर्मा को भी वजीर मबलकत बनाया गया है। इसके अलावा वजीर मबलकत अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को तरक्की देते हुए दोनों वजरा को आजादाना चार्ज तफवीज किया गया है। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि पानी का तहफ्फुज एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए विदर्भ के किसानों में खुदकुशी के वाकयात को रोका जा सकता है, निज इलाके के गांवों को पानी की मुसर फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। जनाब गडकरी ने विदर्भ खित्ते में पानी के तहफ्फुज के लिए सरगर्म तंजीम पूर्ति सिंचल

समृद्धि कल्याणकारी संस्था की जानिब से नागपुर में सिल्वर जुबली तकरीबात के सिलसिले में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज योम मादर के मौके पर मुंबई में माओं की गजाइयत की किट्स तकसीम की। जनाब गोयल ने इस्तेमा से खिताब करते हुए कहा कि खसूसी तौर पर तैयार की गई इन किट्स को हमल के आखिरी मरहलों में खवातीन की गजाई जरूरतों और नौमौलूद बच्चों की जरूरतों को जहन में रखकर तैयार किया गया है। महाराष्ट्र की रियासती खवातीन कमीशन की साबिक चेयरपर्सन रूपाली चकनाकर से खसूसी तहकीकाती टीम ने नासिक में खुद साख्ता बाबा अशोक खराज से मुबैना ताल्लुक के मामले में पूछताछ की। अशोक खराज के जरिए जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात और उसके सियासी रवाबित के ताल्लुक से छानबीन के लिए यह खसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी गई थी। IPS अफसर तेजस्वी सतपुते की क्यादत वाली SIT ने नासिक में वाक़ महाराष्ट्र पुलिस अकेडमी में आज से तहकीकात का आगाज किया। भारत और ट्रिनिडाड और टोबैगो ने सियाहत हिफ्जान सेहत बुनियादी ढांचे और आयुर्वेद समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। ये दस्तखत वजीर खारजा एस जयशंकर के करेबियाई मुल्कों के दो रोजा दौरे के दौरान किए गए। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत नामों पर यह दस्तखत ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की वजारत खारजा और कैरिकॉम अमूर की इमारत को शमसी तवानाई से लेस करने, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाने, नेल्सन जजीरे के बुनियादी ढांचे की तस्दीद करने के मकसद से किए गए। डॉक्टर जयशंकर का यह दौरा कल मुकम्मल हो गया। उन्होंने अपने इस दौरे में वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर और दीगर सीनियर रहनुमाओं से बातचीत की। ये बातचीत दो तरफा तआवुन को तौसी देने से मुतल्लिक मीटिंग में पिछले साल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे में किए गए ऐलानात पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में पुलिस चौकी को निशाना बनाकर किए गए खुदकुश हमले में 15 सिक्योरिटी एहलकार हलाक जबकि मुतअद्दी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हमला कल उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी एहलकारों ने पुलिस चौकी की तरफ बढ़ते हुए धमाका खेज मादे से लदे ट्रक पर फायरिंग की जिसके नतीजे में धमाका हुआ। धमाके के बाद कई बंदूक बरदारों ने पुलिस चौकी पर हमला किया जिसके नतीजे में शदीद गोलीबारी हुई। इस शदीद बम धमाके में पुलिस चौकी तबाह हो गई और कई सिक्योरिटी एहलकार मलबे में दब गए। आज बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने एक वकील के मुबैना कत्ल केस में सनातनी जागरण ज्योत के तर्जमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने जमानत की दीगर 4 दरखास्तों पर अपने अहकामात महफूज रखे हैं। इस केस का ताल्लुक 2024 में चट्टग्राम अदालत के अहाते में पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की हलाकत से है जब चिन्मय पुलिस हिरासत में थे। ईरान ने मगरबी एशिया में जंग खत्म करने के मकसद से अमरीका की ताजा तरीन तजवीज पर अपना जवाब बाकायदा तौर पर दाखिल कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि इस जवाब में कहा गया है कि इस मरहले के मुजाकिरात में खित्ते में तनाजे को खत्म करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। यह बयान ऐसे वक्त दिया गया है जब अमरीका के खसूसी एलचीज स्टीव विटकॉफ और वजीर खारजा मार्को रूबियो जंग खत्म करने पर बातचीत के लिए कतर के वजीर आजम से मुलाकात की है। रूस ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाया है कि उसने अमेरिका की सालिसी वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है जबकि यूक्रेन के अफसरान ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में रूसी हमलों में एक शख्स हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। इसी दौरान रूस की वजारत दिफा ने इल्जाम लगाया है कि कीव ने जंगबंदी की 1000 मरतबा से ज्यादा खिलाफ वर्जी की जिसमें शहरी इलाकों और सरहदी चौकियों पर हमले भी शामिल हैं। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के प्रभास पाटन में वाक़ है 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे मुकद्दस तस्वुर किया जाता है। यह अपनी तामीर नौ के 75 साल मुकम्मल कर रहा है। इसकी मुनासिबत से सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में होने वाली तकरीबात में शिरकत करेंगे और एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव कल 2 चीतों को कोनो नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में नमीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। यह दुनिया का पहला बैन बर आजमी बिग कैट मुंतकली का प्रोजेक्ट था। मिजोरम में कावरथा शुमाली गांव कौंसिल ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के साफ सुथरी और माहौल के लिए साजगार पंचायत के जुमरे के तहत कौमी सतह पर आला तरीन मकाम हासिल किया है। कौंसिल को यह मकाम मुसलसल देही तरक्की माहौलियात के तहफ्फुज के लिए उसके काम पर दिया गया है। निशानेबाजी में भारतीय जोड़ी नीरू धांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। इसी के साथ भारत ने

आज कजाकिस्तान के अलमाटी में ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन में अपनी मुहिम मुस्बत कारकर्दगी के साथ खत्म की है। नेहरू और विवान के लिए किसी ओलंपिक मुकाबले में पहला ISSF वर्ल्ड कप पोडियम फिनिश था और गुज़िश्ता साल ओलंपिक में शामिल किए गए मिक्स टीम ट्रैप के बाद अब तक भारत का यह दूसरा तमगा है। IPL क्रिकेट में रायपुर में खेले जा रहे मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के सामने जीत के लिए 167 रन का निशाना रखा है। इससे कबल रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिन के दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 ओवर्स और 2 गेंदों में लखनऊ सुपर जायंट्स के जरिए दिए गए 204 रन के निशाने को हासिल कर लिया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया जिनकी लागत तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इम्कानी सैलाब और शदीद गर्मी से निमटने की मुल्क की तैयारी से मुतल्लिक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने काबीना में तौसी की है। उन्होंने 2 काबीना वजीरों और 4 वज़राए मुमलिकत को शामिल किया है। भारत और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने सियाहत हिफ्जान सेहत और आयुर्वेद शोबों में 8 माहदों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में खुदकुश हमले में हिफाजती अमले के 15 अफराद हलाक हो गए। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत और गजल पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन। नमस्कार, आदाब और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी दोस्त आराधना और आप सुन रहे हैं अंजुमन। दोस्तों, अंजुमन यानी महफिल, जहां सुरीली आवाजें और चुनिंदा लफ्ज मिल जाएं, वहां महफिल खुद ब खुद सज जाती है। आज की इस महफिल में हम फिल्मों की चकाचौंध से दूर गजलों की उस मखमली दुनिया में चलेंगे, जहां जज्बात सीधे दिल पर दस्तक देते हैं। रात का सन्नाटा हो और साथ में तलत अजीज साहब की मखमली आवाज हो तो मंजर ही कुछ और होता है। चलिए आज की महफिल का आगाज करते हैं चांद की रोशनी और मोहब्बत की गुफ्तगू के साथ। पेश है तलत अजीज की आवाज में ये खूबसूरत गजल।

0: चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि सितारे और चांद गवाह होते हैं उन तमाम वादों की जो अक्सर खामोशी में किए जाते हैं। चंदन दास जी की आवाज में एक अलग ही ठहराव है। सुनिए उनकी ये मशहूर पेशकश, चांद तारे यूं ही।
1: जनाब इब्राहिम अश की गज़ल मुलाहिज़ा फरमाइए।

अंजुमन की इस महफिल में अब जिक्र उस रोशनी का जो उम्मीद बनकर जलती रहती है। जब दो बेहतरीन आवाजें भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह एक साथ आती हैं तो रूहानी सुकून मिलता है। उनकी ये गजल हमें याद दिलाती है कि वक्त चाहे जैसा भी हो, उम्मीद की लौ बुझनी नहीं चाहिए।

दोस्तों, जब बात गायकी की हो और आशा भोसले जी का नाम ना आए ये मुमकिन नहीं। लेकिन आज आप उन्हें किसी फिल्मी गाने में नहीं बल्कि दर्द की एक गहरी लहर में महसूस करेंगे। कहते हैं कि दर्द जब हद से गुजरता है तो वो गीत बन जाता है। आशा जी की आवाज़ में डूब कर सुनिए ये गज़ल।

0: और अब आज की महफिल की आखिरी और सबसे कीमती कड़ी गज़ल गायकी के शहंशाह मेहंदी हसन साहब, उनकी आवाज़ के बारे में तो बस यही कहा जा सकता है कि जैसे कोई इबादत कर रहा हो। धीरे धीरे दिल में उतर जाने वाली ये सदा आज की अंजुमन को मुकम्मल करेगी। पेश खिदमत है रफ्ता रफ्ता।
1: जी नहीं, एक और आपकी फरमाइश है, वो सब होगी इंशाल्लाह। तो ये आपकी बड़ी पहले से फरमाइश आई हुई है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सारा है।

दोस्तों, वक्त का पहिया भी रफ्ता रफ्ता घूमता रहता है और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज की महफिल को यहीं विराम दिया जाए।

0: उम्मीद है अंजुमन के इन सुरों ने आपके दिल को छुआ होगा। हम फिर मिलेंगे किसी रोज़ कुछ और अनमोल नगमों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। दीजिए आराधना को इजाज़त। शब खैर। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास। अकंपनीइंग हिम ऑन मृदंगम इज श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम श्री एम चंद्रकांत।
1: विद्वान डी श्रीनिवास तेलंगाना के एक अग्रणी कर्नाटक संगीतकार हैं। एक संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे, श्रीनिवास ने 7 साल की उम्र में अपनी माँ श्रीमती डीएल तुलसी के मार्गदर्शन में वीणा शिक्षा का श्री गणेश किया। 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादि विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
2: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन from Telangana was born into a musical lineage. He began the art of veena at the age of 7 under the guidance of his mother Srimati D. L. Tulasi. By the age of 9 he was a child prodigy. The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
1: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास

0: के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आदिताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदि ताल त्रिस्र गति।

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10:26 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। कल प्रातः 5:53 पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।